एफएम बैंड 103 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है, शक सम्वत 1948 के सावन मास की नवी तिथि तदनुसार 31 जुलाई 2026। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान है। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों की शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी तक करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों से प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार को पेपर लीक की समस्या का सामना करना पड़ा है और इससे विद्यार्थियों के भविष्य पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि इसे ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पारदर्शी और प्रौद्योगिकी आधारित परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कानून और परीक्षा माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई विद्यार्थियों के कठिन परिश्रम की रक्षा और विकसित भारत की नींव मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लिकतुप दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के अंतर्गत निर्मित थिम्फू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही है।

0: महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय राजधानी क्वेटा के बाहरी इलाके में स्थित खदान में मीथेन गैस भर जाना विस्फोट का कारण माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 18 खनिकों के शव निकाल लिए गए हैं। अन्य कर्मियों की तलाश के लिए राहत और बचाव अभियान जारी है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थेरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। अजरबैजान में के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं खेती की बातें, जलवायु अनुकूल खेती सुनीता अग्रवाल से।

बातें में श्रोताओं, आज हम बातें करेंगे जलवायु परिवर्तन और कृषि विकास। श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन के कारण वार्षिक कृषि कमाई में 15 से 18% तक की कमी और गैर सिंचित क्षेत्रों में 20 से 25% तक की कमी आ सकती है। देश की आबादी के 58% हिस्से की कमाई का प्राथमिक स्रोत खेती है। कृषि और प्राकृतिक स्रोतों पर आधारित उद्यान न केवल भारत बल्कि ज़्यादातर विकासशील देशों की आर्थिक उन्नति का आधार है। कृषि क्षेत्र और इसमें शामिल खेत, फसल, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, पॉलिट्री संयुक्त राष्ट्र के दीर्घकालीन विकास लक्ष्यों, खास करके शून्य भूखमरी, पोषण और जलवायु कार्रवाई तथा अन्य से जुड़े हुए हैं। देश की खाद्य सुरक्षा के लिए एक अहम चुनौती जलवायु परिवर्तन है और इसे लगातार सूखा, चक्रवात, बाढ़, लू, शीतलहर और समुद्र के खारे पानी का तटीय इलाकों में प्रवेश जैसे प्रभाव देखे जा रहे हैं। साल 2030 तक तापमान में 1 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है, जो पैदावार पर गंभीर प्रभाव डालने की आशंका है। उच्च तापमान फसल की अवधि को छोटा, प्रकाश संश्लेषण में बदलाव, फसल श्वसन दर में इजाफा और कीटाणुओं की आबादी को भी प्रभावित करेगा। इसके साथ ही जलवायु परिवर्तन पोषक तत्वों को जैविक से गैर जैविक में बदलता है, उर्वरक इस्तेमाल की क्षमता को भी प्रभावित करता है, साथ ही मिट्टी से वाष्पन उत्सर्जन को भी बढ़ाता है, जिससे आखिरकार प्राकृतिक संसाधनों का क्षय होता है। जलवायु परिवर्तन का असर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से फसल, पानी और मिट्टी पर पड़ता है, क्योंकि ये पानी की उपलब्धता, सुखाड़ की तीव्रता और सूक्ष्म जीव की आबादी, मिट्टी में मौजूद जैविक तत्वों में कमी, कम पैदावार, मृदा अपरदन के चलते मिट्टी की उर्वरा शक्ति में गिरावट आदि को प्रभावित करता है। कृषि पद्धतियाँ पूरी तरह मौसम की स्थितियों पर आधारित है। उच्च तापमान के कारण पौधे में पानी की कमी होता है। सरकार, कृषि मंत्रालय और किसान कल्याण और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई सक्रिय नीतियां व कार्यक्रम शुरू किए हैं और जिन्हें ग्रामीण स्तर पर लागू भी किया जा रहा है, जिनमें जलवायु लचीला कृषि मुख्य है। जलवायु लचीली कृषि एक दृष्टिकोण है जिसमें जलवायु परिवर्तन में भी फसल और पशुधन उत्पादन के जरिए दीर्घकालीन उच्च उत्पादकता और कृषि आय प्राप्त करने के लिए मौजूदा प्राकृतिक संसाधन शामिल हैं। ये पद्धति आने वाली पीढ़ी के लिए जलवायु परिवर्तन को देखते हुए गरीबी और भूखमरी को कम करेगी। CRA पद्धति मौजूदा स्थिति में तब्दीली कर दीर्घकालीन तरीके से स्थानीय से वैश्विक स्तर पर खाद्य उत्पादन को बरकरार रख सकती है। तकनीकी तक सुविधाजनक पहुंच और इस्तेमाल, पारदर्शी व्यापार, संसाधन संरक्षण तकनीकों का अधिकाधिक इस्तेमाल व

फसलों व पालतू मवेशियों द्वारा जलवायु दबाव को आसानी से अपना लेना जलवायु लचीली पद्धति का परिणाम है। बहुत सारे देश टकराव व आपदाओं का संकट झेलते हैं, लेकिन अपर्याप्त खाद्य भंडार, आधारभूत खाद्य पदार्थों के दाम में उतार चढ़ाव, कृषि ईंधन की भारी मांग और मौसम में आकस्मिक बदलाव के चलते खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये जलवायु परिवर्तन से ही जुड़ा हुआ है। सभी कृषि और गैर कृषि स्रोतों से ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को प्राथमिकता देनी होगी। नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल इस दिशा का एक नीतिगत हस्तक्षेप होगा, जिसकी सराहना दुनिया भर में की गई है। साझेदारों में भरोसा मजबूत करने के लिए ट्रेडिंग जरूरी है और जलवायु परिवर्तन व स्थानीय स्तर पर इससे पड़ने वाले प्रभावों को समझने के लिए उन्हें जागरूक करने की जरूरत है। देश भर में जलवायु लचीली खेती करना इस समय की जरूरत है और इसके लिए उचित नीति दिशा निर्देशों का स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों के लिए स्थानीय कृषि अभ्यासों का विश्लेषण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज की जानकारी यहीं तक।

0: अभी आप सुन रहे थे जलवायु अनुकूल खेती, सुनीता अग्रवाल से। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान।
1: सौ चौबीस 224।

तिरहुत राज जनक चित्रकूट पहुंचकर अवसाद से भर जाते हैं। जिन सुकुमार राजपुत्रों को उन्होंने अपनी आंखों की पुतली रूपी कन्याएं सौंपी थीं, उनका तापस वेश विदेह के अंतस में मोह और शोक उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। उनके साथ आए जनकपुरवासी शोक सागर में डूबने लगे हैं। अयोध्या तथा जनकपुर से आया समाज अन्न जल ग्रहण करने को भी इच्छुक नहीं है, किंतु इतने स्नेह और श्रद्धा से वनवासी कोल किरातों द्वारा लाए गए फल फूलों की उपेक्षा भी कहाँ संभव है।

मनुष्य में यदि मानवता नहीं है तो वह मानव नहीं है। मनीषियों ने मनुष्य को मनुर्भाव मनुष्य बनने की बात कही है। एक सज्जन व्यक्ति वही है जो दूसरों का सम्मान करे, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखे, छल कपट द्वेष से परे परहित पर काम करे। मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है, उसे सोचने समझने के लिए ईश्वर ने बुद्धि दी है। मानवीय गुण ही उसे अन्य प्राणियों से अलग करते हैं। वह अच्छा बुरा सब समझ सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करता है वह न तो सफलता को प्राप्त करता है, न ही शांति, न ही मोक्ष। इसके विपरीत वह व्यक्ति जो क्षमाशील शांत चित्त मृदु व्यवहार मधुर वाणी वाला होता है वह सत्पुरुष कहलाता है। सज्जनता से भरा इंसान हर परिस्थिति में संयमित होता है। वह अपने आचरण से लोगों का प्रिय बन जाता है। मनुष्यता की पहली शर्त सज्जनता सहृदयता मानी जाती है। सहृदय व्यक्ति परोपकारी दयालु विश्वासी होता है। वह किसी को धोखा नहीं देता है, हमेशा दूसरों का भला ही सोचता है। किसी के बुराई का उत्तर भी वह अच्छाई से ही देता है। निस्वार्थ भाव से औरों के लिए कार्य करने वाला व्यक्ति ही सज्जन है। सज्जनता कोई दिखावे की वस्तु नहीं है, वह स्वतः ही दिख जाती है। किसी व्यक्ति का आचरण आचार व्यवहार उसकी सज्जनता को दर्शाते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा है, क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थ को उदारता से और व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। ईर्ष्या और नफरत की आग में जलते हुए इस संसार में खुशी और हंसी स्थाई नहीं हो सकती हैं। घृणा घृणा से नहीं प्रेम से समाप्त होता है और यही शाश्वत सत्य है। शांतिप्रिय लोग आनंदमय जीवन जीते हैं। उन पर हार जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जिस प्रकार झरना बहुत शोर मचाता है और सागर गहरा

और शांत रहता है, उसी तरह सज्जन व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत चित्त बना रहता है। क्रोध के विषय में बुद्ध कहते हैं, क्रोध को पाले रखना गर्म कोयले को किसी और पर फेंकने की नियत से पकड़े रखने के समान है। इसमें व्यक्ति स्वयं जलता है। कोई भी बहुत बोलने से कुछ नहीं सीख पाता है। समझदार वही है जो धैर्य वाला, क्रोध न करने वाला निडर होता है। इसलिए धैर्यवान, सहृदय, दयालु, परोपकारी बने, और यही सज्जनता के गुण हैं। सज्जनता को दर्शाने के लिए आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अपना अच्छा आचरण करते रहिए, आपकी सज्जनता स्वतः प्रकट हो जाएगी। यही संदेश महात्मा गौतम बुद्ध ने दिया।

अभी आप सुन रहे थे चिंतन निर्मला तिवारी से। यह आकाशवाणी का डालरगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम मौसमी की आवाज़ में वंदना। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं गांधी कथा अनुराधा सिंह से।

प्रस्तुत है गांव का आहार के बारे में गांधी जी के विचार। हाथ कुटाई का चावल, अगर चावल पुरानी पद्धति से गांव में ही कूटा जाए तो उसकी मजदूरी हाथ कुटाई करने वाले बहनों के हाथ में जाएगी और चावल खाने वाले लाखों लोगों को, जिन्हें आज मिलों के पॉलिश किए हुए चावल से केवल स्टार्च मिलता है, हाथ कुटे चावल से कुछ पोषक तत्व भी मिलेंगे। चावल पैदा करने वाले प्रदेशों में जहाँ तहाँ जो भयावनी चावल की मिलें खड़ी दिखाई देती हैं, उनका कारण मनुष्य का वह अमर्यादित लोभ ही है, जो न तो अपनी तृप्ति के लिए अपने पंजे में आए हुए लोगों के स्वास्थ्य की परवाह करता है और न उनके सुख की। अगर लोकमत शक्तिशाली होता तो वह चावल की मिलों के मालिक से इस व्यापार को समूचे राष्ट्र के स्वास्थ्य को खोखला बनाता है और गरीबों को जीविकोपार्जन के एक ईमानदारी के साधन से वंचित करता है, बंद करने का अनुरोध करता और हाथ कुटाई के चावलों के ही उपयोग का आग्रह रखकर चावल कुटने वाली मिलों का चलना अशक्य कर देता। गेहूं का चोकर युक्त आटा, ये तो सभी डॉक्टरों की राय है कि बिना चोकर का आटा उतना ही हानिकर है जितना कि पॉलिश किया हुआ चावल। बाजार में जो महीन आटा या मैदा बिकता है उसके मुकाबले

में घर की चक्की का पिसा हुआ बिना चला गेहूं का आटा अच्छा भी होता है और सस्ता भी। सस्ता इसलिए होता है कि पिसाई का पैसा बच जाता है, फिर घर के पिसे हुए आटे का वजन कम नहीं होता, महीन आटे या मैदे में तौल कम हो जाती है। गेहूं का सबसे पौष्टिक अंश उसके चोकर में होता है। गेहूं की भूसी चाल कर निकाल डालने से उसके पौष्टिक तत्व की बहुत बड़ी हानि होती है। ग्रामवासी या दूसरे लोग जो घर की चक्की का पिसा आटा बिना चला हुआ खाते हैं, वे पैसे के साथ साथ अपना स्वास्थ्य भी नष्ट होने से बचा लेते हैं। आज आटे की मिलें जो लाखों रुपए कमा रही हैं, उस रकम का काफी बड़ा हिस्सा गांव में हाथ की चक्कियां फिर से चलने लगने से गांव में ही रहेगा और वह सतपात्र गरीबों के बीच बढ़ता रहेगा। गुड़। डॉक्टरों की राय के अनुसार गुड़ सफेद चीनी की अपेक्षा कहीं अधिक पौष्टिक है, और अगर गांव वालों ने गुड़ बनाना छोड़ दिया तो उनके बाल बच्चों के आहार में से एक जरूरी चीज निकल जाएगी। वे खुद शायद गुड़ के बिना अपना काम चला सकेंगे, पर उनके बच्चों की शारीरिक ताकत गुड़ के अभाव में निश्चय ही घट जाएगी। अगर गुड़ बनाना जारी रहा और लोगों ने उसका उपयोग करना न छोड़ा तो ग्रामवासियों का करोड़ों रुपया उनके पास ही रहेगा। हरी पत्ता भाजियां। आहार या विटामिनों के विषय पर लिखी गई कोई भी आधुनिक पाठ्य पुस्तक उठाइए तो उसमें आप इस बात की जोरदार सिफारिश पाएंगे कि हर एक भोजन के साथ थोड़ी सी कच्ची हरी पत्ता भाजी जरूर ली जाए। बेशक खाने से पहले उन्हें 4-6 बार अच्छी तरह से धो लेना चाहिए ताकि उनमें लगी हुई मिट्टी और दूसरा कचरा बिल्कुल साफ हो जाए। ये पत्ता भाजियाँ हर एक गाँव में आसानी से मिल सकती हैं, सिर्फ उन्हें तोड़ने की जरूरत है। फिर भी हरी पत्ता भाजियाँ शहरों के ही लोगों के शौक की चीज समझी जाती है। भारत के अधिकांश हिस्सों में गांव वाले तो दाल चावल या रोटी पर ही गुजारा करते हैं और इनके साथ बहुत सी मिर्चें खाते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाती है। चूंकि गाँव के आर्थिक पुनर्गठन का काम आहार के सुधार से शुरू किया गया है, इसलिए सस्ते और सादे ऐसे खाद्यों को ढूंढ निकालना बहुत जरूरी है जिसे गांव वाले अपना खोया हुआ स्वास्थ्य पुनः प्राप्त कर सके। भोजन के साथ थोड़ी सी हरी पत्ता भाजी लेने से गांव के लोग ऐसे अनेक रोगों से बच जाएंगे जिनसे वे आज तकलीफ भोगते हैं। गांव वालों के भोजन में विटामिनों की कमी है, उनमें से अधिकांश की पूर्ति ताजे हरे पत्तों से हो सकती है। मैंने अपने भोजन में सरसों, सोया, सलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां लेना शुरू किया है। ये कहने की जरूरत नहीं कि सलजम, गाजर और मूली की सिर्फ पत्तियां ही नहीं, उनके कंद भी कच्चे खाए जाते हैं। इनकी पत्तियों या कंदों को आग पर पकाकर खाना उनके सुप्रिय स्वाद को मारना और पैसे का दुर्व्यय करना है। आग पर पकाने से इन भाजियों की विटामिन बिल्कुल या अधिकांश नष्ट हो जाते हैं। इन्हें पकाकर खाना इनके स्वाद की हत्या करना है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि कच्ची भाजियों में एक प्राकृतिक स्वाद होता है जो कि पकाने से नष्ट हो जाता है।

0: अभी आप सुन रहे थे अनुराधा सिंह से गांधी कथा। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं स्वास्थ्य चर्चा में भेंट वार्ता अनिंद्रा कारण एवं उपचार। भेंट वार्ता कारण डॉक्टर सुंदरम श्री हर्ष रांची से और इनसे बातचीत करेंगे श्री संजीव कुमार लाल।
1: भागम भाग जिंदगी में हर तरफ हम तनाव से घिर जाते हैं। हमें चारों ओर सिर्फ अपना काम दिखता है और काम के बोझ के तले हम बहुत चीज़ें भूल जाते हैं और ऐसे में हम भूलते हैं पर्याप्त समय अपने नींद के लिए। सही समय पर हम सो नहीं पाते हैं, सही समय पर हम उठ नहीं पाते हैं और कितना हमें समय सोने के लिए देना चाहिए वो हम दे नहीं पाते हैं। होता क्या है, हम थकान महसूस करते हैं और तनाव से घिर जाते हैं। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का विषय है हमारा अनिद्रा यानी स्लीपलेसनेस। तो एक व्यक्ति को कितना घंटा सोना चाहिए और जिस व्यक्ति को नींद नहीं आती है क्या कारण है इसका और कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं डॉक्टर सुंदरम श्रीहर्ष। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, अनिद्रा एक कॉमन बीमारी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। लोग सही से सो नहीं पाते हैं, बहुत लोग गोलियों का सहारा लेते हैं जो हमारे शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए कितना घंटा व्यक्ति को सोना चाहिए?
2: अनिद्रा या इंसोमनिया, इसको हमारे मेडिकल भाषा में या अंग्रेजी में कहते हैं इंसोमनिया, नींद ना आना। इसमें इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको उनिदापन कहते हैं या निंद्रा लोप भी कहते हैं या निंद्रा अभाव भी कहते हैं। ये सारे नींद नहीं आने के अलग अलग नाम हैं। हम सब जानते हैं अच्छी नींद स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है शांतिपूर्ण नींद ही स्वास्थ्य का आधार है। हम लोग तकनीकी बहुत तरक्की कर गए हैं, अब बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन ये तकनीकी तरक्की किस कारण हुई? अपना स्वास्थ्य और नींद को गंवाकर। तो ऐसी तरक्की क्या हमारे लिए एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल नहीं। किसी कारण भी अपना स्वास्थ्य से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जैसा कि आपने पूछा कितने घंटे सोना चाहिए, जब शिशु या बच्चा जन्म लेता है तो देखते हैं मैक्सिमम समय वो सोए रहता है 18 से 20 घंटा, सिर्फ खाने के लिए, थोड़ा देर के लिए पीने के लिए उठता है फिर सो जाता है। तो उन लोग 18 से 20 घंटे सोते हैं। क्यों सोते हैं? उस सोने के दौरान में उनका मानसिक विकास होता है। तो हमारे यंग लोगों में, बड़े लोगों में सोना कम से कम 6 से 10 घंटे सोना जरूरी है। कहते हैं 8 से 10 घंटे सोए तो आपका शरीर का संपूर्ण विकास होगा, शरीर से निगेटिव एनर्जी दूर होगी और शरीर अपने हीलिंग की ओर, अच्छे की ओर, स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेगा। किसी किसी लोगों में देखा जाता है 6-7 घंटे भी सो के स्वस्थ रहते हैं। ये इंडिविजुअल वेरिएशन है, कई लोगों को 8 से 10 घंटे, तो ऑन एन एवरेज कहते हैं 8 घंटे सोना चाहिए या कम से कम सप्ताह में 3 दिन तो भरपूर नींद लेना ही चाहिए, वरना आप बहुत सारे मानसिक रोगों के शिकार आगे चल के हो सकते हैं।
1: सही से नींद हम नहीं निकाल पाते हैं, सही से हम सो नहीं पाते हैं तो कौन कौन सी बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है?
2: पहले हमको जानना है कि नींद नहीं आने के मरीज कैसे आपको लक्षण लेके आएंगे। कुछ लोग पढ़ें कहेंगे डॉक्टर साहब मुझे नींद शुरू में नहीं आती लेकिन एक बार सो जाता हूँ तो ठीक से आती है। कई लोग कहता हूँ सो तो जाता हूँ सर लेकिन रात में बीच में उठ पाता हूँ, वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं नींद को। कई लोग सो भी जाते हैं, कुछ हद तक मेंटेन करते हैं लेकिन फिर सुबह उठ जाते हैं अर्ली मॉर्निंग। तो नींद नहीं आने के ऑनसेट मेंटेनेंस और तुरंत उठने की बीमारी होती है। कई लोग इसके बाद कहते हैं सर मैं पूरा सोता हूँ फिर भी हमको थकान महसूस होती है। ये सब इंसोमनिया के ही लक्षण में आते हैं जो मरीज आके शिकायत करता है। मरीज शिकायत करने के बाद अगर ये नहीं, अगर इसका ध्यान दिया जाए तो ऐसे मरीज एंग्जाइटी और डिप्रेशन और तरह तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में चले जाते हैं। इन सब के निदान के लिए आपको चिकित्सक परामर्श लेने की अत्यंत आवश्यकता है।
1: कुछ व्यक्ति स्वतः ही दवा लेकर

0: अपनी नींद पूरी कर लेते हैं, वो कितना हद तक जायज़ है?
1: ओवर द काउंटर मेडिसिन सरासर गलत है, खासकर नींद की मेडिसिन ना लें। अच्छे फार्मासिस्ट, अच्छे दुकान वाले कभी भी किसी मरीज को बिना प्रिस्क्रिप्शन के नींद के दवा नहीं देती है। ऐसा नहीं मेट्रो में, ऐसा अपने झारखंड में भी कई दुकान पे जाइए, आप मांगिए, आपको नींद की दवा नहीं देगी। नींद की दवा लेना क्यों जरूरी है? अगर कोई आदमी प्रॉपर तरीके से सोता नहीं है तो कार्य क्षमता पे असर पड़ता है। तो कभी कभी किसी को शॉर्ट टर्म इंसोम्निया, थोड़े दिन के लिए अनिंद्रा, जो दिनों से दो तीन हफ्तों तक रहता है, दीर्घकालीन अनिंद्रा जो क्रोनिक इंसोम्निया कहते हैं, जो महीनों सालों भर रहता है। तो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया जो साइकिल चेंजेस, किसी का ड्यूटी शिफ्ट हो गया, प्लेन से एक जगह से इधर गए, जेट लैग हो गया, जिसमें शॉर्ट टर्म इंसोम्निया होते, कुछ इन्फेक्शन के कारण हो गया, कभी किसी को चोट लग गई, पेन के कारण हो गया, तो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया उपचार करने से स्वतः दूर हो जाती है। लेकिन क्रोनिक जो दीर्घकालीन इंसोम्निया होती है, उसमें लगातार अगर वर्क शिफ्ट हो गया, उसमें कभी अच्छी नींद आ रही, कभी ख़राब नींद आ रही, कभी अच्छी, तो साल भर उसको नींद की साइकिल डिस्टर्ब रहती है। इसको वैक्सिंग एंड वैनिंग ऑफ स्लीप कहते हैं, जिसके मल्टीपल कारण हैं, बहुत सारे कारण हैं, जिसमें मुख्यतः नेजल एलर्जी, साइनोसाइटिस, अगर नाक का इन्फेक्शन रहा, GI रिफ्लेक्सेस हुए, हाइपरथायरॉइडिटी के मरीज को, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के मरीज को, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, पार्किंसनी, जॉइंट प्रॉब्लम, अर्थराइटिस, सांस के मरीज को, और कुछ लोगों को मेंटल डिसऑर्डर में भी नींद की, क्रोनिक नींद की प्रॉब्लम होती है। तो नींद की प्रॉब्लम में ओवर द काउंटर दवा लेने से पहले अपने चिकित्सक से मिलें, वो आपको तरह तरह के तरीके बताएंगे जिससे आप प्रॉपर नींद ले सकें। सर्वप्रथम हम नींद लेने जाते हैं तो हम शारीरिक परिश्रम नहीं करते हैं, इसलिए हम लोगों को नींद नहीं आती है। तो अगर आप एक्सरसाइज या शारीरिक परिश्रम करेंगे तो आपको सही नींद आएगी। और एक और नया कंसेप्ट अभी डेवलप किया है कि पुअर स्लीप हाइजीन, मतलब सोने वाले जगह को हम स्लीप के अनुसार लाइट नहीं रखते हैं, ज़्यादा लाइट रखते हैं, शोर शराबा रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखते हैं, टीवी चलते रहेगा, ऐसे माहौल में नींद नहीं आएगा। कई लोग सोने से पहले नहा लेते हैं तब भी नींद नहीं आएगा, चाय कॉफ़ी धूम्रपान का सेवन करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, ये सब भी नींद में डिस्टर्बेंस पैदा करती है। तो इन सब से हम बचें। कभी कभी रात में अगर 20 मिनट से ज़्यादा नींद टूट गया, उठ गए, तो अपने माइंड को डिस्ट्रक करें, दूसरे चीज़ में लगाएं, कुछ पढ़ने लगे, नहीं लगे, कुछ क्रिएटिव वर्क करने लगे, फिर धीरे धीरे थोड़ी देर बाद आपको नींद स्वतः आ जाएगी। तो ये सब बिहेवियर और साइकोलॉजिकल चेंज करके हम अपने एंग्जाइटी को और नींद की समस्या को काफ़ी हद तक दूर कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, तनाव का नींद से गहरा संबंध है। कहते हैं किसी व्यक्ति को तनाव हो गया या हम तनाव से घिर जाते हैं तो रातों की नींद हराम हो जाती है। तो ऐसे समय व्यक्ति क्या करे, किस तरह के उपाय अपनाए, क्या क्या जतन करे वो कि उसको सही से नींद आए?
1: आपने सही समय पूछा। आज की समस्या तनाव और स्ट्रेस की समस्या है। दिन चूहे की दौड़ है, हम लोग 99 के चक्कर में भागे जा रहे हैं। ये चक्कर कब खत्म होगा पता नहीं, यही तनाव को जन्म देता है। तो अपने लाइफ का उद्देश्य और कार्य को निश्चित करें और बहुत ज़्यादा आगे पीछे दौड़े नहीं, और योगा और एक्सरसाइज पर ध्यान दें, आउटडोर एक्टिविटीज़, मतलब कहने का है शारीरिक परिश्रम करें, जिससे कि आपको थकान होगी और खुद नींद आएगी। और सोने का जगह जैसे मैं बताया, शांत और आरामदायक वातावरण रखें जिससे नींद आए, और जो भी चीज़ आपको एंग्जाइटी करती है उससे दूर भागें, उससे बचें, उसमें इन्वॉल्व नहीं हों। अगर इसके बाद भी समस्या बनी रहती है तो चिकित्सक से परामर्श रह के उसके अनुरूप हर को अलग अलग तरह की दवाई दी जाती है, जो आप दवा का सेवन कुछ दिनों तक कम मात्रा, कम डोजेज में आप प्रयोग कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब, रात्रि के भोजन के कितने समय उपरांत व्यक्ति को शयन कक्ष में चला जाना चाहिए?
1: रात्रि के भोजन के 1 से 2 घंटे के भीतर आपको शयन कक्ष में चले जाए। तुरंत इसलिए नहीं जाना चाहिए कि आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो फूड मेटाबॉलिज्म शुरू हो जाएगा। उसके आधे घंटे बाद आपने सोने के बेड पे चले जाए, जो बेड आरामदायक रहे। ऐसा नहीं रहे कि बेड गंदा रहे, सामने टीवी चलता रहे, लाइट जलता रहे, कम वातावरण में, जिसको जैसा सुचार, किसी को कम लाइट रहती, किसी को बिल्कुल लाइट नहीं पसंद नहीं रहती है, उस वातावरण बना के, जिसको स्लीप हाइजीन कहते हैं, मेंटेन करके आप धीरे धीरे सो सकते हैं। एक अंग्रेजी में लाइन है, इफ़ यू कैनॉट स्लीप यू कैनॉट हील। अगर आप सोएंगे नहीं तो स्वस्थ और हील नहीं होंगे, इसलिए सोना बहुत ज़रूरी है। अपने लाइफ स्टाइल में एक्सरसाइज को ध्यान दें, डाइट

0: को ध्यान दें, गलत आदतों से बचें और सही नींद लें और आप सही लंबी आयु को प्राप्त करेंगे अगर इन सब बातों का ध्यान रखेंगे।
1: हम तनाव से दूर रहें और सही वक्त पर हम
2: अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य दिशा में भेंटवार्ता अनिद्रा कार्यान्वयन उपचार। भेंटवार्ता का थे डॉक्टर सुंदरम श्री हर्ष और इनसे बातचीत कर रहे थे श्री संजीव कुमार लाल। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार दिल्ली के केंद्र से अब से कुछ ही पलों में।

0: अनुमतिः अस्ति। राष्ट्रमण्डल क्रीडासु भारतीय भारोत्तोलकः लवप्रीत सिंहः पुरुषाणां 10.1 किलोग्राम भारवर्गे रजत पदकं प्राप्तवान्। अपरञ्च भारतीय क्रीडिका सीमा कालीरमन महिलानां डिस्कस थ्रो इत्येतस्यां प्रतिस्पर्धायां कांस्य पदकं प्राप्तवती। ग्लास्गो नगरे अष्टम दिवसस्य समाप्तौ ऑस्ट्रेलिया देशः 10.1 पदकैः पदकतालिकायां शीर्षस्थाने वर्तते। भारतं तु 17 पदकैः सह दशम स्थानम् अधितिष्ठति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में प्रश्न पत्र लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। चर्चा पर उत्तर के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट किया। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक एक गंभीर समस्या है और पिछली सरकारों के दौरान भी देश के विभिन्न भागों से ऐसी घटनाओं की रिपोर्ट मिली। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर आवश्यक हो गया है। संसद ने इस उद्देश्य से कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
2: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को भी इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोग की आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। विदेश सचिव विक्रम मिश्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लुक्तुब दोर्जी ने थिम्पू में 13वीं पंचवर्षीय योजना पर 5वीं भारत भूटान विकास सहयोग वार्ता की सह अध्यक्षता की। भूटान स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में भारत समर्थित परियोजनाओं की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा की गई। दूतावास ने बताया कि विदेश सचिवों ने हरित अवसंरचना और खुले स्थान परियोजना के तहत निर्मित थिम्पू पारिस्थितिक पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअली उद्घाटन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 40 लोग मारे गए थे। स्थानीय अधिकारी अब बुनियादी अधिकारों की मांग कर रही महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में कल कोयला खदान में विस्फोट से 18 खनिक मारे गए और 24 अंदर फंस गए। प्रांतीय

ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए आपको बता दें, प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा अब से कुछ ही पलों में यानी कि 7:15 पर आप सुनेंगे जिरगा भगत एवं साथियों की आवाज में लोकगीतों का कार्यक्रम पलास। स्वर सरिता का समय होगा 7:45 पर। हरिहरन की आवाज़ में आप सुनेंगे समाचार प्रभात 8:00 आप सुनेंगे दिल्ली से। मॉर्निंग न्यूज का समय होगा 8:15 पर। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे रांची से 8:30 पर। गीत गुंजन आप सुनेंगे 8:45 पर। जोहार गुलामों का समय होगा 9:00। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10:00 का समय होगा दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार का। 10:05 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। मुंबई से आप सुनेंगे विविध भारती 10:10 पर। हेलो फरमाइश का समय होगा 11:00। 12:00 आप सुनेंगे विविध भारती में यादों की महफिल। 1:00 आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 1:05 पर। 1:10 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। 1:20 पर आप सुनेंगे मुंबई से विविध भारती में सुरीला सफर। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा दिल्ली से 2:00। 2:15 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 2:30 पर हम चलेंगे मुंबई जहां से आप सुनेंगे विविध भारती में सदाबहार नगमे। 2:55 पर आप सुनेंगे रांची से प्रादेशिक समाचार। विविध भारती में आप सुनेंगे 3:00 से सखी सहेली। 4:00 का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का। 4:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती में हेलो फरमाश। 5:02 पर आप सुनेंगे विविध भारती में छाया गीत।

शाम 5:35 पर सुनेंगे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। प्रादेशिक समाचार का समय होगा 6:00। 6:02 पर आप सुनेंगे खेती बाड़ी। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे ग्रामीण सभा। 7:00 का समय होगा रांची से प्रादेशिक समाचार का। 7:10 पर आप सुनेंगे जिले में आजकल। 7:15 पर आप सुनेंगे एक रंग उड़ान का समय होगा 7:45 पर। 8:00 का समय होगा दिल्ली से संसद समीक्षा। 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत से फिल्म संगीत। 8:30 पर आप सुनेंगे महफिल कव्वाली नगमों का ये कार्यक्रम नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में। रात्रि के 8:45 पर आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार का समय होगा 9:00। 9:15 पर आप सुनेंगे दिल्ली से उर्दू में समाचार। 9:30 पर आप सुनेंगे विविद भारती में आज के फनकार मुंबई से। 10:00 का समय होगा संसद में प्रश्नकाल का दिल्ली से। 11:00 आप सुनेंगे दिल्ली से हिंदी में समाचार। 11:05 पर आप सुनेंगे दिल्ली से अंग्रेजी में समाचार। और हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि के 11:10 पर। ये थी हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन से लेकर सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम पलाश जीरगा भगत एम साथियों के आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे हरिहरन की आवाज़ में सुगम संगीत। यह आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां आप सुनेंगे समाचार प्रभात अब से कुछ ही पलों में।

0: मेरा।
1: आप भी लगवा ही दो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहां आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। मछुआरों को कल तक समुद्र में न जाने की सलाह। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कालीरमना ने डिस्कस थ्रो कांस्य पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया गया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से ये विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल करने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं के हित रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
4: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
5: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
4: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
3: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं।
6: ज्यादा जुर्माना, कड़ी सजा, स्पेशल टास्क फोर्स, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स जैसे प्रावधान आपने इसमें रखा है, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन ये जो मजबूत कानून लाने के लिए हमने 2024 में ही इसकी मांग रखी थी, लेकिन तब आपने हमारी इस बात को नहीं माना।
3: वहीं जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने मेडिकल शिक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है। विधेयक का समर्थन करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल ने विरोध प्रदर्शन के लोकतांत्रिक अधिकार का समर्थन किया, लेकिन प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि नीट परीक्षा सभी विद्यार्थियों को शामिल होने का मौका देती है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बेहतर दर्शन करके देखना प्रेरक है। उन्होंने विपक्ष पर युवाओं को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। आज सदन की कार्यवाही 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है।
7: पिछले कई दशकों से हर राज्य और केंद्र सरकार इस प्रकार की पेपर लीक की परेशानी झेल रहा है। बच्चों के भविष्य को

0: इसके कारण संकट पैदा हो रहा है। इन सब को ध्यान में रखते हुए देशव्यापी सभी राज्यों में भी और केंद्र में भी शिक्षा पद्धति में सुधार अनिवार्य हो गया। टेक्नोलॉजी के भरपूर उपयोगी आवश्यकता हो गई और साथ साथ फिर से कोई पेपर माफिया, पेपर लीक करने वाली गैंग, देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली गैंग, उनको बख्शा नहीं जाएगा।
1: इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
0: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई।
2: संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। यह तालमेल समुद्री सहयोग, मुक्त नौवहन तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मार्ग और ऊर्जा आपूर्ति स्रोत सुरक्षित करने की रूपरेखा तय करेगा। यह गठबंधन अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रावधानों के अनुरूप बाबल मंदीप जलडमरू मध्य, लाल सागर और अदन की खाड़ी में साझा समुद्री हितों की सुरक्षा उपायों का हिस्सा है। सदस्य देशों ने कहा कि यह गठबंधन किसी भी देश जोड़ या अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ को लक्षित करके नहीं बनाया गया है, बल्कि पूरी तरह रक्षात्मक उद्देश्य के लिए है। इसकी समस्त गतिविधियां अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में होंगी तथा किसी भी देश की संप्रभुता और नौवहन स्वतंत्रता का सम्मान करेगी। सदस्य देशों में सऊदी अरब को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने और स्थायी मुख्यालय बनाने की सहमति बनी। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया की स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता की। श्री मोदी ने नाविकों सहित लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी घटनाक्रमों की नियमित निगरानी के लिए एकीकृत और समन्वित व्यवस्था बनाने को कहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि गजा में हमास और अन्य सशस्त्र गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण पर बोर्ड ऑफ पीस में सहमति बन गई है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यह समझौता गजा में नई फिलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से इसराइल को भी जरूरी सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि गजा का इस्तेमाल आतंकी हमलों के ठिकाने के रूप में नहीं होगा। हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गजा में पूरी तरह निरस्त्रीकरण की योजना पर सहमति बनी है और जल्द ही आधिकारिक वक्तव्य जारी किया जाएगा। अभी इस समझौते पर इसराइल की प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। स्थानीय अधिकारी अब महिला प्रदर्शनकारियों को निशाना बना रहे हैं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में गुजरात के व्यापक क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। और ब्यूरो के साथ हैं हमारी संवाददाता।
3: मौसम विभाग ने आज मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, जिनमें अहमदाबाद, आणंद, सूरत, नवसारी और वलसाड़ जैसे जिले शामिल है। सभी उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है। एहतियात के तौर पर अहमदाबाद, नवसारी, भरूच सहित कई प्रभावित जिलों में आज स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इस बीच राज्य सरकार ने जिला प्रशासन को निचले और बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेजी से शेल्टर होम में स्थानांतरित करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: वहीं केरलम से हमारी संवाददाता ने

0: खबर दी है कि समुद्र में मछली पकड़ने पर लगी रोक आज आधी रात से हटा ली जाएगी। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वीं शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने भी क्रांतिकारी उधम सिंह के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में उधम सिंह को अप्रतिम साहस और शौर्य का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि उधम सिंह ने लंदन में माइकल ओडायर को मौत के घाट उतारकर जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लिया और ब्रिटिश सरकार को कड़ा संदेश दिया। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृहमंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिया। और अब बात खेलों की करते हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल रात भारतीय भारोत्तोलक लवप्रीत सिंह ने पुरुषों को 110 किलोग्राम वर्ग में रिकॉर्ड के साथ रजत पदक जीता, जबकि सीमा कलीरामना ने महिला डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा समेत तीन भारतीय भी भाला फेंक के फाइनल में पहुंचे, जबकि ट्रिपल जंपर्स के दो भारतीय खिलाड़ी प्रवीण चित्रवेल और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने भी फाइनल में जगह बनाई। वरिष्ठ भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। श्री रहाणे ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संन्यास लेने का ये सही समय है।
1: The reality of life is that everything has a beginning.
2: जिंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज की शुरुआत होती है और उसका अंत भी होता है, और जब वो समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ने और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का सही समय है।
0: अजरबैजान के बाकू में कल अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान निकिता सहरावत ने रजत पदक जीता, जबकि कामना बाबुल और गरिमा ने महिला वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। लोकसभा के बाद राज्यसभा द्वारा एंटी पेपर लीक संशोधन विधेयक को मंजूरी देने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। हिंदुस्तान लिखता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास, विपक्ष ने सदन से किया वॉकआउट। जनसत्ता के शब्द हैं, लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को मंजूरी, राज्यसभा में सत्ता पक्ष विपक्ष में टकराव। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में पैलेट गन इस्तेमाल किए जाने की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के शब्द प्रकाशित किए हैं। असाधारण हालत में पैलेट गन चलाने का अधिकार। लोकसत्य लिखता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पैलेट गन के प्रयोग पर रोक नहीं, विशेष परिस्थिति में कर सकते हैं इस्तेमाल। ईरानी सेना के ठिकानों पर अमरीकी हमले, जॉर्डन में अमरीका के जेट तबाह करने का दावा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है। पत्र लिखता है, कुवैत में चीन की कंपनी की इमारत बनी निशाना, पहली बार इजिप्ट तक हुए ड्रोन अटैक। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर अमेरिका ईरान युद्ध के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अर्थव्यवस्था के लिए बैंकों से आई अच्छी खबर। लेख में बताया गया है कि महंगाई और विश्व युद्ध जैसी स्थिति के बावजूद घरेलू खपत में कमी नहीं आई है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा मिल रहा है। अब पाठ्यक्रम का एक हिस्सा भारत में, अगला विदेश में पूरा कर सकेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय में सेमेस्टर अवे प्रोग्राम के विरोध के बाद कार्यकारी परिषद से मिली मंजूरी, अमर उजाला की सुर्खी है। अब किताबें पाठकों से करेंगी सीधी बातचीत, एआई ने पढ़ने का बदला अनुभव, अटके तो किताब से ही पूछिए, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को सख्त दंड और जुर्माने का प्रावधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधेयक पारित होने का स्वागत किया, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और सशक्त होगी। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख समुद्री मार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में हमास और अन्य हथियारबंद गुटों के पूरी तरह निरस्त्रीकरण के लिए एक सहमति बनने की घोषणा की। गुजरात के अनेक भागों में अगले 48 घंटों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लवप्रीत सिंह ने भारोत्तोलन में रजत और सीमा कलीरामना ने डिस्कस थ्रो में कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार

0: आकाशवाणी का ये रांची केंद्र है। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार इस संदेश के बाद।
1: जन जन तक पहुंचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
2: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
3: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
2: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। संसद से लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। पेपर लीक और गड़बड़ी पर 10 वर्ष तक की सजा तथा 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 26 बंदियों की रिहाई पर बनी सहमति। सभी प्रमंडलों में ओपन जेल स्थापित करने के निर्देश। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी ने एक अभ्यर्थी को किया गिरफ्तार। विपक्ष ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सत्ता पक्ष ने कहा सरकार कर रही है कड़ी कार्रवाई। झारखंड में मॉनसून सक्रिय। मौसम विभाग ने रांची समेत 18 जिलों के लिए आज बारिश, गरज चमक और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। और 16वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य के निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन, रांची पदक तालिका में शीर्ष पर। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में सख्त दंड और जुर्माने सहित कई महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं। इनमें 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दोषी व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करना शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 79 बंदियों के मामले की समीक्षा की गई। विस्तृत विचार विमर्श के बाद 26 कैदियों के रिहाई पर सहमति बनी। मुख्यमंत्री ने सभी प्रमंडलों में ओपन जेल स्थापित करने के लिए भूमि चिन्हित कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने रिहा होने वाले बंदियों के पुनर्वास, सामाजिक पुनर्स्थापन और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती जिलों के पुलिस अधिकारियों ने नक्सलवाद, मादक पदार्थों और पशु तस्करी सहित अंतर्राज्यीय अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए संयुक्त रणनीति बनाने पर सहमति जताई है। सिंहभूम प्रक्षेत्र के डीआईजी अनुरंजन किस्पोट्टा की अध्यक्षता में हुई बैठक में खुफिया सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान, बेहतर समन्वय और संयुक्त अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितता के मामले में सीआईडी ने एक अभ्यर्थी सुमन सौरभ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बीच राज्य की भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है।
4: किस प्रकार से बच्चों को क्वेश्चन रटवाया गया, एक जगह दो जगह नहीं बल्कि बिहार के पटना में भी उन लोगों को रटवाया गया, यहाँ तक कि देश से बाहर नेपाल में भी, रांची में भी कई स्थानों पर होटल लेकर के क्वेश्चन को रटवाया। ये जब सीआईडी ने जांच किया था पूर्व में, ये सारे तथ्य सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से आया है।
0: वहीं इस मामले में जेएमएम के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि सरकार मामले में कड़ी कार्रवाई कर रही है।

निवेदन करेंगे हम छात्रों से, अपील करेंगे कि वो जांच एजेंसियों को सहयोग करें। अगर कोई जानकारी आपके पास है जेपीएससी से संबंधित तो आप जांच एजेंसी को उपलब्ध कराएं ताकि जांच और बेहतर ढंग से चल सके। और एक अपील करना चाहेंगे कि छात्र राजनीति

0: अब ऑनलाइन आवेदन 5 अगस्त से 4 सितंबर तक किए जा सकेंगे। आवेदन शुल्क जमा करने और दस्तावेज अपलोड करने की अंतिम तिथि 5 सितंबर होगी, जबकि त्रुटि सुधार के लिए 6 से 8 सितंबर तक करेक्शन विंडो खुली रहेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह ने झारखंड दौरे के दौरान 209 कोबरा बटालियन के जवानों के साथ पारंपरिक बड़ा खाना कर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कुख्यात माओवादी मिसर बेसरा की गिरफ्तारी में शामिल बहादुर जवानों और अधिकारियों को सम्मानित किया। महानिदेशक ने इस सफलता का श्रेय 209 कोबरा और झारखंड पुलिस के बेहतर समन्वय तथा संयुक्त अभियान को दिया। पश्चिमी सिंहभूम पुलिस ने कहा है कि जिले में शीर्ष माओवादी नेताओं की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण से नक्सलवाद के खिलाफ अभियान को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने कहा कि इससे सुरक्षा बलों की चुनौती कम होगी और अब दूर दराज इलाकों तक जन कल्याणकारी योजनाएं तथा विकास कार्य तेजी से पहुंच सकेंगे।
1: नॉर्मली जितने तेजी से पहुंचने चाहिए योजनाओं का लाभ जो मिलना चाहिए इन सब क्षेत्रों में वो नहीं हो पाता था। नक्सलिज्म की समस्या समाप्त होने के बाद इनमें थोड़ी सी तेजी आएगी। इन जगहों पे डेवलपमेंट जैसे कि रोड्स बनना या इन क्षेत्रों में जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं वो डेवलप होना।
0: हजारीबाग जिले के बड़कागांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान से जुड़े कोयलांचल शांति सेना कुबेर गिरोह के 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के एसपी अमन कुमार ने कहा कि इनके पास से एक देसी पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 23 कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।
2: 29/7 को हम लोगों को सूचना प्राप्त हुआ कि लोसिंगना थाना क्षेत्र में कुछ लड़के हैं प्रिंस खान के, जो उससे लगातार संपर्क में है। टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 लोग जो हैं वो बोकारो के हैं और 3 लोग जो हैं हजारीबाग के हैं। पूरे क्रम में एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, 3 गोली .303 का, 20 गोली, 5 मोबाइल बरामद किया गया है।
0: मुंबई के वरली थाना क्षेत्र में 2,65,00,000 रुपए की चोरी के मामले में मुंबई पुलिस ने गिरिडीह के गांवा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर लाखों रुपए के सोने के आभूषण, चोरी के अन्य सामान और एक एसयूवी बरामद की है। देवघर में राजकीय श्रावणी मेला की विधिवत शुरुआत हो गई है। आज सुबह 4:02 पर बाबा वैद्यनाथ मंदिर के पट खुलने के साथ ही जलाभिषेक शुरू हुआ। लगभग 75,000 श्रद्धालुओं ने बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक किया। जिला प्रशासन ने सुरक्षा, पेयजल और चिकित्सा की व्यापक व्यवस्था की है। मौसम। झारखंड में आज मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने रांची, देवघर और साहिबगंज समेत 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। आसनसोल में आयोजित 16वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य के निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। दूसरे दिन अश्विनी सुमन, तमन्ना झा, विवेक राज और अर्चना कुमारी ने स्वर्ण पदक जीते। रांची पदक तालिका में शीर्ष पर है। अब तक 100 शूटर जोनल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित अधिकांश अखबारों ने जेपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता मामले में सीआईडी की चल रही कार्रवाई को पहले पन्ने की सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर लिखता है, आज जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते से तीसरी बार होगी पूछताछ। प्रभात खबर की सुर्खी है, प्रधानमंत्री ने कहा हर राज्य पेपर लीक से परेशान, शिक्षा व्यवस्था में सुधार जरूरी। हिंदुस्तान ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन पर रोक से किया इनकार। और दैनिक जागरण लिखता है, रामकृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन और उससे जुड़ी 10 कंपनियों पर आयकर का छापा। और अब अंत में मुख्य समाचार। संसद से लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित। पेपर लीक और गड़बड़ पर 10 वर्ष तक की सजा तथा 10 करोड़ रुपए तक जुर्माने का प्रावधान।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 26 बंदियों की रिहाई पर बनी सहमति। सभी प्रमंडलों में ओपन जेल स्थापित करने के निर्देश। जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में सीआईडी ने एक अभ्यर्थी को किया गिरफ्तार। विपक्ष ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। सत्ता पक्ष ने कहा सरकार कर रही है कड़ी कार्रवाई। झारखंड में मॉनसून सक्रिय। मौसम विभाग ने रांची समेत 18 जिलों के लिए आज बारिश, गरज चमक और वज्रपात का जारी किया येलो अलर्ट। और 16वीं झारखंड स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में राज्य के निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन। रांची पदक तालिका में शीर्ष पर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: भारत का लोक सेवा प्रसारक
1: मेरे प्यारे देशवासियों, आज हर घर में मोबाइल फोन लैपटॉप टैबलेट जैसी डिवाइसेस आम हो चली है। देश भर में इनकी संख्या बिलियंस में होगी। आज के लेटेस्ट डिवाइस भविष्य के ई वेस्ट भी होते हैं। अगर ई वेस्ट को ठीक से डिस्पोज नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर सावधानी पूर्वक ऐसा किया जाता है तो रिसाइकल और रीयूज की सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बड़ी ताकत बन सकता है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि अलग अलग प्रोसेस के जरिए इस ई वेस्ट से करीब 17 प्रकार के प्रेशियस मेटल्स निकाले जा सकते हैं। इसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल शामिल है। इसलिए ई वेस्ट का सदुपयोग करना कचरे को कंचन बनाने से कम नहीं है। आज ऐसे स्टार्टअप्स की कमी नहीं जो इस दिशा में इनोवेट काम कर रहे हैं। इस सेक्टर ने हजारों लोगों को सीधे तौर पर रोजगार भी दिया है। ये सभी भारत को ग्लोबल रिसाइकलिंग हब बनाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन ऐसे इनिशिएटिव की सफलता के लिए एक जरूरी शर्त भी है। वो ये है कि ई वेस्ट के निपटारे से सुरक्षित उपयोगी तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करते रहना होगा।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल, देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। आइए सुनते हैं गीत गुंजन। गीत गुंजन सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत में आइए हम आपको सुनवाते हैं

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज़ में फिल्म दिल का ये गाना। गीत समीर के थे और संगीत आनंद मिलन का। श्रोताओ आप सुन रहे हैं गीत गुंजन, ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं फिल्म सनम तेरी कसम का ये गाना।

और इसी गीत के साथ हमें गीत गुंजन से आज्ञा दीजिए, फिर मिलेंगे, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे गीत गुंजन, पुराने फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। सुनते हैं जोहार पलामू।

जो हर पलाम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को पिंकी वर्मा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम आज के सुविचार से। हमारे आज के सुविचार इस प्रकार से हैं, कहते हैं कठोर परिश्रम और धैर्य ही सफलता के मूल मंत्र होते हैं। हम जब तक कठोर परिश्रम ना करें तब तक हमें सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो इसी सुविचार के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं प्यारा सा गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलाम। वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं मौसम का मिजाज। आज का अधिकतम तापमान है 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम है 27 डिग्री। आप सुन रहे हैं जोहार पलामू। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सुनते

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम जोहार पलामू। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बातें करते हैं अपने स्वास्थ्य के प्रति हम कैसे सचेत रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने के लिए प्रकृति ने हमें हर मौसम के फल, फूल और सब्जियां दी हैं। तो इसी प्रकार ऐसे ही मौसम में हमें अभी बाजार में मिल रहे हैं फल, वो फल है नाशपाती। जी हाँ, नाशपाती खाने से पाचन में सुधार होता है, कब्जे दूर होते हैं और हमारे हृदय जो है वो स्वस्थ रहते हैं। इसमें फाइबर जो होता है वो पेट को साफ रखता है, वजन नियंत्रण कर हम कैलोरी और अधिक पानी वजन घटाने में हमारी मदद करती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता विटामिन सी होने के कारण एंटीऑक्सीडेंट और शरीर को मजबूत बनाती है। डायबिटीज, कम ग्लाइसिस इंडेक्स ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। तो आप मिलने वाले बाजार में प्रकृति के अनुकूल जो फल सब्जियाँ मिल रहे हैं उसे हम खाएँ और बरसात का पूरा आनंद लें और अपना शरीर भी स्वस्थ रखें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, सुनते ये प्यारा सा गाना।

अभी आप सुन रहे थे जोहार पलामू। प्रस्तुति स्वर था पिंकी कुमारी का, संयोजक थे श्री प्रशांत गौरव। ये आकाशवाणी का डाल्टनगंज केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है चरौदा बार नवापारा अभयारण्य बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, खुशबू और ज्योति ठाकुर जी ने।
2: आपने लिखा है, सफलता हमेशा आत्मविश्वास और निरंतर मेहनत से मिलती है, केवल अवसरों की तलाश करते रहने से नहीं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। इसके द्वारा सच में हम सबों को प्रेरणा मिलती है। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो संदेश के क्रम में आज हमें पहला संदेश मिला है डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी, गौरव तामुरिया और मास्टर अल कबीर का।
2: लेवाई छत्तीसगढ़ से गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी।
0: और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन।
2: ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई और सूरज कुमार ढाकसे जी।
0: और कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। आप सभी श्रोताओं का प्रेरक लघु कथाओं की श्रृंखला की अगली कड़ी में स्वागत है।
0: जी श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बचपन के एक प्रसंग पर। ये अत्यंत प्रेरक और ऐतिहासिक रूप से अच्छी तरह से प्रलेखित है।
2: हम जानेंगे कि उनके शिक्षक की प्रेरणा ने किस तरह उनकी जिंदगी बदल दी।
0: हम सभी जानते हैं श्रोताओं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने बाल्यकाल में बड़ी गरीबी देखी।
2: उनके पिता नाविक थे और वे अपने भाई के साथ रेलवे स्टेशन पर अखबार बेचने का काम करते थे।
0: जब वे रामेश्वरम के एक स्कूल में पढ़ते थे तो एक दिन उनके विज्ञान के शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर पक्षियों की उड़ान के बारे में पढ़ा रहे थे।
2: कक्षा में कई विद्यार्थियों की तरह कलाम भी ये बात पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे थे। शिक्षक ने इसका हल निकाला।
0: तो हल उन्होंने इस प्रकार से निकाला कि वे सभी बच्चों को समुद्र तट पर ले गए।
2: जी।
0: वहाँ उन्होंने उड़ते हुए पक्षियों को दिखाते हुए समझाया कि वे अपने पंख कैसे फैलाते हैं, हवा का उपयोग कैसे करते हैं और कैसे हवा में दिशा बदलते हैं।
2: इस प्रत्यक्ष अवलोकन और अनुभव ने बालक कलाम के मन पर गहरा प्रभाव डाला।
0: बाद में श्रोताओं, उन्होंने अपनी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर में लिखा कि उसी दिन उनके मन में उड़ान और वैमानिकी के प्रति गहरी रुचि जागी।
2: जी।
0: यही रुचि आगे चलकर उन्हें एयरोस्पेस इंजीनियर, वैज्ञानिक और भारत के मिसाइल मैन बनने की दिशा में ले गई।
2: जी।
0: उनके मन में एक अदम्य इच्छा जाग गई कुछ कर गुजरने की। तभी तो उन्होंने कहा था,
2: सपने वे नहीं होते जो आप सोते समय देखते हैं, सपने तो वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते।
0: जी हाँ श्रोताओ, एक प्रेरणादायक शिक्षक विद्यार्थी का जीवन बदल सकता है, केवल किताबों से ही नहीं लेकिन अनुभव से। छोटी सी प्रेरणा भी भविष्य की बड़ी उपलब्धियों का आधार बन सकती है।
2: श्रोताओ, आज के प्रसंग में आपने शब्द सुना वैमानिकी, इसका अर्थ है विमान उड़ाने का विज्ञान।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और अपनी किस पुस्तक में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने शिक्षक की

0: प्रेरणा के बारे में लिखा है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: वैमानिकी का अर्थ क्या होता है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने किस पुस्तक में अपने शिक्षक की प्रेरणा के बारे में लिखा है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559।

0: पाठ्यपुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
1: YouTube में जाइए, टाइप कीजिए NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और आप अपनी मनचाही पुस्तकों को वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं।
0: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पूरी पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
1: तो 8800-440-559 है हमारा IVRS नंबर। हमें आशा है कि ये नंबर आपको भी याद हो गया होगा। और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। संदेश जरूर भेजिएगा।
0: आप हमें इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको CIT NCERT के बारे में ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी।
1: तो श्रोताओ, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है मैया मैं नहीं माखन खायो।
0: ये कार्यक्रम सूरदास जी द्वारा रचित एक सुंदर भक्ति दोहे पर आधारित है, जिसमें बालक कृष्ण अपनी माता यशोदा से सफाई देते हुए कहते हैं कि माँ, मैंने माखन नहीं खाया है। कार्यक्रम में इस दोहे को संगीत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है विष्णु नारायण भातखंडे।
1: ये कार्यक्रम हिंदुस्तानी संगीत के प्रकांड विद्वान और प्रलेखक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी के जीवन और संगीत के क्षेत्र में उनकी महान उपलब्धियों और योगदान की सविस्तार जानकारी देता है।
2: भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक महान विभूतियों को जन्म दिया है।
3: आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संगीत की एक ऐसी महान विभूति के बारे में जिनका संगीत के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान सदा सर्वदा स्मरण किया जाएगा। उन्हें दुनिया पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के रूप में जानती है।
2: भारतीय संगीत की तुलना एक विशाल बट वृक्ष के समान है जिसकी शाखाओं में लोक संगीत, जनजातीय संगीत और शास्त्रीय संगीत प्रमुख हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य दो भाग हैं, कर्नाटिक संगीत और हिंदुस्तानी संगीत।
3: कर्नाटिक संगीत दक्षिण भारतीय संगीत को कहते हैं, जबकि हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारतीय संगीत है। जो स्थान दक्षिण भारतीय संगीत में पुरंदर दास जी का है, वही स्थान पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी का उत्तर भारतीय संगीत में है। वे हिंदुस्तानी संगीत के प्राणदाता माने जाते हैं।
2: महान संगीतज्ञ श्री विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को महाराष्ट्र राज्य के बालकेश्वर नामक गांव में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। कहते हैं कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई दे जाते हैं। उनके बारे में एक किंवदंती प्रसिद्ध है कि जन्म लेते ही जब वो रोए तो दूर कहीं से आती बांसुरी की मीठी धुन सुनकर वो एकदम शांत हो गए और मुस्कुराने लगे।
3: भातखंडे जी के माता पिता भी संगीत प्रेमी थे। इस घटना से उन्हें भी ये भान हो गया था कि बालक में असाधारण रूप से संगीत की प्रतिभा है। स्कूली जीवन के दौरान ही उन्होंने स्कूल और राज्य के स्तर पर आयोजित कई संगीत और नाटक प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अनेक पुरस्कार जीते।
4: श्रोता देवियों, सज्जनों और बच्चों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हमारे बीच संगीत की दुनिया में उभरते एक अत्यंत मेधावी और प्रतिभाशाली तरुण हैं विष्णु नारायण भातखंडे। अनुरोध है कि मंच पर पधारें और अपने अनूठे गायन से सभा को शोभायमान करें विष्णु नारायण भातखंडे।
5: लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति संग, लागे लगन सखी पति
2: संग। स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने कानून की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई के साथ साथ शास्त्रीय संगीत का भी नियमित अध्ययन शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि छात्र जीवन में ही उन्होंने श्री वल्लभ दास से सितार की शिक्षा ली। इसके बाद कंठ संगीत की शिक्षा श्री बेल बागकर, मियां अली हुसैन खान तथा विलायत हुसैन से प्राप्त की।
3: कानून की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने बंबई, जो आज मुंबई कहलाता है, में वकालत भी की, लेकिन संगीत साधना को भी अपना समय देते रहे।

0: धीरे धीरे उन्हें यह समझ में आने लगा कि उन दिनों प्रचलित हिंदुस्तानी संगीत में कुछ बुनियादी त्रुटियां आ गई हैं।
1: उन्होंने पाया कि प्राचीन भारत का संगीत लिपिबद्ध और लिखित सामग्री पर आधारित था, लेकिन मध्ययुगीन भारत में संगीत के प्रलेखन की ओर संगीतकारों ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उन दिनों संगीत की पुस्तकें प्रचलित नहीं थीं। उनकी इच्छा थी कि संगीत के विद्यार्थियों के लिए कोई ठोस पाठ्यक्रम हो और इसके शास्त्रीय पक्ष के बारे में भी विद्यार्थी जाने।
0: उन्होंने देश के अन्य बड़े बड़े कलाकारों से संपर्क किया। इन कलाकारों से प्राप्त जानकारी को उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। उन्होंने संस्कृत, तेलुगु, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती और उर्दू के संगीत ग्रंथों का भी गंभीर अध्ययन किया और उनकी स्वर मालिकाओं की बारीकियों को समझा।
1: इस सिलसिले में वे महाराष्ट्र की गायनोत्तेजक संगीत मंडली में शामिल हो गए और उस समय के अली हुसैन खां, रायोजी वेलवागकर और विलायत हुसैन जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों के संपर्क में आए। अक्सर वे इन उस्तादों से मिलते और संगीत पर गहन विचार विमर्श करते। एक दिन की बात है।
2: प्रणाम गुरुदेव।
3: प्रणाम प्रणाम। आइए भातखंडे जी, उस दिन उल्लास नगर संगीत महोत्सव में आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। हिंदुस्तानी संगीत की स्थिति के बारे में आपकी चिंता बड़ी प्रासंगिक है।
2: जी गुरुदेव, मैंने अब तक ये अनुभव किया है कि ऋतुओं पर, प्रकृति पर, त्योहारों पर, भक्ति पर और लगभग सभी विषयों में संगीत रचनाएं तो बहुत हुई हैं और उनका श्रृंगार भी अनोखा है, लेकिन गुरुदेव हमारे पास वे रचनाएं सुरों और कथ्यों में लिपिबद्ध नहीं है। और यदि ऐसा ही होता रहा तो
3: हमारी गरिमामयी संगीत विधा धीरे धीरे लुप्त हो जाएगी।
2: जी गुरुजी, और यही मेरी चिंता है। मुझे लगता है कि हमें इस दिशा में दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य होगा संगीत रचनाओं की कथ्य सामग्री का संग्रह करना और दूसरा स्वर लिपि लिखने की जो परंपरागत पद्धति है उसमें थोड़ा और सुधार करना, ताकि उन्हें सुगमता से पढ़ा जा सके और वे सर्व सुलभ हो सके।
3: ये तो बहुत ही सुंदर विचार है। मैं आपकी इस पहल का समर्थन करता हूं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है भातखंडे जी।
2: धन्यवाद गुरुदेव, आज्ञा दीजिए।
0: फिर क्या था, ऋषि मतंग और ऋषि भरत द्वारा विकसित प्राचीन काल की पुरानी स्वर लिपि की लेखन पद्धति में भातखंडे जी ने थोड़ा सुधार किया, जिसके द्वारा संगीत की लय, ताल, मात्राएं, कोमल और शुद्ध स्वरों का चढ़ाव उतार, आलाप इत्यादि को आसानी से दर्शाया जा सकता था।
1: संगीत रचनाओं के संकलन हेतु अक्सर भातखंडे जी दूर दूर की यात्राएं करते और संगीतकारों से निवेदन करते कि वे उन्हें उनकी रचनाओं का संग्रह करने की अनुमति दें, लेकिन कई संगीतकार उन्हें रचनाएं देने से इनकार कर देते थे। फिर क्या होता था, आइए

0: अरे अरे अरे भाई रुको रुको, अरे कहाँ चले आ रहे हो हैं? देखते नहीं, जगह नहीं है।
1: मैं देख रहा हूँ श्रीमान, लेकिन
0: लेकिन क्या
1: श्रीमान? मैं उस्ताद जी का संगीत सुनने के लिए बड़ी दूर से आया हूँ।
0: तो
1: मेरा मतलब है दूसरे नगर से आया हूँ। आप तो इस समारोह के आयोजक लगते हैं।
0: हाँ?
1: यदि कृपा पूर्वक मंच के आसपास या पर्दे के पीछे ही मेरे बैठने की थोड़ी व्यवस्था हो पाती तो।
0: बड़े संगीत प्रेमी लगते हो, तभी तो इतनी दूर से आए हो। अच्छा चलो, तुम्हें मंच के ठीक पास बैठाने की कोशिश करता हूं।
1: जी जी, वैसे मंच के पर्दे के पीछे भी चलेगा। बड़ी मेहरबानी आपकी।
0: आओ चलो।
1: धन्यवाद धन्यवाद।
2: तो सुना आपने, दरअसल होता ये था कि ऐसी स्थिति में पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी इन उस्तादों के कार्यक्रम में

0: पर्दे के पीछे या मंच के नीचे छिपकर बैठते तथा कथ्य और स्वर लिपियां लिखा करते थे। इसके आधार पर उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे और बाद में बाकायदा उन संगीतकारों को श्रेय भी दिया।
1: भातखंडे जी स्वयं भी चतुर पंडित के छद्म नाम से गीत रचना करते थे। गीत मालिका और क्रमिक पुस्तक माला में उनके स्वरचित 250 के लगभग गीत हैं। भातखंडे जी ने कठिन प्रयत्नों से एकत्रित पुरानी प्रचलित तथा अप्रचलित गायन सामग्री को क्रमिक पुस्तक माला के 6 संस्करणों में प्रकाशित करवाया। वे स्वयं अपने हाथ के लिखे हुए संग्रहों को लेकर प्रकाशकों के पास जाते।
2: प्रकाशक महोदय अंदर बैठे हैं क्या?
3: जी हाँ, अंदर ही बैठे हैं।
4: आइए पंडित जी, आइए, अंदर आ जाइए।
2: धन्यवाद धन्यवाद।
4: लग रहा है आज फिर कुछ छपाई की सामग्री लेकर आए हैं।
2: जी हाँ जी हाँ, आज क्रमिक पुस्तक माला का 6वां संस्करण लेकर आया हूँ।
0: भातखंडे संगीत शास्त्र उनकी अभिनव रचना थी, जिसे उन्होंने मूल रूप से मराठी भाषा में लिखा। प्रकाशनों का सिलसिला चलता रहा। सन 1910 में उन्होंने स्वर मालिका प्रकाशित करवाई। ये भारतीय संगीत जगत में एक महत्वपूर्ण कृति साबित हुई। इसमें विभिन्न रागों की सरगमें थीं। सन 1911 में अष्टोत्तर शत ताल लक्षणम तथा 1912 में लक्षण गीत नामक गीत संग्रह 3 भागों में छपा। इसमें करीब 110 गीत थे।
1: वे दक्षिण भारत के अनेक संगीत विद्वानों के साथ भी संगीत चर्चा में शामिल हुए। इस क्रम में उन्होंने विजयनगरम, हैदराबाद, मद्रास जैसे संगीत संपन्न स्थानों का दौरा किया। वहीं पर इन्हें पंडित वेंकट मुखी के 72 थाटों का भी पहली बार पता चला।
0: उनके प्रमुखतम कार्यों में से एक है समग्र हिंदुस्तानी संगीत को 10 थाटों में विभाजित और वर्गीकृत करना एवं उनके गायन के समय को निर्दिष्ट करना। थाट अथवा ठाट हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में रागों के विभाजन की पद्धति है, जिससे राग की उत्पत्ति होती है। थाट को मेल भी कहा जाता है। आज हिंदुस्तानी संगीत में लगभग 100 राग हैं जो उनके द्वारा वर्गीकृत किए गए हैं। उनके अथक प्रयासों से देश भर में कई संगीत विद्यालयों और महाविद्यालयों की स्थापना हुई और संगीत को एक ठोस पाठ्यक्रम के रूप में देखा जा सका।
1: आधुनिक भारत में शास्त्रीय संगीत के पुनर्जागरण के इस महान अग्रदूत का 19 सितंबर 1936 को निधन हो गया। उनका धन्यवाद कि उनके कारण आज हमारे पास समृद्ध हिंदुस्तानी संगीत का ठोस पाठ्यक्रम, सरगम लिखने की सुगम और अनूठी पद्धति, रागों की स्वर लिपियां और कथ्य सामग्री है। मानव सभ्यता और विश्व का संगीत समुदाय उनके इस अतुलनीय योगदान हेतु कृतज्ञता प्रकट करता है।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम विष्णु नारायण भातखंडे, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की
6: लयात्मक प्रस्तुति।
5: शीर्षक है
6: अभी न होगा मेरा अंत।
5: अभी न होगा मेरा अंत, आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत और उमंग की तकनीकी टीम के साथ
1: जगबंधु
0: कुसुमलता
1: और फैजान के साथ विमलेश को अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आइए चलते हैं दिल्ली के केंद्र, जहां से आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार अब से कुछ ही पलों में।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। संसद ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इसे कल मंजूरी दी। लोकसभा से यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विधेयक पर चर्चा के लिए 7 घंटे का समय दिया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। मामलों के शीघ्र निपटान के लिए राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन विशेष त्वरित अदालतें स्थापित करेंगे। मामले की छानबीन पुलिस थाने में सूचना दर्ज होने की तिथि से 2 महीने

0: के अंदर पूरी करनी होगी। आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के अंदर सुनवाई पूरी हो जानी चाहिए। सदन में विधेयक पेश करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि ये विधेयक विद्यार्थियों और युवाओं की हित की रक्षा के लिए सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता की पुष्टि करता है।
1: प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉस्ट नो टाइम।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने बिना समय गवाए घोषणा की है कि छात्रों के भविष्य को खतरे में डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसलिए वर्ष 2024 के अधिनियम में संशोधन करने वाला ये विधेयक लाया है ताकि इसे अधिक कठोर और प्रभावी बनाया जा सके।
1: इन ऑर्डर टू मेक इट मोर स्ट्रिंजेंट मोर डिटरेंट इज बीइंग ब्रॉट इन।
0: चर्चा की शुरुआत में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सरकार ने नए विधेयक में केवल दिखावे के लिए बदलाव किए हैं। आज सदन की कार्रवाई 11 बजे फिर शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा कि इससे परीक्षा प्रणाली और मजबूत होगी। सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार विश्वसनीय शिक्षा प्रणाली स्थापित करने के लिए लगातार कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की समस्या को ध्यान में रखते हुए संसद ने कड़े कानूनी प्रावधानों के साथ विधेयक पारित किया है। इससे पहले संसद ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान वैधानिक संरक्षण प्रदान करना है। वंदे मातरम के अपमान पर 3 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने पश्चिम एशिया के प्रमुख जलमार्गों में नौवहन सुरक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन बनाया है। इस बारे में विचार विमर्श के लिए रियाद में संबंधित देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठक के बाद ये घोषणा की गई। संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि इस सुरक्षा गठबंधन का उद्देश्य लगातार बढ़ रही समुद्री चुनौतियों से निपटना है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा है कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री जैन ने कहा कि आकाशवाणी ने एक विश्वसनीय सार्वजनिक प्रसारक के रूप में पहचान बनाई है। समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धा उधम सिंह को शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की। आज उपन्यास और कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य में मुंशी प्रेमचंद का स्थान अप्रतिम है। उन्होंने गोदान, गबन और रंगभूमि जैसी कालजयी कृतियों की रचना की। गृह मंत्री अमित शाह ने उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस महान कथाकार ने समाज की पीड़ा, असमानता और शोषण को शब्द दिए। 135वीं डूरंड कप प्रतियोगिता आज शिलांग में शुरू हो रही है। एक रिपोर्ट।
3: आज शिलोंग में 135वें डूरंड कप के ग्रुप ई के मुकाबलों की शुरुआत होगी। इस ग्रुप में मेघालय के 3 क्लब शिलोंग लाजोंग फुटबॉल क्लब, नोंगसे स्पोर्ट्स सोशल एंड कल्चरल क्लब और लैंगसनिंग फुटबॉल क्लब खेल रहे हैं। इनके साथ ही मुंबई फुटबॉल क्लब भी ग्रुप ई का हिस्सा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा आज दोपहर होने वाले उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। भारतीय सशस्त्र बलों की ओर से हथियारों और सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। ये प्रदर्शनी आज शिलोंग के पोलो ग्राउंड में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक लोगों के लिए खुली रहेंगी। अनुमिता दास, आकाशवाणी न्यूज, शिलांग।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय VC प्रमोद। Parliament has passed the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026, with the Rajya Sabha approving it yesterday. The bill was passed by the Lok Sabha on Wednesday. The legislation incorporates several significant provisions, including stringent penalties such as imprisonment for up to 10 years, fines of up to 10 crore rupees, and the seizure of the properties of convicted offenders. To ensure the expeditious disposal of cases, the legislation mandates that every state government and union territory administration establish special fast-track courts for the day-to-day trial. Replying to the discussion on the bill in the Rajya Sabha, Minister of State for Personnel and PMO Dr. Jitendra Singh said, "This issue touches every citizen of India and has stake with every citizen of this country." He said that the National Education Policy 2020 has been the biggest game changer over the last decade. Moving the bill in the House, Dr. Singh reiterated the Modi government's resolve of zero tolerance towards malpractices and paper leaks of public examinations.
1: Prime Minister Modi ji lost no time to declare that nobody will be allowed to jeopardize the future of our children. And hence, this legislation, which seeks to make amendments in 2024 Act in order to make it more stringent, more deterrent, is being brought in. If there are any suggestions for improvement, I'll be taking note of it. This bill is a reaffirmation of the government's highest commitment to safeguard the welfare of the students and youth of this country.
4: Initiating the discussion, Leader of Opposition Mallikarjun Kharge said that proposed amendments will not be effective to curb malpractices in the public examinations. Prime Minister Narendra Modi has said that government is continuously taking one step after another to build a trustworthy examination system. In a video message on social media, Mr. Modi said, "For the past several decades, every state government and the central government has faced the problem of paper leaks, and this has put the future of students at risk."
5: दोनों सदनों ने कठोर प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है। काम आगे भी चलता रहेगा। हम ऐसी परिस्थितियों को लंबे समय तक नहीं चलने देंगे। इस विश्वास के साथ साथियों, आइए हम सब मिलकर के विकसित भारत के स्वप्न को पूर्ण करने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर के चले।
4: The nation pays homage to revolutionary freedom fighter Shahid Udham Singh on his 87th martyrdom day today. Belonging to the Gadar Party and Hindustan Socialist Republic Association, Udham Singh assassinated Michael O'Dwyer, former Lieutenant Governor of British Punjab, on 13th March 1940 to take revenge of the 1919 Jallianwala Bagh massacre of Amritsar. Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah have paid tribute to the immortal martyr Udham Singh on his martyrdom day. Saudi Arabia and 13 other countries have established a maritime defense coalition aimed at protecting shipping in key waterways of West Asia. The announcement came after military figures from dozens of countries met in Riyadh to discuss the alliance. A joint statement issued by the alliance said that the multinational maritime defense coalition aims to tackle the growing challenges facing global maritime security. U.S. President Donald Trump has said that the Board of Peace has reached an agreement for the complete disarmament of Hamas and other armed groups in Gaza. In a social media post, Trump said, "This agreement is a critical step towards Gaza finally being governed by a new Palestinian government that will work closely with the Board of Peace to help the Palestinian people." In Jammu and Kashmir, authorities have ordered complete suspension of traffic on Jammu-Srinagar National Highway NH-44 due to facilitate slope stabilization and restoration works on the vulnerable Udhampur-Chenani stretch near Ladha-Samroli. An order on the road closure was issued by the Additional District Magistrate Udhampur following a request from the Project Director, National Highway Authority of India, NHAI. And that is the end of this news bulletin.
6: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, टीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 10:10 और पूरे 5 सेकंड हो चुके हैं और ये समय है ईमेल पर आधारित आपकी पसंद के फिल्मी गीतों के कार्यक्रम आपकी पसंद का। सबसे पहले आपको बता दें अपना ईमेल आईडी, जिस पर आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना संदेश, अपनी पसंद के गीत के साथ भेजना है। तो नोट कीजिए हमारा ईमेल आईडी है ip radio tally @

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ सर जी, मेरा प्यार भरा सप्रेम नमस्कार।
0: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं नवागढ़ कटाई जिला बेमेतरा छत्तीसगढ़ से नारायण प्रसाद वर्मा बोल रहा हूँ सर जी।
0: अरे भाई, ये तो दतरेंगी से नारायण प्रसाद वर्मा, ये वही हैं जिनकी फरमाइश आती
1: नहीं
0: हैं?
1: सर जी, नहीं सर जी, वो अलग है सर जी, मेरा जिला बेमेतरा है सर जी।
0: लेकिन नाम एक ही है?
1: नहीं नहीं सर, उस नाम से दतरेंगी में नहीं है सर जी।
0: अच्छा, तो
1: जी सर
0: बताइए
1: जी।
0: क्या हाल चाल है छत्तीसगढ़ के?
1: हाँ सर जी, हम लोग अब भाई सभी अच्छे हैं और हमारे यहाँ तो बारिश अच्छी हुई है सर जी, और मैं किसान आदमी हूँ।
0: अच्छा, तो अभी क्या
1: हाँ,
0: गतिविधियां चल रही
1: अभी
0: हैं?
1: धान का रुपाई का काम जारी है।
0: धान का कटोरा है छत्तीसगढ़?
1: जी सर, धान का कटोरा है हमारे छत्तीसगढ़
0: किस
1: जी
0: किस
1: में।
0: तरह के चावल उगाते हैं आप?
1: हमारे यहाँ मोटा चावल भी लेते हैं सर जी, और पतला चावल, दोनों प्रकार का चावल लेते हैं सर जी, और कुछ अपना सुगंधित चावल भी लेते हैं सर जी हमारे यहाँ।
0: बासमती की बहुत सारी किस्में होती हैं।
1: हाँ सर जी,
0: क्या बात है, आज बताइए कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: फिल्म रंग का गाना सुना दीजिए सर जी, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है। इसलिए बोल रहा हूँ सर जी कि हम लोग विविध भारती जब तक नहीं सुनते हमको चैन आता ही नहीं है, इसलिए बोल रहा हूँ सर जी।
0: तो चलिए भाई, आपको चैन आए इसलिए रंग फिल्म का गीत आप तक पहुंच रहा है।

0: हेलो फरमाइश
1: सर। नमस्कार
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं सिमीपाल गोयल बहादुरगढ़ हरियाणा से बात कर रहा हूँ सर।
0: बताइए जी, क्या हालचाल है?
1: सर ठीक है सर, आप बताइए कैसे हो सर?
0: एकदम अच्छे हैं जी, और आप सभी श्रोताओं से बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और इन दिनों में क्या चल रहा है आपके जीवन में?
1: सर बस अभी काम पे हैं, ड्यूटी पे कॉल।
0: अच्छा।
1: कर रहे थे, कॉल भी लग गई और काफी टाइम के बाद कॉल लगी है हमारी। आज तो आपके शो सुनते हैं सभी
0: जी,
1: जो संडे को आते हो आप शाम को हवा महल में, तो वो सुनते हैं ज्यादातर।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सारे कार्यक्रम सुनते हैं। और देखिए कितने सारे श्रोता फोन करते हैं, लेकिन सभी का फोन नहीं लगता, क्योंकि बहुत सारे देश के अलग अलग श्रोता जब एक साथ ट्राई करते हैं तो कुछ लोग हैं जिनकी कॉल लग जाते हैं, और आप उन खुश नसीबों में से एक हैं। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
1: सचिन का नाम है डाकू और गाना है कभी गम से दिल लगाया।
0: क्या बात है, चलिए पूरी करते हैं अपनी बातचीत और सुनवाते हैं डाकू फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते सर,
0: नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ से बात कर रहा हूँ सर आपसे।
0: जी बताइए, नांदेड़ के क्या हालचाल है भाई?
1: नांदेड़ में तो सर अभी बारिश चल रहा है।
0: अच्छा, बारिश अच्छी चल रही है।
1: हाँ जी।
0: और आपका कामकाज कैसा चल रहा है?
1: कामकाज तो सर अभी मैं रिटायरमेंट हूँ।
0: अच्छा, तो रिटायर जिंदगी
1: हाँ
0: के मजे ले रहे हैं।
1: हाँ सर, एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा हूँ फिर भी।
0: क्या बात है, यानी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के।
1: बिल्कुल सही सर।
0: बताइए कि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी में अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करते हैं आप?
1: रिटायरमेंट के बाद बोर हो जाता कि समझ में आता कि क्या करना है अपने सेहत के वास्ते, फिर अपने को दूसरी नौकरी ढूंढ ली सर मैं।
0: बहुत ही बढ़िया है। तो कितने घंटे काम करते हैं दिन में?
1: अब दिन में 8 घंटे करते हैं सर।
0: बढ़िया। और छुट्टी के दिन क्या दिनचर्या होती है?
1: छुट्टी दिन के सर अपना रेडियो साथ रहता है, गार्डन वगैरह घूम के आते हैं सर।
0: बहुत ही बढ़िया। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज बगावत फिल्म का है सर, नागंता रूप है तेरा।
0: वाह, चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: डोर समझ रहा है? नाता, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अरे ये नागन डसले तो क्या कह

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, बताइए कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं कश्मीर सोना मरग से अपनी मिशोता लतीफ अहमद रैना।
0: लतीफ भाई कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छा है।
0: सोनमर्ग में मौसम कैसा है इस वक्त?
1: आज यहाँ पे लगभग धूप है, बहुत 6 दिन से बहुत बारिश आया था यहाँ पे, बहुत नुकसान भी हुआ।
0: अच्छा, और अब बारिश नहीं है, अब लगातार धूप खिली है?
1: हाँ, आज धूप भी है।
0: कश्मीर में
1: हाँ
0: बारिश
1: जी,
0: का मौसम किन महीनों में होता है?
1: लगभग ये हर महीने होता है।
0: हर
1: हाँ,
0: महीने होता
1: बीच
0: है।
1: बीच में होते हैं। हाँ
0: सोनमर्ग
1: जी,
0: तो बहुत ही खूबसूरत जगह है भाई।
1: गुलमर्ग, सोनामर्ग और पहलगाम वगैरह सभी ये पर्यटक के लिए बहुत अच्छा रहता है।
0: और सोनमर्ग से ऊपर की तरफ सड़क कहाँ की तरफ जाती है?
1: वो जाती है लेह लद्दाख की,
0: जी जी
1: रजला।
0: आप गए हैं उस तरफ?
1: हाँ, मैं उस तरफ गया हूँ, लेह लद्दाख, कारगिल, द्रास।
0: अच्छा, लेह लद्दाख
1: हाँ
0: जाने
1: जी,
0: के लिए कौन कौन सी सावधानियां रखने की जरूरत है? फिटनेस किस तरह की होनी
1: बस
0: चाहिए?
1: वहाँ पे ये तो ट्रक वगैरह में जाते हैं, वो छोटे गाड़ी में भी जाते हैं, लगभग 1 दिन और 1 रात लग जाता है लेह में जाने में।
0: जी, और ऊंचाई बढ़ती है तो सांस की तकलीफ होती है?
1: हाँ, लगभग हार्ट में दर्द होता है, ऐसा लगता है।
0: जी, लेकिन वहाँ घूमने लायक इलाके हैं।
1: हाँ सर,
0: जी, आज किस गाने की फरमाइश करने वाले हैं आप लतीफ जी?
1: और हमें सुने कुदरत फिल्म का, तूने और रंगी इलाके सा जादू किया, पिया पिया बोलो मत वाला जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, कैसे हैं यूनुस भाई? मैं जिला भागलपुर बिहार कहलगांव से सुजीत राय, और मैं बताऊं सर, मैं बचपन से दिव्यांग हूं और मुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है।
0: ओ, और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई कहाँ से की है भाई?
1: सर, मुझे सबसे ज्यादा म्यूजिक में रुचि है सर, तो मैं सबसे ज्यादा म्यूजिक में ही लगाव रखता हूं।
0: आपने कहाँ से सीखा?
1: सर, मैं कहलगांव में ही, एक मार्सी में ही संगीत विद्यालय है, मैं वहां से ही सीखा था।
0: अच्छा, तो कोई डिग्रियां या कोई सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं आपने?
1: जी सर, मैं सेकेंड ईयर का विद्यार्थी हूँ संगीत में।
0: और ये जो संगीत की शिक्षा हो रही है, ये गायन की हो रही है या वादन की हो रही है?
1: सर जी, मैं गायन सीखता हूँ।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है। तो बताइए हमारे लिए क्या सुनवाने वाले हैं आज अब?
1: सर, मैं तो दस्तक फिल्म का एक गीत सुना हूँ, और आवाज लता दीदी की है, और गाने के बोल हैं भैया ना धरो बलमा।
0: क्या बात है, इससे मिलती जुलती कोई शास्त्रीय बंदिश याद है आपको?
1: जी सर, एक वो गाना है ना, राग देश, मुझे याद है। अगर कहेंगे तो सर मैं थोड़ा सा गुनगुना सकता हूँ
0: जरूर।
1: ये।

0: हेलो फरमाइश,
1: जी सर।
0: कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर हम बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट उमरिया मध्य प्रदेश से, पृथ्वीराज
0: जी बोलिए बोलिए।
1: यादव।
0: पृथ्वीराज यादव जी, मुझे ये बताइए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से बोल रहे हैं आप?
1: जी, इसका एक एरिया है सर, अपना गांव न्यूसी लगता है।
0: अच्छा, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क के दायरे में कितने गांव आते हैं?
1: सर गांव तो बहुत सारे आते हैं, 105 के करीब।
0: अरे बाप रे। और ये बारिश के दिनों में तो बांधवगढ़ में पर्यटकों का प्रवेश बंद हो जाता है ना?
1: जी 1 जुलाई से 1 अक्टूबर के लिए बंद होता है सर।
0: अच्छा, इस बीच में आप लोग तो चूंकि गांव में ही हैं और उस दायरे के अंदर हैं, तो क्या आपको साइटिंग्स होती हैं? आपको दिखते हैं टाइगर्स?
1: जी टाइगर तो हमेशा 12 महीने दिखते हैं सर, क्योंकि अपना गांव एकदम कोर से सटा हुआ है जंगल से, तो उनके दर्शन तो हमें सुबह शाम ही हो जाते हैं।
0: आप लोग किस तरह की सावधानियां रखते हैं ताकि कोई घटना ना हो?
1: सर देर रात जैसे टाइम से हम जब लोग जाते हैं तो दिन में जाते हैं, शाम के या सुबह टाइम ज्यादा जंगल में नहीं जाते सर।
0: मान लीजिए कि हमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क जाना हो, हमें या हमारे
1: जी
0: किसी साथी को, तो आप तो उस इलाके के हैं, तो हमें ये बताइए कि कौन सा समय सबसे अच्छा होता है जब साइटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं?
1: सर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी।
0: नवंबर से फरवरी, और दिन का कौन सा वक्त?
1: दिन का वक्त वही सर 9 से 12।
0: अच्छा, 9 से 12
1: जी
0: में साइटिंग ज्यादा क्यों होती है भाई?
1: सर उस समय सब अपने विचरण के लिए निकलते हैं ना सर।
0: अच्छा, आपको
1: जी
0: सबसे अच्छा जो दृश्य देखने को मिला वो क्या मिला था?
1: सर यहाँ तो सबसे अच्छा दस बांधवगढ़ का एरिया है सर, उसके अलावा एक झरना प्रपात है हमारे गांव के बाजू में, वो भी बहुत अच्छा है सर, और हमारे यहाँ के मोर बहुत अच्छे हैं सर।
0: मोर? अरे वाह
1: जी
0: वाह
1: जी
0: वाह, बहुत ही बढ़िया। यानी आप बिल्कुल प्रकृति की गोद में रह रहे हैं।
1: जी प्रकृति का संदार है सर यहाँ
0: और आपका काम क्या है भाई
1: सर? हमारा ऑनलाइन डिलीवरी वाला काम करते हैं सर।
0: उस इलाके में?
1: जी जी जी
0: तो मोटर बाइक से घूमते हैं?
1: जी जी
0: अच्छा, विविध भारती की आपके जीवन में क्या जगह है?
1: विविध भारती हमारे जीवन में बहुत अच्छा है सर, हमें सूचना ज्ञान मनोरंजन जो कुछ भी मिला बचपन से लेके अभी तक, हमारे यहाँ आकाशवाणी केंद्र शहडोल है सर, वहाँ से सुनाई देता है आपका आकाशवाणी, तो यहीं से हम पले बढ़े हैं, और सबसे अच्छा रेडियो ही है, रेडियो से अच्छा आज तक हमारे यहाँ कोई प्रसारण का केंद्र नहीं है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यारी बात आपने बोली। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं भाई आप?
1: सर हम आज गाना सुनना चाहते हैं, आ अब लौट चले। ओ यारो माफ करना कुछ कहने आया हूँ।
0: चलिए पूरी करते हैं आपकी फरमाइश, सुनिए अपनी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: अस्सलाम वालेकुम यानुस भाई।
0: जी। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं?
1: हिलाल अहमद श्रीनगर से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं भाई आप?
1: बस ठीक है, आप कैसे हो सर?
0: जी हम अच्छे हैं। मुझे ये बताएं आप क्या काम करते हैं जनाब?
1: हम यही शाल काम करते हैं।
0: ओके, तो मुझे फिर ये बताइए कि एक अच्छे पश्मीने की पहचान कैसे की जा सकती है?
1: अच्छी पश्मीने की पहचान, इसकी क्वालिटी तो अच्छी होनी चाहिए, तो उसमें तो बहुत दाम मिलता है, बाहर कंट्री में भी वो जाते हैं। हम बहुत मेहनत करते हैं इस पे, तो अच्छी तरीके से बनाते हैं, फिर हमें बहुत कीमत मिलता है।
0: बहुत शुक्रिया। मुझे एक और बात बताइए कि ये जो पश्मीना है, कुछ बहुत भारी पश्मीने होते हैं और कुछ कम सर्दियों के लिए होते हैं, तो जो
1: जी जी
0: टूरिस्ट वहाँ आते हैं वो किस तरह से पहचाने कि उनकी जरूरत का पश्मीना कौन सा है?
1: टूरिस्ट यहाँ आते हैं सर, वो भी इसे खरीदे यहाँ, उनको भी वो बहुत पसंद है, लेकिन इसमें तो ईमानदारी की बात है। दरअसल जो भी ये भेजेगा तो वो सही होना चाहिए।
0: जी। और एक अच्छा पश्मीना शॉल बनाने में आपको कितना वक्त लगता है?
1: सर इसमें तो बहुत डिजाइन है आते हैं इसमें, मतलब जो इस पर वो नक्शा होता है ना, वो बहुत किस्म के होते हैं, उसमें मुख्तलिफ बड़े वाला छोटे वाले पुरमतन के आते हैं, उसमें तो बहुत टाइम लगता है। जो पुरमतन होता है ना, उसमें तकरीबन 4 महीने, 3 महीने, 5 महीने भी लगते हैं, तो जो उसके छोटे साइज वाले हैं उसमें 1 महीना भी लगता है, तो इसी तरीके से हम बनाते हैं।
0: जी शुक्रिया, इतनी अच्छी बातें आपने हमें बताई। और अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: कुमार सानू की आवाज में फिल्म का नाम है साथी, जिंदगी की तलाश में है, मौत के कितने

0: फूलों की नगरी उदयपुर राजस्थान से। जी
1: क्या बात है, क्या मौसम है
0: बिल्कुल,
1: वहाँ?
0: मौसम सुहाना है सर, बादल
1: बारिश
0: छा रहे
1: बारिश?
0: हैं, बारिश हल्की हल्की हो रही है, तेज भी नहीं है, ज्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है, औसत मिनिमम बारिश हो रही है
1: क्या बात है, और बारिश के मौसम के मजे क्या हैं?
0: सर। बहुत ही आनंद आता है बारिश का मौसम, सबसे मुझे तो प्यारा लगता है।
1: तो झीलों की नगरी के लोग बारिश के मौसम में कहाँ जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए?
0: उदयपुर में तो बहुत सी जगह है पिकनिक मनाने के लिए, संडे रात तो बहुत भीड़ थी सभी जगह पर, आज पूरा न्यूज़पेपर उसी से भरा हुआ है, इतनी भीड़ हुई थी सभी जगह पर पिकनिक मनाने लोग गए थे।
1: अच्छा, बहुत ही खुशी की बात है। आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं आप?
0: जी सर, पुरानी फिल्म में राज कपूर और नरगिस दत्त की श्री 420 गीत है, प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल,
1: क्या बात
0: मालूम
1: है,
0: नहीं कहाँ है मंजिल।
1: ये बिल्कुल बारिश का आपने गाना चुन लिया है।
0: छतरी के नीचे दोनों भीगते हुए गाना गाते हैं।
1: तो बातों का सिलसिला रोकते हैं और आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: दोस्तों ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड करते हैं सोमवार को दिन में 11 बजे से, और हमारे दो टेलीफोन नंबर हैं, एक है 0222867 0288 यानी 02228670288, दूसरा टेलीफोन नंबर 0224002466 यानी 02240024662। आपको बता दें कि आज जिन श्रोताओं के टेलीफोन कॉल्स लगे हैं वो अगले दो महीने तक हमें फोन न करें ताकि दूसरे श्रोताओं को मौका मिल सके। तो अब चलने से पहले हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलीकर का था। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया राघवेंद्र सिंह नेगी ने। और अब अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। रंग तरंग ये कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: तरंग तरंग
1: रंग तरंग कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोताओं का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

आप सुन रहे थे ये कवाली लैला मजनू फिल्म से मोहम्मद रफी, अजीज, नाजा और शंकर, शंभू, अमर कुमार और साथियों की आवाजें थी। शायद ध्यानवी के बोल थे। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: बेगम अख्तर की आवाज़ में ये दादरा आप सुन रहे थे, और इसके पहले श्रोताओं हमने आपको लैला मजनू फिल्म की कवाली सुनवाई थी, उसमें संगीत था मदन मोहन का।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
3: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ।

एक पल इस एल्बम का गीत आप सुन रहे थे उषा मंगेशकर, भूपेंद्र हजारिका और भूपेंद्र हेमंती की आवाजों में। गुलजार के बोल थे, भूपेंद्र हजारिका की तर्ज थी।

जफर, गोरखपुरी का कलाम आप सुन रहे थे पंकज उदास की आवाज में। एल्बम तस्कीन, छाया गांगुली की आवाज, पयाम सईद।

तस्कीन एल्बम का ये गीत था छाया गांगुली की आवाज में, पयाम सईदी का कलाम था, मधुरानी की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम रंग तरंग।

आप सुन रहे थे पिया बसंती एल्बम से ये गीत उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में। संदेश शांडिल्य की तर्ज थी। संदेश शांडिल्य का लिखा ये गीत था श्रोताओं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राज्यसभा की कार्यवाही नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने मंत्रालय से संबंधित फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 22वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में बयान दिया। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। कई सदस्यों ने अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। हंगामा के जारी रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में बैठक शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की। उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों द्वारा जानबूझकर डाली गई बाधा पर चिंता भी व्यक्त की।
1: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: लोकसभा की कार्यवाही एक स्थगन के बाद अब जारी है। इससे पहले कल राज्यसभा की मंजूरी के बाद

0: लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 संसद में पारित हो गया। लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हुआ था। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने विधेयक पेश किया। विधेयक में पेपर लीक के दोषियों को 10 वर्ष तक की सजा, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और उनकी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान शामिल है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और शारीरिक रूप से मारपीट की। परिवार वालों ने यह भी दावा किया कि इस घटना में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में जारी आतंकरोधी अभियान में सुरक्षा बलों ने भंगाई जंगलों में एक संदिग्ध आतंकवादी ठिकाने का भंडाफोड़ किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि तलाश अभियान के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने खाद्य सामग्री और दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद की, जिससे संकेत मिलता है कि आतंकवादी इस ठिकाने का इस्तेमाल अस्थायी आश्रय और रसद अड्डे के रूप में कर रहे थे। भूटान नरेश जिग्मे खेसा नामग्याल वांगचुक ने आज विदेश सचिव विक्रम मिश्री से मुलाकात की। इस दौरान दोनों देशों के बीच विकास और सहयोग की प्रगति की समीक्षा की गई। सोशल मीडिया पोस्ट में भूटान नरेश ने विभिन्न क्षेत्रों में हुई प्रगति की सराहना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पूबी लालचंद जोवा ने कहा है कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में श्री लालचंद जोवा ने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली रूप से बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर पहुंच गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। यादों की महफिल, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

शनिवार के बोलों को शुरू में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आप सुन रहे थे पारस मनी फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। श्रोताओं, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हमने सजाए हैं मोहम्मद रफी के गाए नगमे।

आप सुन रहे थे वापस फिल्म का गीत, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

0: मोहम्मद रफ़ी को आपने सुना फिल्म दोस्ती में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत था श्रोता।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
2: याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
5: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
4: सखी सहेली?
5: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
4: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
5: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
6: सखी सहेली।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लाल किला फिल्म में आपने सुना मोहम्मद रफी को, बहादुर शाह जफर के लिखी ये इबारत थी, एस एन त्रिपाठी की तर्ज थी। इंदीवर का लिखा गीत आपको सुनवाते हैं कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, आशा भोसले मोहम्मद रफी की आवाजें, फिल्म कुर्बानी।

0: और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
1: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही है, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
0: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
2: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल एरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
0: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
3: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
0: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मोहम्मद रफी की आवाज में हकीकत फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। कैफी आजमी की रचना थी, मदन मोहन का संगीत था, नील कमल। इस फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी की रचना, संगीत रवि का।

0: रफी के गाए फिल्म नीलकमल के इस गीत के साथ ही श्रोताओ यादों की महफिल कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।
1: इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा की पढ़ाई को कैसे बनाया जाए आसान, प्रभावी और तनाव मुक्त, इसके कुछ फॉर्मूले बताएंगे फिजिक्स के प्रोफेसर नयन वर्मा।
2: अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रही हैं, आप अपना स्टडी टाइम डिवाइड कर लीजिए, 6 घंटा आप जो भी कोचिंग में जाते हैं, 7-8 घंटे की नींद, 1 घंटे का आपका स्पोर्ट्स, उसके बाद में आपके पास 6-7 घंटे जो बचते हैं वो टाइम डिविजन आपके ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज दैट टाइम डिविजन डिफर्स फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट। लेकिन आप MCQs रोज प्रैक्टिस करें, बिकॉज आपका जो भी एडमिशन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के रैंक के ऊपर डिसाइड होता है।
1: काउंसलर डॉक्टर सुमति ओझा साझा करेंगी तनाव और दबाव से कैसे निपटें।
3: हम किस तरह से पेरेंटिंग करते हैं जैसे हमारे माँ बाप ने हमारे साथ किया, अब जमाना बदल गया है, वी आर इन डिजिटल ईरा और इन्फॉर्मेशन फ्री फ्लोटिंग अवेलेबल है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि बार बार वर्कशॉप्स रखना, रोल प्ले बताना, उन्हें कैसे कम्युनिकेट करना, ये सब बताना बहुत जरूरी है।
1: फिल्म लेखिका विभा सिंह करेंगी इस कार्यक्रम का विचार मंथन।
4: आजकल हम बहुत बातें सुनते हैं कि कितनी मेहनत सही है और कितनी नहीं सही है, वो एक अलग डिस्कशन है, पर हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये बच्चों को जानना बहुत जरूरी है।
1: तो सुनिए विविधा में सृजन भारती 2 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से थोड़ी देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम सुरीला।

विविध भारती से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। श्रोताओ, भारतीय सिनेमा के महान पार्श्व गायक मोहम्मद रफी की आज पुण्यतिथि है और सुरीला सफर कार्यक्रम को आज हमने मोहम्मद रफी की याद और आवाज से सजाया है। बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे सभी श्रोताओं का। आपको लॉग ऑन कर लेना है www.facebook.com/vbsmumbai और अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं इस पते पर आप भेज सकते हैं। मोहम्मद रफी की जब बात आती है श्रोताओ, तो सब कुछ जैसे मोहब्बत के फसानों में ढल ही जाता है। उनके जिंदा दिल गीतों को हमने सुना ही नहीं बल्कि एक जिंदगी जी है इन गीतों के साथ। चलिए एक बार फिर हम और आप बन जाते हैं इन गीतों के हम सफर और अब पढ़ देते हैं वो इबारत जो आज हमने फेसबुक पर पोस्ट की है। तो ये कुछ मोहम्मद रफी साहब की याद से लबरेज है, उनके गीतों की इसमें याद भरी है। ये इबारत है कि वो आवाज़ जिसका आगाज और अंदाज अनंत है, बनाने वाले ने सात सुरों के तार को जब सज

छाया होगा। मधुबन से खुशबू, चमन से बहार, नदियों से रवानी, कलियों से नफासत, रात से तन्हाई, सितारों से रोशनी, मोतियों से खनक, डालियों से लचक और चांदनी से नूर की इल्तिजा की होगी। फिर ये रूहानी आवाज बनाकर कहा होगा, चश्मे बदूर दूर रहकर भी आ जा रे कि वो पुकार जिसे छू लेने को दिल चाहे। स्वर साज की लय पर मन वादे और प्यार का चर्चा लिए झूमती ये तान चौदहवीं के चांद को पहलू में लिए आवाज देती है, प्यार से पास बिठाती है और कहती है, क्या तुम मुझे भूल पाओगे। और आज तरह दे हैं इसी अजीम फनकार के, जिसे दुनिया ने शहंशाह है तरन्नुम तो कभी पैगंबर है मौसिकी कहा। श्रोताओं, इन गीतों को यानी मोहम्मद रफ़ी साहब के गाए हुए गीतों ने हमारी खुशियां बांटी, हमारे गम बांटे। एक करिश्माई आवाज़ जो हमारे सैनिकों को भी जोश से भर देती थी। कव्वालियों में वो सुरों का उतार चढ़ाव, भक्ति रस में डूबी वो तान के, गज़लों में हल्की और नफीस मुर्कियां, तड़प उदासी बेरुखी प्यार और शरारती अंदाज का गीतों में अनोखापन, क्या क्या कहें। अल्फाजों के दायरे में रफ़ी साहब की गायकी को बांधना संभव ही नहीं। इस उन्मुक्त आवाज और उनके गीतों के गुलशन से चंद फूलों को चुनकर हमने कार्यक्रम सुरीला सफर आज सजाया है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का, तो भेजिए अपने कमेंट्स, अपनी प्रतिक्रियाएं। श्रोताओं, आज मोहम्मद रफ़ी के गीतों को आप कितना याद करते हैं, उन्हें कितना प्यार करते हैं, ये सभी बातें आप लिख सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स शामिल किए जाएँ। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

फिल्म थी कोहिनूर और बड़ी ही खूबसूरत अभिनेत्री का नृत्य है शुदा इस गीत में। तो आप अगर उन अभिनेत्री को पहचानते हैं तो आप जरूर लिखें। मोहम्मद रफी की जो पहली फिल्म थी उस बारे में आप हमें जरूर लिखें कि ये कौन सी फिल्म थी जिसमें उन्होंने पहला गीत गाया था। वैसे आप सुन रहे थे कोहिनूर फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। ये जो गीत था वो अपने आप में श्रोताओं बड़ा ही खूबसूरत राग हमीर कल्याण ठाट से उत्पन्न होने वाला चंचल और गंभीर प्राकृतिक श्रृंगार रस से भरा हुआ ये गीत आप सुन रहे थे, जिसमें 16 मात्राओं में ताल जो है वो बंधी हुई है, यानी त्रिताल की बात हम कर रहे हैं। और मोहम्मद रफी साहब की गायकी के कौशल को अगर देखें तो जिस परफेक्शन के साथ उनका आलाप ताल तान और सरगम का प्रयोग उन्होंने किया है वो एक बड़ी ही उच्च कोटि की शास्त्रीय गायकी क्षमता को दर्शाता है। गाने की शुरुआत में आपने मनमोहक जो आलाप सुना वो सबको मंत्रमुग्ध कर देता है, और बीच में जो पखावज तबले के बोल और शास्त्रीय तराने का मिश्रण इस रचना को बड़ा ही दुर्लभ बनाता है, जिसे मोहम्मद रफी साहब ने पूरी शिद्दत और सटीकता के साथ निभाया है। और यही कुछ वजहें हैं कि जिससे मोहम्मद रफी हम सबके दिलों में बिल्कुल सीधा उतर जाते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि कुछ आवाजें सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। मोहम्मद रफी की आवाज भी ऐसी ही थी। जब रफी साहब गाते थे तो लगता था जैसे कोई सीधे दिल से बात कर रहा हो। उनकी आवाज में दर्द भी था, दुआ भी, प्रेम भी और भक्ति भी। रफी साहब एक गायक नहीं, एक एहसास थे, और एहसास कभी मरते नहीं। वे पीढ़ी दर पीढ़ी सफर करते रहते हैं, बिल्कुल उनके अमर गीतों की तरह। आज रफी साहब की पुण्यतिथि पर सादर नमन करते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने मोहम्मद रफी साहब को नमन किया है और हम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि मोहम्मद रफी की खूबियों को शब्दों में बांधना बहुत ही मुश्किल है। हम किसी भी मूड में हो, मोहम्मद रफी के गाने हमें सुकून देते हैं। तो आप हमें जरूर बताएं कि कब आप मोहम्मद रफी के गीतों को सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके गीत गम में भी हमारे साथी हैं और खुशी में भी। कौन से गीत आपको अच्छे लगते हैं ये आप हमें जरूर बताएं। एक और श्रोता ने लिखा है कि उनका बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय भजन सुख के सब साथी फिल्म गोपी का इन्होंने याद किया है, और बहुत सारे गीतों को इन्होंने याद किया है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मोहम्मद रफी साहब की वो जादुई आवाज, सांसों का सरगम, जिन्हें प्रभु की अपार कृपा से भक्ति भावपूर्ण भजनों की माला पहनाई गई हो, बड़ी शिद्दत से तराशा कोहिनूर रहे रफी साहब को पुनः विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। एक और श्रोता लिखती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा पैदा। आपको ये फिल्म पहचाननी है।

0: वन प्रमंडलों, 47 वन क्षेत्रों और लगभग 1400 संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के साथ मिलकर वन संसाधनों के सतत उपयोग, जल मृदा संरक्षण और महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देने पर काम किया जाएगा। पीसीएफ संजीव कुमार ने कहा कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी से वन संरक्षण को नई गति मिलेगी और जायका ने तकनीकी व वित्तीय सहयोग देने की प्रतिबद्धता जताई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मलेरिया, डेंगू, कालाजार और लिम्फेटिक फाइलेरिया सहित वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम को लेकर रांची के योजना भवन में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय सिंह की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि रोगों की रोकथाम केवल स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी नहीं, इसलिए ग्रामीण विकास, नगर विकास, शिक्षा और स्वच्छता समेत सभी विभाग मिलकर इसे जन आंदोलन बनाएं और जिला से पंचायत स्तर तक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। रांची विश्वविद्यालय का 39वां दीक्षांत समारोह 9 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। विश्वविद्यालय के DSW डॉ. सुदेश कुमार साहू ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि राज्यपाल होंगे। दीक्षांत समारोह को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
1: 9 तारीख को हम लोग अपना दीक्षांत समारोह करेंगे, जिसमें कि हमारे BA में 6 सेमेस्टर तक क्लियर कर चुके हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो डिग्री 22-26 सेशन वाले को 6 सेमेस्टर तक की मिल गई है, वो होंगे, प्लस MA के हमारे जो बच्चे हैं वो होंगे।
0: प्रतिबंधित भाकपा माओवादी के शीर्ष नेता मिसर बेसरा, मुढ़ू मुर्मू और गौरव उर्फ बीरेंद्र हांसदा को अदालत ने 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेजा है। अब झारखंड पुलिस, NIA और IB की टीमें उनसे माओवादी नेटवर्क, लेवी वसूली, हथियारों की आपूर्ति, फंडिंग और संगठन के सक्रिय कैडरों के संबंध में पूछताछ करेगी। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार

0: के तहत कार्रवाई करते हुए लगभग 33 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि इस मामले में बिहार के रहने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
1: पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बाकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत विगत रात में छापेमारी के दौरान दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है और इन व्यक्तियों से कुल मिला के 2.5 केजी अफीम की जब्ती हुई है। दूसरी घटना हमारे सतपुरवा थाना क्षेत्र की है, जिसमें कि एक संदिग्ध वाहन बोनट को तलाशी लेने पे तथा डिक्की की तलाशी लेने से कुल मिला के 33.5 केजी से ज्यादा गांजा उससे जब्त किया गया है और इसमें दो व्यक्ति जो कि बिहार के रोहतास जिले के रहने वाले, इनकी गिरफ्तारी हुई है।
0: आज सुबह के सेशन में बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स मामूली बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे थे। सेंसेक्स 103 अंक बढ़कर 78031 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 44 अंक बढ़कर 24361 पर था। राजधानी रांची के सराफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,34,800 रुपये प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,30,000 रुपये प्रति किलो है। और 5 बार का फीफा विश्व कप विजेता ब्राजील भारतीय फुटबॉल टीम से कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच खेलेगा। यह मैच 3 अक्टूबर को सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कल इसकी घोषणा की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 का किया स्वागत, कहा इससे परीक्षा प्रणाली और अधिक सशक्त तथा पारदर्शी बनेगी। जेपीएससी परीक्षा की कथित अनियमितताओं को लेकर भाजपा सांसदों ने सीबीआई जांच की मांग की। रांची में सीआईडी आज पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते से कर रही है पूछताछ। राज्य में वन संरक्षण और ग्रामीण आजीविका को मिलेगा बढ़ावा। जायका परियोजना के तहत 20 वन प्रमंडलों में सामुदायिक भागीदारी से होंगे विकास कार्य। माओवादी संगठन के शीर्ष नेताओं मिसिर बेसरा, मोचू मुर्मू और बीरेंद्र हांसदा 14 दिन की पुलिस रिमांड पर। नेटवर्क और फंडिंग समेत कई पहलुओं पर होगी पूछताछ। और भारतीय फुटबॉल टीम और 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील के बीच 3 अक्टूबर को कोलकाता में होगा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने की घोषणा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

ससुराल का ये गीत था, हसरत जयपुरी का लिखा शंकर जयकिशन की तर्ज थी। और ये जो गीत था श्रोताओं, राग यमन कल्याण ठाट पर आधारित शास्त्रीय लोक धुनों पर पहाड़ी राग पहाड़ी का मिश्रण आप सुन सकते हैं इस गीत में। राग यमन की वैसे जो प्रकृति होती है वो बड़ी ही खूबसूरत होती है। अगर मोहम्मद रफी साहब की बात करें तो जो शुरुआती ऊपर सप्तक उन्होंने लगाए यानी सात स्वर से बेहद कोमलता और नजाकत के साथ की है उन्होंने शुरुआत गीत के बोल, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को में उन्होंने जिस तरह अपनी आवाज की मिठास, ठहराव, मुर्कियां ये सभी इस्तेमाल किए हैं वो हमारे दिलों में उतर जाता है। भाव और अवरोह की अगर बात करें, उतार चढ़ाव की बात करें तो सुरीले वाद्य यंत्रों का प्रयोग इस गीत में नजर आता है, जिसके साथ रफी साहब की जो अलगाकारी है स्वर संवाद करता है। ये गीत अंतरी में जब ये प्रवेश करते हैं तो जो स्वर का विस्तार और अदायगी का अंदाज है वो इतना सहज है कि तकनीकी रूप से शास्त्रीय होते हुए भी आम संगीत प्रेमियों की जुबान पर आसानी से चढ़ जाता है। तो भला बताइए।

कि ऐसे गीतों के लिए कौन से पुरस्कार हो सकते हैं। यही है कि हम सब मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को इतना प्यार करते हैं और उनके गीत हमारी जिंदगी में हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम में इबारत जो है स्वयं उत्तरित है, सप्त सुर साधक संगीत के स्वयं सिद्ध जिनके लिए सुर संगीत मात्र सरगम नहीं अभी तो स्वर साधना है। रूह को रूहानियत से रूबरू कराने वाले रफी साहब के राग रंगों से सजी सफर का इंतजार है। जी हाँ बिल्कुल, ये सफर तो आपके साथ ही पूरा होगा श्रोताओं। और एक और श्रोता लिखते हैं, आज की इबारत शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी को समर्पित लग रही है। जी हाँ बिल्कुल समर्पित है। और एक और श्रोता ने लिखा है, संगीत सरगम रफी साहब की पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि रफी साहब को हम अर्पित करते हैं। गीत लाजवाब जो बचपन से सुनते आ रहे हैं इनके, एक सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे, आज की इबारत में नहीं किंतु फरमाइश अवश्य है। जी हाँ, ऐसे हजारों नगमे हैं जो मोहम्मद रफी साहब के हैं। आपको कलाकार बताने हैं।

अभिनेत्री साधना और मनोज कुमार पर फिल्माया गया अमानत फिल्म का ये गीत था। हमारे श्रोताओं ने इस गीत की डिटेल बिल्कुल ठीक लिखी है। श्रोताओं, रवि का संगीत था, साहिर लुधियानवी की रचना थी। एक श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज जो सुख के पल में मन को सुकून से भर देती है और जब दुख मन को अवसाद में ढकेलने लगे तो कहीं दूर रेडियो से आती रवि जी की आवाज का ये गीत मन रे तो काहे न धीर धरे बजने लगता है तो मन अनायास ही दुख को भूलकर आगे जाने की उम्मीद से सराबोर हो उठता है। रफी साहब की आवाज ऐसी कि लगता है स्वर्ग से कुछ समय के लिए कोई देवदूत पृथ्वी पर उतरकर हम सबको सुरीले जहां में छोड़कर फिर वापस चला गया, मगर आज भी वो आवाज हमारी सुबह को हमारी शाम को एक अनजाने सुख से भर देती है। रफी जी के लिए क्या कहें, उनके गीत हमारे लिए सरपरस्ती, उनकी आवाज जब रेडियो से आती है तो लगता है कोई बड़ा हमारे सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे रहा हो। जी हाँ, ऐसा ही जो नगमा है मोहम्मद रफी साहब का है। और बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब रफी साहब के गीतों को हम गुनगुनाते हैं, सुनते हैं, तो ऐसी यादें आप हमसे साझा कर सकते हैं कि क्या कभी आपने उनके गीतों को गुनगुनाया किसी महफिल में, किसी स्टेज शो में, या उनके बहुत सारे रिकॉर्ड्स जो होते थे जो ग्रामाफोन पर बजते थे उनकी जो यादें थी वो आप हमसे साझा कर सकते हैं। श्रोताओं, यानी हम बात कर रहे हैं रफी साहब के गीतों के कलेक्शन की, तो आप इन बातों को भी हमसे साझा कर सकते हैं। एक और श्रोता लिखती हैं कि महफिल सजेगी आज मोहम्मद रफी साहब की आवाज से, कोहिनूर की मोती जैसा मधुर उस मिठास को सुनते हुए बड़े हुए और आज भी सभी की प्रेरणा स्रोत हैं और हमेशा उनकी आवाज गूंजती रहेगी, ऐसा हमारे श्रोता लिखती हैं। एक और श्रोता ने लिखा है, मुझे नहीं लगता कि आज 46 साल गुजर जाने के बाद भी गायक रफी साहब के इर्द गिर्द भी कोई हो, और इन्होंने मोहम्मद रफी साहब को फरिश्ता कहा है कि फरिश्ते कभी मरते नहीं तो अजर अमर रहते हैं। गायकी के मामले में रफी साहब तो वो एवरेस्ट हैं जिस पर फतेह पाना नामुमकिन है। और एक और श्रोता ने लिखा है कि एक ऐसी आवाज जो हमारी आत्मा में रची बसी है और जिसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उसे भला हम कैसे भूल सकते हैं, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, इस गीत को उन्होंने याद किया है। इस गीत को आप सुनिए श्रोताओ, क्या ये गीत आपके दिल के करीब है, हमें जरूर बताइए। मोहम्मद रफी साहब की आवाज का एक अलग ही ये नशा है।

0: आजा रे आ जरा आ लहरा के आ जरा आंखों से दिल में समा आजा रे आ जरा आ लहरा के आ।
1: जय मुखर्जी और आशा पारेख पर फिल्माया गया ये गीत आप सुन रहे थे लव इन टोक्यो फिल्म से। और अगले गीत में आपको कलाकार बताने हैं श्रोताओं और संगीतकार बताने हैं। ये गीत जो आधारित था राग मिश्र भैरवी या दादरा अंग की खुशबू से सजा हुआ ये गीत हम कह सकते हैं। वैसे रफी साहब की आवाज जो है इसमें एक इस गीत में अनोखी तड़प और नरमी नजर आती है और जो एक फुसफुसाहट सी रूहानी एहसास लिए जो रफी साहब ने इस गीत में घोला है बड़ा ही गजब का है श्रोताओं, जिसमें कि जो शुरुआती मुखड़ा है वो बड़ा कमाल का है, उसी की हम बात कर रहे हैं। अगर स्वरों के या उनके गले के ठहराव स्वरों के आरोह अवरोह की बात करें तो कभी दर्द ऐसा लगता है कि जैसे रोंगटे खड़े हो गए। वाद्य यंत्रों की अगर हम शैली की बात करें तो शंकर जयकिशन ने इसमें वेस्टर्न और इंडियन धुनों का बेहतरीन सम्मिश्रण किया है, लेकिन अगर गाने की बात करें तो इसमें आत्मा पूरी तरह से रफी साहब के रसीले और लोचदार स्वरों पर टिकी है जो प्रेमी को बेचैन कर देती है और बहुत ही शालीनता और सुंदरता से दिल की बातों को बयान करती है। एक हमारे और श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में महान मोहम्मद रफी जी की पुण्यतिथि जो है उसके उसको समर्पित है। संगीत जगत का वो चमकता सितारा हैं जिसकी रोशनी कभी फीकी नहीं पड़ सकती। आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां उनकी गायकी से प्रेरणा लेती रहेंगी। मोहम्मद रफी जी केवल एक महान गायक नहीं बल्कि भावनाओं की वो अमर आवाज है जो हमारी हर धड़कन के साथ हमेशा गूंजती रहेगी। एक और श्रोता ने लिखा है कि उनकी जो जब उनकी पुण्यतिथि यानी कि जब आती है तो याद आता है कि रेडियो पर ये सुनाई दिया कि मोहम्मद रफी साहब नहीं रहे, तो उस वक्त वो कॉलेज में पढ़ा करते थे, उसकी यादों को उन्होंने ताज़ा किया है। एक और श्रोता ने लिखा है कि भावनाओं के सच्चे शिल्पकार थे मोहम्मद रफी जी। उनकी आवाज़ में प्रेम की कोमलता, भक्ति की पवित्रता, देशभक्ति का जोश था, दर्द की गहराई थी और खुशी की खिलखिलाहट भी। वे जिस अभिनेता के लिए गाते ऐसा लगता मानो वही अभिनेता स्वयं गा रहे हों, यही उनकी गायकी की सबसे बड़ी विशेषता थी। तो आप ये बताइए श्रोताओं कि मोहम्मद रफी साहब की आवाज जो है आपको किस अभिनेता पर खास जचती हुई नजर आती है और किस कॉमेडियन पर भी जो गीत उनके द्वारा गाया गया फिल्माया गया वो आपको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कॉमेडियंस पर भी उनके बहुत सारे गीत फिल्माए गए हैं। खासकर हम बात करें महमूद साहब की, जॉनी वॉकर साहब की। तो

अभिनेता भारत भूषण पर फिल्माया गया बैजू बावरा फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज थी। नौशाद की तर्ज शकील बदायूनी की लिखी ये रचना थी। श्रोताओं, राग मालकौंस पर आधारित जो एक बड़ा ही शांत और आध्यात्मिक प्रकृति का रति प्रधान गीत भक्ति से भरा हुआ बन पड़ा है। हरिओम का जो उच्चारण है वो मंत्रवत और कर्णप्रिय आलाप जो शुरू होता है रफी साहब का, तो इसमें मन के जो भक्ति भाव होते हैं अपने आप ही जग जाते हैं। और जो सूक्ष्म कर्ण स्वर इसमें मींड का जो प्रयोग किया गया है वो अपने आप में बड़ा ही बेमिसाल आरोह अवरोह ठहराव मोहम्मद रफी साहब की आवाज का इससे नजर आता है। शास्त्रीय जो शुद्धता के साथ भावनाओं को गीतों को किस तरह से पिरोया जाता है ये इस गीत में बिल्कुल साफ झलकता है। उन्होंने बिना किसी भारीपन के कोमल स्वरों पर अद्भुत नियंत्रण रखते हुए इस गीत को गाया है और बड़े ही जो शब्द हैं वो संस्कृत निष्ठ और भक्तिभाव वाले हैं। तो ये गीत अपने आप में एक कह सकते हैं कि बड़ा ही कोहिनूर सा नगमा बन पड़ा है। अगले गीत में आपको पहचानना है कलाकार कौन से हैं और संगीतकार कौन है।

रफी साहब के कोई रिकॉर्ड्स क्या अभी आपने संभाल रखे हैं श्रोताओ, तो आप हमें बता सकते हैं। काजल फिल्म का ये गीत था, मीना कुमारी और राजकुमार पर फिल्माया गया, रवि का संगीत था। 1965 में आई ये फिल्म थी जिसमें ये गीत संगीतबद्ध किया गया रवि के द्वारा। क्लासिक रचना है ये, एक मोहम्मद रफी ने अपने जादुई आवाज का कमाल दिखाया है इस गीत में। राग मालकौंस की हल्की मिठास और साहिर के लुधियानवी साहब के दार्शनिक शब्दों के साथ रफी साहब की अगर आवाज को आप सुनेंगे तो गजल नुमा गीत को रूहानी गहराई और ठुमरी जैसा ठहराव उन्होंने दिया है, जो सुनने वालों को एकदम से कह सकते हैं कि बिल्कुल चकित कर देता है। श्रोताओ, हमारे बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हमारे पास आए हैं, तो आप बता सकते हैं रफी साहब के गीतों के साथ आपकी क्या रूहानी यादें हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि आज सुरों के जादूगर और शहनशाह मोहम्मद रफी साहब की याद का दिन है, उनकी गायकी के बारे में लिखना मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैं सिर्फ उन्हें रूह से महसूस करते हुए आज सिर्फ ध्यान से सुनना चाहूंगा और यही मेरी ओर से उन्हें श्रद्धांजलि होगी। जी हाँ, ये तो है, लेकिन कार्यक्रम में तो साथ बने रहना है, इसलिए लिखना तो है ही आपको कि आपको मोहम्मद रफी साहब के कौन से गीत बहुत अच्छे लगते हैं, कब आप इन्हें गुनगुनाते हैं और क्या आजकल जो मौसम है उस मौसम में कोई ऐसा गीत बरसात का है जो रफी साहब की याद में आप अक्सर गुनगुनाते हैं उनका गाया हुआ। मुझे तो उनके गाए हुए कुछ गीत याद हैं जो बारिश के मौसम के बड़े ही गजब के हैं, तो आपको भी याद हो तो आप हमें बताइए। एक श्रोता और लिखती हैं कि महसूस होता है मानो हर पंक्ति में आज की इबारत पढ़ने से कि स्वर सम्राट मोहम्मद रफी जी की अमर आवाज की झलक समाई हो। आ जा रे चौदहवीं का चांद क्या तो मुझे भूल पाओगे, जैसे गाने भी उनकी यादों को और गहरा कर देते हैं। और एक और श्रोता ने लिखा है कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूं जब वर्ष 1962 में भारत और चीन के युद्ध के दौरान वीर सैनिकों की शहादत में देश के प्रति अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर सैनिकों के परिजनों के लिए वर्ष 1966 में अपने साजिंदों के साथ सशरीर उपस्थित होकर पटना के माइनुल हक स्टेडियम में उनके आश्रितों के लिए धन राशि मुहैया कराने हेतु लाइव स्टेज शो किया था। उन्होंने इस लाइव शो को देखने के लिए मैं अपने परिवार के साथ गया था। वो उनका मुस्कुराता चेहरा और उनके द्वारा सुनाए गए सभी गीत एक से एक पढ़कर थे। वहां पर उपस्थित सभी श्रोताओं ने एक अच्छी खासी राशि उनकी झोली में डाल दी थी, और तो और महिलाओं ने भी अपने जो सोने की चूड़ियां थी, गले की चेन भी उन्हें उसमें दी थी, और उनके गीतों को हम सुनकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का दिन है। हम उन्हें विनम्र भावपूर्ण नमन करते हैं। कलाकार आपको बताने हैं, विविध भारती का कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुन रहे हैं।

हम किसी से कम नहीं है। इस फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, तारिक और काजल, किरण पर फिल्माया गया, जो नजर आते हैं वैसे तारिक पर फिल्माया गया ये गीत था श्रोताओं। और राष्ट्रीय पुरस्कार इस गीत के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब को दिया गया। वैसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने जो फिल्म फेयर पुरस्कार हैं वो भी बहुत सारे अपने नाम किए। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि जॉनी वॉकर और महमूद साहब पर आवाज़ रफ़ी साहब की बहुत फिट बैठती है। जॉय मुखर्जी, विश्वजीत, राजेंद्र कुमार और किस किस के नाम लिखूं, रफ़ी साहब की आवाज़ हमें अच्छी लगती है शमी कपूर के ऊपर और धर्मेंद्र पर, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ़ी साहब हर अभिनेता के हिसाब से गाते थे, मानो लगता था कि अभिनेता ही गा रहे हों। मुझे शमी कपूर जी पर फिल्माया गया उनका गीत बहुत पसंद है, लेकिन आपने ये तो लिखा नहीं कि कौन सा गीत आपको उन पर फिल्माया गया बहुत पसंद है। जी हाँ, आपका जो बहुत पसंदीदा गीत है नगमा वो आप लिख सकते हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि रफ़ी साहब की आवाज़ की अगर बात है तो हर अभिनेता पर फिट बैठती थी, ये उनके गले की विशेष खासियत थी। जी हाँ, और ये भी बात थी कि वो अभिनेता के तौर पर अपने गीत को अक्सर ढाल लिया करते थे। और एक और श्रोता ने लिखा है कि 130 गीत एक रिकॉर्ड है जो फिल्माया गया जॉनी वॉकर पर। इन्होंने कुछ किस तरह से डिटेल लिखी कि कॉमेडियन ने गाया तो कुछ ऐसा लिखा इन्होंने, और हमारे तमाम श्रोताओं ने यही लिखा है ज़्यादातर कि रफ़ी साहब के जो गाए हुए गीत थे वो लगभग सभी अभिनेताओं पर फिट बैठते थे। अभिनेत्री

मुमताज का भी आज जन्मदिन है श्रोताओ, और ये जो गीत है वो उन्हीं पर फिल्माया गया है। आप बताएं कि ये खासी ड्रेस किसने डिजाइन की है।

शमी कपूर और मुमताज पर फिल्माया गया ब्रह्मचारी फिल्म का ये गीत था मोहम्मद रफी साहब के। वैसे श्रोताओं, बेशुमार गीत हैं जिन्हें भूल पाना और मोहम्मद रफी साहब को भुला पाना बहुत नामुमकिन है। एक और गीत आपकी नजर करते हैं मोहम्मद रफी साहब के लिए। अगर आपने कोई शेर लिखा हो, कोई नज्म लिखी हो, कोई बात लिखी हो, तो आप हमसे जरूर बता सकते हैं।

मोहम्मद रफ़ी साहब के अमर नगमे, अमर यादें, उनकी बहुत कुछ है श्रोताओं इनकी गायकी में। संगीतकार नौशाद ने लिखा है, गूंजते हैं तेरे नगमों से अमीरी के महल, झोपड़ी में भी गरीबों की तेरी आवाज़ है। अपनी मौसीकी पे सबको फ़ख्र होता है, मगर मेरे साथी आज मौसीकी को तुझ पर नाज है। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्य स्मृति को समर्पित हमारा ये कार्यक्रम था सुरीला सफ़र। आप सभी का साथ रहा श्रोताओं इस कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी प्रतिक्रियाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से अब लेते हैं इजाजत, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 39वीं कड़ी।

0: बंग भंग विरोधी आंदोलन जब से शुरू हुआ तब से ही ब्रिटिशों में वंदे मातरम शब्द की जबरदस्त दहशत फैल गई। बंकिम चंद्र जी को अपेक्षित वंदे मातरम शब्दों का प्रभाव परिणाम अब दिखने लगा था। पाठशालाओं में, महाविद्यालयों में और सभाओं में वंदे मातरम शब्द के उच्चारण करने पर सजा होने लगी। ढाका के किशोरगंज महाविद्यालय में घटित ऐसा ही एक प्रसंग है। सरकारी आदेश के अनुसार यहां के प्रधानाचार्य ने अपने स्कूल के विद्यार्थियों को आदेश दिया, इस तरह वंदे मातरम कहने में समय बिताना मूर्खता का लक्षण है, ऐसा कॉपी में 500 बार लिखो। परिणाम उल्टा हुआ। वंदे मातरम ये शब्द कॉपी में 500 बार लिखे गए और मन में हमेशा के लिए अंकित हो गए। उल्टे ऐसा आदेश देने वालों के प्रति मन में घृणा पैदा हो गई।
1: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के छात्र जीवन का एक प्रसंग स्मरणीय है। 1905 के बंग भंग विरोधी आंदोलन के कारण वंदे मातरम की गूंज विद्यार्थियों तक पहुंच गई थी। स्कूल महाविद्यालयों के विद्यार्थी किसी की भी परवाह किए बिना स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ रहे थे। उसी समय विद्यार्थियों को जुलूस सभाओं में भाग लेने से रोका जाए तथा ऐसे छात्रों के नाम सरकार को बताए जाएं, ऐसा परिपत्र विद्यालयों में सरकार ने भेजा। रिसले सर्कुलर के नाम से कुख्यात ही परिपत्र डॉक्टर हेडगेवार जहां पढ़ते थे उस नागपुर के नील सिटी पाठशाला में भी आया था। स्कूल की जांच के लिए आए सरकारी पर्यवेक्षक के दौरे के समय छात्रों ने तय किया कि गुप्त रूप से प्रदर्शन किया जाए।
0: प्रधानाचार्य के साथ सरकारी पर्यवेक्षक के मैट्रिक की कक्षा में आते ही वंदे मातरम की गर्जना से उनका स्वागत हुआ। ऐसा ही प्रतिसाद उन्हें सभी कक्षाओं में मिला। पर्यवेक्षक नाराज होकर गुस्से में चले गए। कक्षा के विद्यार्थियों की पूछताछ शुरू हुई। यह कल्पना केशव की थी, पर उसका नाम किसी ने भी नहीं बताया। नाम बताने तक विद्यार्थियों को अस्थायी रूप से स्कूल से निकाल दिया गया। तब तो स्कूल के सभी विद्यार्थियों ने स्कूल का बहिष्कार कर दिया। यह आंदोलन 1.5-2 महीने चला। आखिर स्कूल फिर से शुरू करने के लिए संस्था पर दबाव बढ़ने लगा। प्रधानाचार्य जनार्दन ओक ने छात्रों को एक समझौते का सुझाव दिया। गलती हुई ना, ऐसा पूछने पर केवल सिर हिलाकर हामी भरना है। अपना साल बेकार न जाए इसलिए विद्यार्थियों ने इसे मान्यता दी। केवल 2 विद्यार्थियों ने यह समझौता स्वीकार नहीं किया। उन 2 छात्रों को स्कूल से निकाल दिया गया। उनमें से एक इस लड़ाई का नेतृत्व करने वाले केशव बड़ीराम हेडगेवार थे।
1: गदर पार्टी के संस्थापक और क्रांतिकारी डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे के स्कूली जीवन में इसी नागपुर की नील सिटी पाठशाला में 1905 के आसपास ऐसा ही प्रसंग हुआ था। स्कूली जीवन में विद्यार्थियों के इस संघर्ष में अगुवाई करने वाले डॉक्टर खानखोजे ने क्रांतिकारी के लिए भारत छोड़कर जापान और कनाडा में शरण ली और आगे मैक्सिको में अंतर्राष्ट्रीय कृषि विशेषज्ञ और संशोधक के रूप में बड़ा नाम कमाया। घटना की समानता और स्थान की समानता के कारण डॉक्टर हेडगेवार के प्रसंग में दूसरा अडिग विद्यार्थी डॉक्टर खानखोजे भी हो सकते हैं।
0: 1905 से 1909 का कालखंड वंदे मातरम की दृष्टि से स्वर्णिम काल रहा। 1875 में गीत लिखने के बाद 1905 तक का समय इस गीत की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, पर 1905 के बाद तो इतने वर्षों का अधूरा कार्य पूरा हो गया। इसी दौरान बंगाल में सशस्त्र क्रांतिकारियों के विद्रोह शुरू हो गए थे। एक ओर लॉर्ड मिंटो और भारत मंत्री मॉर्ले सुधार घोषित कर रहे थे, आनंद मठ और वंदे मातरम से सारा बंगाल भाव विभोर हो गया था। वंदे मातरम मंत्र के उच्चारण से भारतीयों की अस्मिता और भी जागृत हो रही थी। बंगाल के उन्मत्त न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने बम फेंका। गाड़ी में किंग्सफोर्ड न होने के कारण वो बच गया। इसी किंग्सफोर्ड ने ही सुशील कुमार सेन को कोड़ों की सजा दी थी। किंग्सफोर्ड प्रकरण में खुदीराम बोस दुर्भाग्यवश तीसरे दिन ही पकड़े गए, जबकि उनकी साथी प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने खुद को गोली मारकर आत्म बलिदान स्वीकार किया। मात्र 19 वर्ष के खुदीराम बोस 19 अगस्त 1908 को हाथ में गीता लेकर शांतिपूर्वक फांसी पर चढ़ गए। उस समय उनके मुख में शब्द थे, वंदे मातरम। वंदे मातरम कहते हुए फांसी पर चढ़ने वाले वे पहले क्रांतिकारी थे। बंगाल में क्रांतिकारी संस्थाओं का जाल बढ़ता ही जा रहा था। वंदे मातरम कहते हुए क्रांतिकारी कृत्य करने वाले युवा एक के बाद एक आगे आने लगे। सरकार के पास बंगाल का विभाजन रद्द करने के सिवा कोई विकल्प ही नहीं था।

0: लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन घोषित किया और लागू किया, पर उसी वर्ष उसे इस्तीफा देकर इंग्लैंड लौटना पड़ा। उसकी जगह आए लॉर्ड मिंटो ने भी विभाजन रद्द नहीं किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन भी बंगाल के नेताओं ने बंद नहीं किया। 1905 में शुरू किए गए आंदोलन का जोर 1907 तक बढ़ता ही गया। लॉर्ड मिंटो नीतिज्ञ था। विभाजन के समय कर्जन का असफल रहा उद्देश्य सफल करने के लिए उसने सुनियोजित प्रयास शुरू किए। 31 दिसंबर 1906 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में वहां के नवाब सलीमुल्ला खान की अगुवाई में हुई और कर्जन का उद्देश्य सफल होने लगा। लॉर्ड मिंटो को भारत मंत्री मॉर्ले ने पूरा साथ दिया। 1910 के नवंबर में मिंटो की जगह लॉर्ड हार्डिंग्स की वॉयस राय के रूप में नियुक्ति हुई। बंगाल का विभाजन करने के कारण अंग्रेज राज सत्ता का भारतीय जनता ने विरोध किया, इसलिए जनता में उभरे असंतोष की लॉर्ड हार्डिंग्स को पूरी जानकारी थी। सत्ता में आते ही हार्डिंग्स ने ऊपर ऊपर से नरमी का रवैया दिखाना शुरू किया। विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का केंद्र बिंदु बनी अंग्रेजों की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली ले जाने का फैसला किया और उसके साथ ही बंगाल का विभाजन रद्द करने का भी निर्णय लिया गया।
1: लगभग 6 वर्ष चला बंग भंग विरोधी आंदोलन अंततः सफल हुआ। इस आंदोलन में भी हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े थे, इसलिए बंग भंग के अगले ही वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना होकर भी उसका बहुत असर उस समय आंदोलन पर नहीं हुआ था। बंगाल का विभाजन रद्द करने की सूचना लॉर्ड हार्डिंग्स ने 19 जुलाई 1911 को दी। ठीक 6 वर्ष पहले 19 जुलाई 1905 को ही बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। 7 अगस्त 1905 को बंग भंग विरोधी आंदोलन की पहली बड़ी सार्वजनिक सभा हुई। ठीक उसके 6 वर्ष बाद ही 7 अगस्त 1911 को बंगाल का विभाजन रद्द करने की ब्रिटिश हुकूमत से मंजूरी आई। यह विभाजन रद्द होने की घोषणा करने का बहाना बनाकर खुद पंचम जॉर्ज को भारत आमंत्रित किया गया। दिल्ली में एक विशेष दरबार लगाकर 12 दिसंबर 1911 को पंचम जॉर्ज ने बंगाल का विभाजन रद्द करने की घोषणा की। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध किए गए

अधिक असहज होने लगी, अस्वस्थ होने लगी। आसेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है। जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

वंदे मातरम, एक जय घोष। इस लघु रूपक श्रृंखला की ये थी 39वीं कड़ी। मूल मराठी संगीता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद संपादन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचन स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। लोकसभा में जन और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और राष्ट्र आज स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह के शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने के लिए चर्चा शुरू की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक पेश किया। सदन में बिना किसी चर्चा के हंगामे के बीच विधेयक पारित हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस विधेयक पर चर्चा में भाग न लेने के लिए विपक्ष की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कार्य सलाहकार समिति में चर्चा के लिए समय पहले ही निर्धारित किया जा चुका था। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्ष से बार बार अपील की थी कि ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर उचित चर्चा सुनिश्चित की जाए।

0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है।
1: जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह नया विधेयक लाया गया है। इसके तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिनभर के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय को संसद की आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई। हंगामे के बीच सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर नारेबाजी शुरू कर दी। वे इस मुद्दे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी विपक्षी सदस्यों से प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही में बाधा न डालने की अपील की।
2: आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें।
0: राज्यसभा की कार्यवाही भी इसी मुद्दे पर हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कई केंद्रीय मंत्रियों ने सदन के पटल पर अपने मंत्रालय से संबंधित दस्तावेज रखे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने की व्यवस्था की समीक्षा पर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित स्थायी समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद सभापति सीपी राधाकृष्णन ने शून्यकाल शुरू किया। हालांकि विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे हर मुद्दे पर व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं और चर्चा से बच रहे हैं।
3: सदन की गरिमा के साथ खेलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं माननीय सभापति महोदय। सदन की गरिमा को तार तार करना ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मेटा इंडिया के अधिकारियों और कई सोशल मीडिया अकाउंट संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। ये कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक सामग्री वायरल होने के बाद की गई है। हैदराबाद साइबर क्राइम के पुलिस उपायुक्त अरविंद बाबू ने पुष्टि की है कि भाजपा की सोशल मीडिया इकाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है। भाजपा की तेलंगाना इकाई ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शन

0: के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर तैयार की गई विकृत, अपमानजनक और निंदनीय सामग्री बनाने, फैलाने और प्रचारित करने वालों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 20 जुलाई को हुए कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाया गया। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि अग्रिम पंक्ति में तैनात कर्मियों को भीड़ के हिंसक तत्वों ने घेर लिया, उन पर पत्थर फेंके और मारपीट की। एक सहायक उपनिरीक्षक के बेटे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान उनके पिता के सर में चोट आई।
1: मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन्स पे उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। ऑन 25 मई at 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की प्रोटेस्ट, उसमें बस स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स है, इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस।
0: झारखंड की भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने झारखंड लोक सेवा आयोग JPSC पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री तथा कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कांग्रेस पर इस मामले पर दोहरा रुख अपनाने का आरोप लगाया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची से लोकसभा सांसद संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में हजारों छात्र JPSC पेपर लीक और JSSC भर्ती घोटाले की CBI जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: देखो, झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से, भारी बारिश में भी ऊपर प्लास्टिक लगा वो भी छूरा लेकिन हिल नहीं रहे। उनकी एक ही डिमांड है कि JPSC पेपर लीक मामला और JSSC जो भर्ती घोटाला उसकी CBI जांच कराओ। झारखंड की जनता ने पूरी तरह मन मना लिया, CBI जांच से कम स्वीकार नहीं। क्यों? हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं।
0: आयुष मंत्रालय और इंडिया AI ने आयुष क्षेत्र में AI आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा कि समझौते का उद्देश्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके पारंपरिक चिकित्सा में अनुसंधान, डिजिटल स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण और नवाचार को मजबूत करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों की हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रावलकोट और मीरपुर में बड़ी संख्या में एकत्र महिला प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं। विश्लेषकों का दावा है कि प्रदर्शन शुरू होने के बाद से 125 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और लोकतांत्रिक सरकारों से हस्तक्षेप करने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले के रेनसा टाउनशिप में एक नाटकीय अभियान में बंगाल SDF ने जैश के एक संदिग्ध आतंकवादी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। माना जा रहा है कि आतंकवादी सज्जाद भट्ट गुट से जुड़ा हुआ है। आइजोल के सूचना और जनसंपर्क मंत्री पू बी लाल झंझोवा ने कहा कि आकाशवाणी आइजोल ने मिजो पहचान को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आकाशवाणी आइजोल की हीरक जयंती के अवसर पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि 1966 में अपनी स्थापना के बाद से इस स्टेशन ने मिजो भाषा, संस्कृति, रीति रिवाजों और परंपराओं के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपने संदेश में आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने कहा कि बदलते समय में भी आकाशवाणी आइजोल मिजोरम के लोगों के लिए सूचना का एक विश्वसनीय स्रोत और मार्गदर्शक बना हुआ है। मौसम विभाग ने गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, कर्नाटक, केरलम, माहे, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भी मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। गुजरात के कई हिस्सों में आज फिर हुई तेज बारिश से जनजीवन और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मध्य और दक्षिण गुजरात के 13 जिलों में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है।

0: गुजरात में सुबह से ही कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण सूरत, खेड़ा और आणंद जिलों में कई जगहों पर गंभीर जलभराव देखने को मिला है। व्यापक जलभराव को देखते हुए आज सुबह से ही वडोदरा, सूरत, आणंद और नर्मदा जिले के निचले इलाकों में रहने वाले 720 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जा चुका है। नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण राज्य के 21 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 17 टीमें, एसडीआरएफ की 33 प्लाटून और सेना के 6 कॉलम भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं मौसम विभाग ने मछुआरों को 2 अगस्त तक समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राहत और बचाव अभियान जारी है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि महानदी नदी प्रणाली में अब काफी हद तक नियंत्रण में है, क्योंकि इसके ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में बारिश कम हुई है। हालांकि लगभग 2,68,000 लोग बाढ़ के पानी में फंसे हुए हैं, जबकि 13 जिलों में करीब 8,00,000 लोग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैतरणी नदी का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है। राजुआ नदी के बाढ़ के पानी ने खुर्दा जिले के कई गांवों को प्रभावित किया है। उड़ीसा के राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी ने आज वर्चुअल माध्यम से जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ की स्थिति और राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: समग्र राष्ट्र आज क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद उधम सिंह के 87वें शहीद दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उधम सिंह गदर पार्टी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक स्थगित। हैदराबाद पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित आपत्ति जनक सामग्री फैलाने के आरोप में मेटा इंडिया के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। कांग्रेस जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों को जानबूझकर निशाना बनाने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में नागरिकों पर सुरक्षा बलों के हिंसक कार्रवाई के बाद विरोध प्रदर्शन तेज। 120 से अधिक प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की खबर। और गुजरात तथा मध्य महाराष्ट्र में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर। आप सुन रहे थे, माफ कीजिएगा, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।

0: वो निगार शकील बदायूनी मौसकार रवि मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत था। फिल्म थी प्यार किया तो डरना क्या।
1: जाने माने फिल्मी संगीतकार दिलीप सेन हमसे साझा करेंगे अपनी फिल्मी संगीत यात्रा।
2: फोक कहते हैं आमद को। हमारी जो माताएं बहनें आज से 100-200 साल पहले दामाद आते थे तो उनके लिए गाने बनाती थी, क्योंकि उस वक्त कोई राइटर तो होता नहीं था। तो गडरणत भवन सु आयो विनायक करो ये नसीती विन धरी मारा दिलीप सेन जीव धारिया।
1: कार्यक्रम बॉम्बे टॉकीज में 1 अगस्त दोपहर बाद

0: 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। तो सुनना न भूलिएगा विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। ओले, ओले, ओले, ओले, ओले,
1: ओले। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं श्रोताओं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और हम आपको सुनवा रहे हैं फनकार मोहम्मद रफी के गाए नगमे।

0: संगीतकार रवि का सर्वदिकिया ये गीत आप सुन रहे थे, फिल्म थी चौदहवीं का चांद।
1: पिपरा के पतवा सर के डोले मनवा

0: और शाद की तरफ से लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ों में मदर इंडिया फिल्म का गीत आपने सुना। शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद का संगीत था।
1: तुम जिस पे नजर डालो उस दिल का।
2: अब थोड़ी देर में सुनेंगे

0: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जेपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की जेएमएम सरकार पर लगातार पेपर लीक होने का आरोप लगाया और कांग्रेस के दोहरे रुख की आलोचना की। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही सीआईडी जांच को महज एक दिखावा करार दिया।
1: झारखंड के अंदर हजारों छात्र धरने बैठे हैं पिछले 5 दिनों से भारी बारिश में भी। उनकी एक ही डिमांड है कि जेपीएससी पेपर लीक मामला और जेएसएससी जो भर्ती घोटाला उसकी सीबीआई जांच कराओ, क्योंकि वहाँ खुला रेट है, 1.5 करोड़ दो डीएसपी बन जाओ। अब पहला हिंदुस्तान में ऐसा केस है कि बाकायदा एक होटल लीज भी लिया गया, क्यों? आंसर शीट लिखवाने के लिए।
0: इधर रांची में भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और उत्पाद सिपाही जैसी परीक्षाओं में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी भर्ती परीक्षा मामले में सीआईडी की जांच तेज हो गई है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते आज लगातार तीसरे दिन रांची स्थित सीआईडी मुख्यालय में पेश हुए, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। इससे पहले जांच एजेंसी उनसे 2 दिनों में करीब 8-8 घंटे की लंबी पूछताछ कर चुकी है। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हजारीबाग वन भूमि से जुड़े घोटाला मामले में उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। माय भारत प्लेटफॉर्म के नेतृत्व में यह नशाखोरी के खिलाफ 100 सप्ताह का राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन होगा। इसके तहत हर रविवार खेल, नुक्कड़ नाटक और ध्यान सत्र जैसी गतिविधियां आयोजित होंगी। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए मिशन शक्ति ऐप डाउनलोड करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस ऐप के जरिए महिला हेल्पलाइन 181, आपातकालीन सेवा 112 और बाल हेल्पलाइन 1098 सहित कई आपातकालीन सेवाएं एक ही मंच पर तुरंत उपलब्ध होंगी। चतरा जिले में भारतीय रेडक्रॉस सोसाइटी ने पिछले 7 महीनों में 61 रक्तदान शिविरों का आयोजन कर रिकॉर्ड 758 यूनिट रक्त संग्रहित किया है। सोसाइटी के सचिव धर्मेंद्र पाठक ने बताया कि इस अभियान का सबसे बड़ा लाभ स्थानीय थैलेसीमिया, कैंसर और सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों को मिल रहा है।
2: चतरा रेड क्रॉस के द्वारा लगातार जरूरतमंदों के बीच रक्त मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। खासकर थैलेसीमिया के जो मरीज हैं, कैंसर रोगी हैं या फिर आदिम जनजाति परिवार के लोग हैं, उन्हें निशुल्क रक्त मुहैया कराया जाता है। हमारा निवेदन होगा आम जनता से भी कि रक्तदान के प्रति जागरूक हों और खुलकर रक्तदान करें, ताकि हमारे दिए गए रक्त से किसी की जान बचती है तो हम बचा लें।
0: जामताड़ा जिले में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक शंभु

0: कुमार सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में सोनवाद गांव के एक और मिहजाम थाना क्षेत्र से दो अपराधियों को पकड़ा गया। इनके पास से 6 मोबाइल फोन, 8 फर्जी सिम कार्ड और 2 एटीएम कार्ड एवं एक दोपहिया वाहन बरामद हुआ है। लोहरदगा में आज एक दर्दनाक सड़क हादसे में स्कूटी सवार दंपत्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना शहरी क्षेत्र के बीएस कॉलेज रोड पर हुई, जहां एक अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को कुचल दिया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने शहर में भारी वाहनों के प्रवेश पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार। ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।
1: राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबा। हेलो सहेली।

0: संवाद केवल शब्दों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि संवाद वो सेतु है जो लोगों के बीच की दूरियों को कम कर संबंधों में प्रगाढ़ता लाता है। मधुर संवाद रिश्तों को नई ऊर्जा से भर देते हैं। आज तकनीक ने संवाद के अनेक साधन दिए हैं, जिसके जरिए हम दूर दराज रहकर भी अपनों से जुड़ सकते हैं। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूँ सोनाली पाठक। विविध भारती के स्टूडियो में आज मैं इंतजार कर रही हूँ आपके फोन कॉल का। देखते हैं आज किन किन सखियों से बातें होंगी। मेरा इंतजार हुआ खत्म, ये बजी घंटी और ये आया पहला फोन कॉल। हेलो सहेली।
1: जी हेलो सहेली।
0: नमस्ते।
1: जी नमस्ते मैम।
0: किसने फोन लगाया है?
1: मैं इंदौर से जीनत परवीन बोल रही हूँ।
0: जी क्या करती हैं जीनत जी आप?
1: हाउसवाइफ हूँ।
0: हाउसवाइफ हूँ। और घर में कौन कौन सदस्य हैं?
1: घर में बच्चे हैं तीन, लड़के तीनों, तो पढ़ाई करते हैं, पापा के साथ जॉब करते हैं।
0: अच्छा, तो आप बच्चों को पढ़ाती हैं, उनके साथ कैसे वक्त बिताती हैं आप?
1: बच्चे को पढ़ाती हूँ, घर पे भी स्टडी कराती हूँ, और ये चलते ही रहता, रेडियो सुनती रहती हूँ।
0: अरे वाह। अच्छा ये बताइए आपके शौक क्या है, आपकी हॉबीज क्या है?
1: पेपर वेपर ये पढ़ाई करती हूँ, लिखने का शौक है, लिखती रहती हूँ कुछ भी।
0: अच्छा ये तो बहुत अच्छा शौक है, लिखना चाहिए। कविताएं लिखती है, कहानियां लिखती है या और कुछ लिखती है?
1: नहीं बस ऐसी कुछ भी, गाने वाने लिखती रहती हूँ।
0: अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, अपना शौक एक हमें रखना चाहिए जिसके कारण हमें जीवन में एक अलग ही आनंद की अनुभूति मिलती है।
1: जी और हेलो सहेली, सखी सहेली ये सुनती रहती हूँ, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें आती हैं।
0: जी
1: बच्चों को भी समझाती हूँ, और मेरे साथ वही होता है जो उसमें आ जाता है।
0: जी जी यही बात है कि हम जो सुनते हैं, जो अच्छी अच्छी बातें हमें सुनाई देती है, वो हमें जीवन में अमल में लाना चाहिए।
1: जी
0: बताइए

0: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मिस्टर इंडिया का सुना देते ना, कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
0: मिस्टर इंडिया फिल्म का गाना कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात।
1: जी
0: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली। सत
1: हेलो सहेली जी, सत श्री अकाल दीदी।
0: श्री अकाल। बताइए कौन सी सहेली ने
1: हांजी,
0: फोन
1: हम
0: लगाया
1: दीदी
0: है?
1: पंजाब से बोल रहे हैं जी। हांजी, लुधियाना जिले से जी।
0: अपना नाम बताइए।
1: रितु।
0: रितु जी ने लुधियाना से फोन लगाया है। जी रितु जी,
1: हांजी
0: बताइए क्या करती हैं आप?
1: जी, मैं तो हाउसवाइफ हूँ।
0: जी, और ये
1: हांजी
0: बताइए कि आपके शौक क्या क्या हैं?
1: जी, शौक तो यही है जी। मैं तो ज्यादातर जी घर में यही कपड़े सिलाई करती हूँ, यही मेरा शौक है जी।
0: जी, ये तो बहुत अच्छा शौक है, सिलाई करना। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप क्या क्या सिलती हैं?
1: जी यही लेडीज सूट वगैरह, प्लाजो वगैरह, पैंट।
0: जी, और नए नए डिजाइन के भी सिलती हैं आप?
1: नहीं दीदी, वो मुझे नहीं आते। वैसे मैं गले के डिजाइन बना लेती हूँ
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: जी। रेडियो तो जी मेरा हर वक्त ही चलता रहता है, मुझे जी बहुत पसंद है। मैं सुबह ही अपना ऑन कर लेती हूँ और शाम तक आपके सारे प्रोग्राम सुनती हूँ। हेलो सहेली पे, हेलो फरमाइश, मन चाहे गीत, जो भाइयों का आता है फौजियों वाला, वो भी बहुत अच्छा लगता है मुझे।
0: जी, तो बताइए
1: हाँ
0: कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: मंजिल फिल्म का मुझे रिम झिम गिरे सावन।
0: सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली मैम, नमस्ते
0: नमस्ते। कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैम। मैं रितु राजपूत बात कर रही हूँ
0: रितु राजपूत। कहाँ से फोन लगाया है
1: मैम। ग्राम सरायमगढ़ जिला अयोध्या से बात कर रही हूँ
0: बताइए। रितु जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैम। घर पर रहकर काम करते हैं।
0: घर के काम करती हैं जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी कोई सहेली है जिससे आप दिल की बातें साझा करती हैं?
1: हाँ मैम है, एक दो लोग हैं
0: कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैम। हम साथ साथ हैं मूवी का, ये तो सच है कि भगवान, ये गाना सुनना चाहती हूँ मैम।
0: जी, हम साथ साथ हैं फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: किसने फोन लगाया है?
1: जी, मैं राजस्थान जयपुर से पूजा सोलंकी बात कर रही हूँ और मैंने पहली बार कॉल किया है और मेरा फोन लग गया। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है।
0: चलो बधाई हो आपको। जी बताइए पूजा जी, क्या करती हैं आप?
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और मेरे हस्बैंड मिनिएचर आर्टिस्ट है। मैं उनके साथ हैंडीक्राफ्ट का काम करती हूँ घर पर ही उनके साथ में।
0: क्या बात है, यानी दोनों मिलके आप काम करते हैं।
1: जी हाँ।
0: जी जी जी अपने शहर के बारे में थोड़ा सा बताइए।
1: मेरा शहर गुलाबी नगरी के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत खूबसूरत है और सब लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और विदेशों से भी बहुत लोग आते हैं। हवा महल, जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल, रामनिवास बाग, सिटी पैलेस, बहुत सारी जगह यहाँ देखने के लिए, घूमने के लिए और सब देखने के लिए आते हैं और मुझे मेरा शहर बहुत पसंद है।
0: हमें भी आपका शहर बहुत पसंद है। बताइए अभी बारिश हो रही है या रुकी हुई है बारिश?
1: नहीं, बारिश तो बहुत नाराज हो रखी है क्योंकि जब बारिश आती है तो सब लोग बोलते हैं कि हाँ थोड़ी बारिश आ गई है, जब ज्यादा आती है तो सब लोग बोलते हैं नहीं बारिश अब नहीं आनी चाहिए, बहुत परेशान हो गए, सब जगह कीचड़ हो गया है, रोड टूट गई है, इसीलिए बारिश नाराज होती है, अभी रुकी हुई है। लेकिन हाँ, हो सकता है कि 2 या 3 दिन में वापस आना स्टार्ट हो जाए क्योंकि अभी तो मानसून आने वाला है और स्टार्ट भी होने वाला है और सावन भी लगने वाला है।
0: क्या बात है, ये आपने बहुत अच्छे विचार रखे कि हमें जैसे होना उस स्थिति में, उस परिस्थिति में खुद को ढाल लेना चाहिए। जब बारिश
1: जी
0: ज्यादा हो जाती है तो हम शिकायत करने लगते हैं और बारिश कम आती है तब भी हम शिकायत करते हैं, तो हमारी शिकायत करने की आदत जो है वो हमें दूर रखना चाहिए। ये बहुत अच्छी
1: जी
0: बात आपने कही। और बताइए रेडियो कब सुनती हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपको पसंद है?
1: मुझे रेडियो के सारे प्रोग्राम पसंद है और मैं और मेरे हस्बैंड काम करते हुए सुबह से ही सारे प्रोग्राम सुनते हैं और खास तौर से मेरे हस्बैंड मेरे शादी होने से पहले से ही प्रोग्राम सुनते थे और उन्होंने मुझे ये आदत डाली है आपकी सखी सहेली और यादें उनकी उजालों की। और सुबह से मतलब आप ये सोच लो कि सुबह से लेके हवा महल तक और उसके बाद में छाया जी तक जितने भी प्रोग्राम आते हैं हम सारे सुनते हैं।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कि कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: जी, मनोज कुमार और जीनत अमान का मैं ना भूलूंगा सुनना है।
0: चलिए सुनवाते हैं रोटी कपड़ा और मकान फिल्म का ये आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार। किसने फोन लगाया है और कहाँ से फोन लगाया है?
1: मैं साधना गजबीये नागपुर से बोल रही हूँ मैम। जिंदगी
0: साधना जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: में कपड़े का बिजनेस करती हूँ।
0: अच्छा, यानी आप कपड़े का बिजनेस, यानी ऑनलाइन बिजनेस है या आपकी खुद की दुकान है?
1: हाँ मैडम, मैं घर से सेल करती हूँ,
0: अच्छा
1: खुद का बिजनेस है।
0: अच्छा किस तरह के आपका बिजनेस है कपड़े का?
1: कपड़े का साड़ी है, शर्ट पैंट पीस है, सब आइटम रखते हैं। मतलब
0: ये तो बहुत अच्छी
1: जी
0: बात है। और ये बताइए, अपनी दिनचर्या में व्यायाम को महत्व देती है?
1: मैं सुबह व्यायाम ही करती हूँ मैडम। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक एक्सरसाइज रहती मेरी, फिर वहाँ करने 6 बजे से 8 बजे तक बाहर जाती हूँ, 2-3 किलोमीटर चलती हूँ।
0: अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है कि अपने जीवन में महिलाओं को कितने भी व्यस्त क्यों न हो, व्यायाम करना चाहिए, क्योंकि जब व्यायाम करते हैं तो हम तंदुरुस्त रहते हैं। और रेडियो कब सुनती हैं?
1: दिन भर तो घर ही में रहते हैं, तो सुबह 8 बजे से हमारा समाचार से विविध भारती शुरू होता है।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आपने रेडियो से, या यूं कह लीजिए, संगीत से दोस्ती कर ली है। जब हम संगीत से दोस्ती करते हैं तो हमारे जीवन में सुकून के पल आते हैं। तन के स्वास्थ्य के लिए आप व्यायाम करती हैं और मन के स्वास्थ्य के लिए आप संगीत सुनती हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। बताइए, कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: ओ मेरी जंग है वो जीत जाएंगे हम माँ के ऊपर।
0: जी, चलिए सुनवाते हैं मेरी जंग फिल्म का ये गीत।

0: अंतराल के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है हेलो सहेली। हेलो सहेली
1: हेलो सहेली, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से, मेरा गांव है नीलनाग वांगवास।
0: कश्मीर से कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: बिल्किस ने।
0: बिल्किस जी। जी बताइए
1: हाँ,
0: क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ना रोजनी का शॉल बनाती हूँ मैं।
0: शॉल बनाती हैं जी,
1: हाँ
0: शॉल की बुनाई करती हैं जी।
1: हाँ दीदी,
0: और ये शॉल जो है साल भर बुनते हैं या किसी खास मौसम में ही बुना जाता है?
1: नहीं दीदी, आज भी बनाती हूँ, सर्दी में भी बनाती हूँ
0: जी। चलिए बताइए आप कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: दीदी। मुझे फिल्म आँखें का गाना सुनना है, मिलती है जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी।
0: जी, मिलती है
1: हाँ दीदी,
0: जिंदगी में मोहब्बत कभी कभी, आपकी पसंद का ये गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, प्रेरणा
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: शर्मा बोल रही हूँ। मैं बैतूल जिले से, मध्य
0: जी प्रेरणा
1: प्रदेश
0: जी।
1: के।
0: जी प्रेरणा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं समाज सेवा करती हूँ
0: अच्छा
1: और बस घर के जो भी अपने रहते हैं वो।
0: जी, जो सोशल वर्क आप करती हैं उस बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए।
1: जी, मैं सोशल वर्क बच्चों संबंधी, महिलाओं संबंधी, पर्यावरण संबंधी ये करती हूँ। हमारी एक सोसाइटी है, उसमें मैं महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करती हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप लोगों के चेहरे पर खुशियाँ लाने का काम करती हैं।
1: जी बिल्कुल, कोशिश करते हैं यही।
0: जी, और जब सामने वाला हमारी बदौलत खुश होता है तो हमें अलग ही बहुत खुशी मिलती है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: जी, और अपने शहर के बारे में बताइए।
1: शहर तो हमारा बड़ा खूबसूरत है, हरियाली से भरपूर ट्राइबल एरिया है। ये बेसिकली आदिवासी क्षेत्र है जी।
0: जी
1: बाकी है, छोटा है लेकिन सब सुविधाएं हैं, शांति है, हर तरी लोग बहुत अच्छे हैं, सरल हैं लोग।
0: जी प्रेरणा जी, बताइए कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मैं घर फिल्म का गाना सुनना चाहती हूँ।
0: जी, घर फिल्म का आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते जी।
0: नमस्ते, बताइए कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: मैं सुरेखा जोशी बात कर रही हूँ मुलुंड से।
0: जी बताइए सुरेखा जी, क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं क्लासेस लेती हूँ गाने के, और गाने के प्रोग्राम करती हूँ।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छी
1: हाँ
0: बात है, यानी संगीत से
1: हाँ
0: जुड़ी
1: हाँ
0: हुई हैं आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपके विविध भारती की बहुत पुरानी श्रोता हूँ। आप सब आरजे की आवाज बहुत मीठी है, बहुत बढ़िया पेशकश रहती है सबकी।
0: जी शुक्रिया।
1: सब प्रोग्राम सुनती हूँ मैं। सुबह संगीत सरिता से शुरू होता है मेरा रेडियो, संगीत सरिता सुनती हूँ, फिर 8 बजे तक सुनती हूँ।
0: अरे वाह,
1: आज के मेहमान, सेहतनामा और बाकी गाने के सब प्रोग्राम रात को 10 बजे तक, 10:30 बजे तक चालू रहता है।
0: यानी आपने
1: बिल्कुल
0: रेडियो से दोस्ती कर ली है।
1: बिल्कुल, मेरा रेडियो सुबह उठते से ही पहले रेडियो ही रहता है हाथ में, उसके बाद मैं सब करती हूँ मेरा काम।
0: बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि हमने रेडियो से ही संगीत सीखा है।
1: बराबर है, ये भी बात सही है मैडम, क्योंकि हम लोग इतने साल से सुन रहे हैं। मैं उज्जैन की हूँ एक्चुअली, मायका मेरा उज्जैन का है, और मेरी एक जुड़वा बहन है, तो हम दोनों सुबह उठते से ही पहले रेडियो लगाते थे, और बहुत से गाने फटाफट फटाफट लिख लेते थे। तो हम सब गाने लिख लेते थे और हम सब उसी से याद करते थे। हम दोनों ही गाते हैं, वो उसने MA किया है, मैंने BA किया है म्यूजिक में, तो हम दोनों ही प्रोग्राम करते हैं, और सब गाने विविध भारती से सुन के ही हमने याद किए हैं।
0: यानी रेडियो से जुड़ी आपकी कितनी खूबसूरत, कितनी सुनहरी यादें हैं। कौन सा गीत आप सुनना चाहती हैं?
1: मुझे अनुपमा का गाना सुनना है।
0: चलिए सुनवाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं स्वाति पाथे बोल रही हूँ थाने से।
0: जी स्वाति जी, बताइए क्या करती हैं आप?
1: वैसे बाय प्रोफेशन मैं फैशन डिजाइनर हूँ, तो इसी से रिलेटेड मेरा बिजनेस है।
0: अच्छा, यानी किस तरह का बिजनेस है?
1: मेरा ऑनलाइन बिजनेस है जिसमें मैं हर तरह का, जैसे अपने देश में हर तरह का हैंडलूम है, हैंडलूम की बड़ी रिच परंपरा है हमारे पास, तो मैं ऑल हैंडलूम साड़ीज में डील करती हूँ। होम लिनन है प्लस रेडीमेड गारमेंट्स भी हैं।
0: जी, यानी ऑनलाइन है, यानी आप घर पे रहकर ही काम करती हैं।
1: हाँ जी, मैं घर पे रह के अपना घर संभाल के ही काम करती हूँ
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और एक बात बताइए स्वाति जी, कि
1: जी।
0: इसी महीने हम अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाते हैं, तो दोस्त का क्या महत्व है आपके जीवन में?
1: सोनाली जी, दोस्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं हमारी जिंदगी का। रिश्तेदार तो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, राइट? कि दोस्त जो होते हैं उनको हम चुनते हैं,
0: जी
1: जिनसे हमारी वेवलेंथ मैच होती है, जिनसे हमारे विचार मिलते हैं, और जो हमारे सुख दुख को बड़ी आसानी से बिना कहे समझ जाते हैं, वही दोस्त होते हैं।
0: जी सचमुच दोस्त, जिनके बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, दोस्ती घनिष्ठता से जो लोग दोस्ती निभाते हैं, वो सचमुच बहुत भाग्यशाली होते हैं। जी
1: सच में, बिल्कुल सच कहा आपने।
0: जी
1: एक चीज और मैं कहना चाहूंगी सोनाली जी, कि जैसे दोस्त तो हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी होते हैं, और बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनके जिंदगी में बड़े पुराने अपने स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के दोस्त होते हैं,
0: जी
1: है ना? लेकिन यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो हमारे आसपास प्राणी होते हैं
0: जी
1: वो भी हमारे बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं या होते हैं।
0: जी
1: ऐसे ही मेरा भी एक बहुत प्यारा सा मित्र है, छोटा सा, मेरा बिल्ला जिसको हम सिम्बा कहते हैं। सचमुच उसने मेरी लाइफ का सुख दुख बहुत ही अच्छे तरीके से बांट लिया है।
0: जी यानी ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ मनुष्य से ही दोस्ती हो, प्राणी मात्रों से हम दोस्ती कर सकते हैं, प्रकृति से दोस्ती कर सकते हैं, संगीत से दोस्ती कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: तो आपका दिन का बिल्ला है, उसके साथ में बहुत प्यारे अंदाज में गुजरता होगा।
1: बहुत अच्छे से, मतलब जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव,
0: जी
1: वो हम इन लोगों के साथ बिल्कुल अच्छी तरह से महसूस कर सकते हैं कि क्या होता है एक्चुअली,
0: जी तो हम
1: बहुत
0: सभी
1: ही
0: को
1: प्यार।
0: ये सीख लेना चाहिए कि जब भी हम कोई खाने की चीज होती है ना, प्लास्टिक में भर के हम रास्ते पे फेंक देते हैं, तो ये जो हमारे प्राणी मित्र होते हैं, बेचारे भूखे होते हैं, तो प्लास्टिक के साथ में खा लेते हैं। तो हमारी ये कोशिश होना चाहिए कि कोई भी खाना अगर दे तो आप कागज पर रख कर दे या फिर किसी पत्ते पर रख कर दे, पर इसे प्लास्टिक में खाना नहीं फेंकना चाहिए।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने।
0: जी स्वाति जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। चलिए बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?

0: जैसे कि हमने दोस्ती की बातें की हैं सोनाली जी, तो मैं दोस्ती का ही एक गाना सुनना चाहूंगी। फिल्म है नमक हराम, किशोर कुमार जी का गाया हुआ गीत है, और गीत है दिए जलते हैं फूल खिलते हैं, बड़ी मुश्किल से यहाँ दोस्त मिलते हैं।
1: जी बहुत अच्छा गाना आपने चुना है, सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: बताइए हमारी कौन सी सहेली ने फोन लगाया है?
1: जी, मैं मृणालिनी सक्सेना बोल रही हूँ
0: जी कहाँ से बात कर रही हैं आप?
1: जी। मैं भोपाल से बात कर रही हूँ
0: जी मृणालिनी जी, बताइए क्या करती हैं आप जिंदगी में?
1: मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ छोटे बच्चों को, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा उन लोगों को पढ़ाना, शिक्षा देना।
0: जी, छोटे बच्चों के साथ काम करके कैसा लगता है?
1: जी मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे मतलब इस बात में खुशी मिलती है और संतुष्टि मिलती है कि वो उन लोगों को जो नहीं आता है उन लोगों को पढ़ाना और उनको ज्ञान देना, उनको बहुत शिक्षित करना, बहुत खुशी मिलती
0: अच्छा मृणालिनी जी, आप बच्चों को ट्यूशन देती हैं, तो ये बात
1: है। जी
0: बताइए आप कि रेडियो कब सुनती हैं फिर?
1: जी मेरी ट्यूशन शाम को रहती है और मैं दोपहर में समय निकालकर और इसको जरूर सुनती, मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको सुनना। मुझे बहुत सारी बातें ऐसी पता चलती हैं जिससे कि आजकल की महिलाएं हैं जिनको मैं सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है कि ये बहुत आत्मविश्वास से भरी हैं और अपना अस्तित्व बनाने के लिए बहुत बिल्कुल जुट गई हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आगे बढ़ रही हैं।
0: तो चलिए रेडियो सुनते रहिए।

0: और बताइए कौन सा गीत आज आप सुनना चाहती हैं?
1: जी मैं फिल्म मासूम का तुझसे नाराज नहीं है जिंदगी उसको सुनना चाहती हूँ।
0: जी मासूम फिल्म का गाना तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूं मैं। सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: सखियों, आपके अनुभव, आपसे की गई बातें दिल को छू गई। आपसे मुलाकात होगी अगले मंगलवार को। हम आपको बता दें, हेलो सहेली की रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से, तो जल्दी से हमारे टेलीफोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे नंबर इस तरह से हैं, 400-24662 यानि 400-24662। दूसरा नंबर है 28670-288 यानि 28670288, और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानि 022। चलते चलते हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिला समृद्धि नाइक का, संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े, हेलो सहेली कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो आज आपसे इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। आपकी अपनी सहेली सोनाली पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की जुबान।

0: केंद्र है। आइए सुनते हैं अब तक के मुख्य समाचार।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जेपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की जेएमएम सरकार पर लगातार पेपर लीक होने का आरोप लगाया और कांग्रेस के दोहरे रुख की आलोचना की। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी भर्ती परीक्षा मामले में सीआईडी की जांच तेज हो गई है। आयोग के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते आज लगातार तीसरे दिन रांची स्थित सीआईडी मुख्यालय में पेश हुए, जहां उनसे पूछताछ हो रही है। निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हजारीबाग वन भूमि से जुड़े घोटाला मामले में उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोडरमा स्वच्छ भारत मिशन फेज दो के तहत राज्य का पहला ओडीएफ प्लस जिला बनने जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक रंजिता हेम्ब्रम ने कोडरमा में समीक्षा बैठक के बाद बताया कि जिले ने 71% लक्ष्य हासिल कर लिया है और अगस्त महीने तक शेष कार्य पूरे कर इसे मॉडल जिला घोषित किया जाएगा। चतरा जिला प्रशासन ने इको पार्क में बैटरी चलित ई कार्ट सेवा शुरू करने के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता किया है। एनटीपीसी इसके लिए 13 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देगी। 75 एकड़ में फैले इस पार्क में ई कार्ट सेवा शुरू होने से वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को बड़ी सहूलियत होगी। गिरिडीह में आज 3 दिवसीय जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्पित है। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार,
0: ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।
2: भी ड्रेस निकाल कर रखी थी, सब कुछ तो प्लान किया था, अब और कितना प्लान करूं? इस दुपट्टे ने सारा गड़बड़ कर दिया। सौम्या अलमारी में ऊपर के नीचे के रैक सब खंगालते हुए सोचती जा रही थी, इतना सब करने के बाद भी काम सही से नहीं हो रहा है।
3: ये कौन जाने मैं क्या हूँ, सुनना चाहते हो? सुनो, मैं एक चांद हूँ जिसके माथे पे एक दाग है, मेरा दिल जलता हुआ चिराग है।

बात उन दिनों की है जब सौम्या का पहली बार आलोक के साथ मूवी देखने का प्रोग्राम बना था। नई नई शादी के बाद अपने पति के साथ फिल्म देखने जाना बहुत उत्साह से भर रहा था सौम्या को। उसने अच्छी सी साड़ी पहनी, हल्का मेकअप किया था, लेकिन तैयार होने में केवल 5 मिनट की देरी हो गई थी। बस आलोक मूवी तो ले गए लेकिन एक शब्द नहीं बोला। सौम्या का इस तरह मूवी देखने का अनुभव बड़ा ही अलग था। अपने मायके में तो जब भी कोई मूवी देखती थी तो उस पर सभी कितनी चर्चा करते थे, उसके गाने गुनगुनाते थे, पूरी समीक्षा कर डालते थे, पर यहां तो अंदाज ही जुदा था। इस तरह पहली बार चुपचाप नाराज होकर कोई मूवी दिखाए तो कैसी लगेगी मूवी। खैर, रूठे हुए पति के संग सौम्या ने जैसे तैसे पूरी फिल्म देखी, फिर कोई चारा भी तो नहीं था।

सौम्या, तुम ना पार्टी का पूरा मूड बर्बाद कर रही हो। लोकल ट्रेन छूट गई तो कैब से जाना पड़ेगा और इतना ट्रैफिक होता है कि शाम को पहुंचते पहुंचते 9 बज जाएगा। और तुम्हारी गाड़ी है कि खिसक ही नहीं रही है। 5 मिनट में तैयार हो, नहीं तो तुम अपनी पार्टी यहीं मनाती रहना। आलोक की तलखी से सौम्या चिढ़सी गई। पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है आलोक के पास। अभी मैंने कुछ बोल दिया तो मुंह फुलाकर बैठ जाएंगे और एक हफ्ते बात ही नहीं करेंगे। कितने भी नए साल आ जाएं, इनमें कुछ बदलाव नहीं आने वाला। हे भगवान, तुमने पूरब पश्चिम की जोड़ी बनाई है, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी याददाश्त भी तो माशाल्लाह है, ऐसी जगह दुपट्टा रख दिया कि वक्त पर मिल ही नहीं रहा। यही सब सोचते हुए सौम्या ने गोल्डन कलर का दूसरा दुपट्टा पहन लिया। अब क्या करे, नहीं मिल रहा है तो मिसमैच करना पड़ेगा। सौम्या गोल्डन दुपट्टे के साथ तैयार होकर कमरे से बाहर आ गई और दोनों लोकल ट्रेन के लिए ऑटो से स्टेशन की ओर निकल पड़े। रास्ते भर आलोक कुछ नहीं बोला। सौम्या को भी गुस्सा आ गया था। जाओ, मत बोलो। मैं भी नहीं बोलूंगी, बहुत मना लिया है।

ठाणे स्टेशन पर ट्रेन आते ही आलोक जनरल डिब्बे में चढ़ा और सौम्या लेडीज डिब्बे में। सौम्या ने चढ़ते समय देखा आलोक का मुंह अब भी फूला हुआ था। सौम्या का भी मन बुझ सा गया। कितना सोचा था नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी होगी, खूब एंजॉय करेंगे, पर ये तो 5 मिनट की देरी भी नहीं आलोक को बर्दाश्त। मिस्टर शर्मा अपनी वाइफ का कितना इंतजार करते हैं, जरा भी झुंझलाते नहीं, और एक हम दोनों बिल्कुल मिसमैच। सौम्या को मन बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा है।

लोकल ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ चुकी थी। बैठने की जगह तो नहीं मिली, लेकिन आराम से खड़े रहने भर की जगह सौम्या को मिल गई थी। लोकल ट्रेन का लेडीज कंपार्टमेंट, जैसे कि एक रंग बिरंगी दुनिया वहां समा गई हो। कोई महिला बैठे हुए हाथ में माला लेकर जप रही थी, तो दूसरी मोबाइल में खुद को देखते हुए लिपस्टिक लगा रही थी। कई सारी महिलाएं दफ्तर से लौटने के बाद चेहरे पर थकान लिए घर जाने की प्रतीक्षा में निढाल सी खड़ी दिख रही थी। इन सब की जिंदगी में भी क्या सब कुछ मन मुताबिक होगा? कुछ ना कुछ अभाव तो सबके जीवन में होता ही है। इनके जीवन में भी कुछ झगड़े झंझट होते ही होंगे, खासकर पति से। यही सब सौम्या सोच रही थी कि उसे लेडीज डब्बे में पीछे की ओर बैग टांगे, जीन्स टॉप स्कर्ट टॉप पहने उत्फुल्लता से बतियाती हुई कॉलेज जाने वाली लड़कियां दिखी। वैसे तो वे सब कॉलेज से वापस आ रही थी, लेकिन उनके दमकते चेहरे इसका तनिक भी आभास नहीं दे रहे थे। हल्का मेकअप तो जरूर था उनके चेहरे पर इससे कहीं अधिक भविष्य को लेकर बुने गए सपनों की चमक इन लड़कियों के चेहरे की रौनक को आबाद कर रही थी। ये लड़कियां कितने आत्मविश्वास से परिपूर्ण नजर आ रही थी। इन्हें स्पष्ट पता है कि इन्हें क्या चाहिए।

सचमुच ये लड़कियां अपनी मंजिल खुद तय करती हैं, और एक मैं थी। करियर, कपड़े, बाहर जाना, सब में किसी न किसी की अनचाही सलाह। और स्वयं भी तो वो कंफ्यूज रही। शादी की उम्र पर भी नहीं पता चल रहा था कि शादी किसके साथ की जाए, इसलिए तो सब मिसमैच। एताई पुड़े चला ना, यह आवाज सुनकर सौम्या की सोच को विराम लगा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक कान के झुमके वाला, बांगड़ी वाला आवाज दे रहा था। कुछ महिलाएं उससे झुमके, कंगन वगैरह खरीदने लगी। सौम्या को फिर याद हो आया कि किस तरह उसने सपने संजोए थे कि उसे उसका पति झुमके लाकर पहनाएगा। शायद हिंदी फिल्मों का असर रहा हो, पर यहां तो पासा ही पलट गया। सौम्या के पतिदेव जी को फिल्में देखने का कोई खास शौक ही नहीं था, तो फिर ये झुमके वाला रोमांस तो बहुत दूर की कौड़ी थी।

0: अंतराल के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। लीजिए सुनिए मिस मैच इस कहानी का शेष भाग।
1: सौम्या को साहित्य संगीत से प्रेम और आलोक गणित का पहाड़ा पढ़ने वाले। सौम्या ने अगर आलोक को पकड़ के कोई कविता सुना भी दी तो कहेंगे, अच्छा तो तुम बताओ कि इस कविता के लिए क्या कहूं, या कविता सुनते सुनते कहते, वो तुमने दूध वाले का बिल दे दिया। सौम्या अपना सर पकड़ के रह जाती। कविता की ऐसी रस निष्पत्ति होगी उसने कभी नहीं सोचा था। नई नई शादी के बाद पहली बार सौम्या ससुराल में आरती कर रही थी। बड़े ही भाव के साथ आरती गा रही थी कि ओम जय जगदीश का अलग ही सुर या असुर कानों में सुनाई पड़ा। ये बेसुरा संगीत आलोक के मुखार बिंद से सुनाई पड़ रहा था। ये सुनते ही सौम्या की हंसी छूट पड़ी। ऐसा सुर संगम जिंदगी में उसने पहली बार सुना था। ये सब याद करते हुए सौम्या के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और फिर आसपास लोकल ट्रेन में अन्य महिलाओं को देखते हुए स्वयं को फिर से गंभीर मुद्रा के साथ बांध लिया। उसे अपने आप में मुस्कुराता देखकर वे क्या सोचेंगी, पर मुंबई में कहां किसी को फुर्सत किसी के विषय में सोचने की। अच्छा भी है, इससे आप बेपरवाह रह सकते हैं, और अच्छा नहीं भी, क्योंकि कभी कभी मन को कितना भाता है जब कोई आपकी परवाह करता है। हां, करता था ना परवाह, बिना बोले सिर्फ अपनी आंखों से, और कभी बोला भी तो सबके बीच सौम्या की प्रशंसा करते हुए, बहुत अच्छा गाती है सौम्या, और लिखती कितना अच्छा है, और ओह कहां से कहां बात लेकर चली गई, सब पुरानी बातें जिन्हें बस याद करके मन झूम उठा।

मोबाइल की रिंग से सौम्या वर्तमान में आ गई। देखा तो आलोक का फोन था। हेलो, सौम्या ने फोन उठाते हुए कहा। क्या सौम्या, कितनी बार कॉल किया और तुम हो कि उठा ही नहीं रही हो, लगभग चिल्लाते हुए आलोक बोले। अरे ट्रेन में इतना शोर हो रहा है, कैसे सुनाई पड़ेगा, और फिर मोबाइल पर्स में रखा है। कुछ नहीं, तुम्हारा ध्यान बस इधर उधर रहता है, एक बार में कभी फोन उठाना ही नहीं। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हाँ हो तो बहुत कुछ सकता है, बस आगे बढ़ने से खुद को रोक लेती हूँ, सौम्या कहना चाहती थी पर कहा नहीं। अच्छा सुनो, दादर आने ही वाला है, 3 स्टेशन के बाद ही उतरने के लिए तैयार हो जाओ। आलोक की आवाज में अब भी तलखी थी। जरा मिठास से नहीं बोल सकते हैं क्या, छोटी छोटी बात पर गुस्सा होना अच्छा नहीं। कबीर ने कहा है ना, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। पर साहित्य तो पढ़ा ही नहीं आलोक ने, तो कैसे समझ आएगी ये सब बातें। सौम्या मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी।

दादर उतरना है ना? सौम्या ने फिर आगे खड़ी महिला से पूछा। उस महिला ने हां में सिर हिलाया। सौम्या उसी लाइन में खड़ी हो गई। ऐसे भी मुंबई में कोई काम बिना लाइन के चलता ही नहीं। थोड़ा भी तलविचल हुए कि सब कुछ अव्यवस्थित हो जाएगा। जब सौम्या आलोक के साथ मुंबई पहली बार आई थी तो ऐसा ही कुछ अस्त व्यस्त सा माहौल हो गया था। आलोक के हिसाब से बहुत बड़ी गलती थी और सौम्या के हिसाब से ये तो कोई गलती ही नहीं। फिर अगर गलती मान रहे हैं तो वो गलती क्या थी? तो बात ये थी कि सौम्या साबुन लाना भूल गई थी। एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होने में कुछ चीजें भूलना तो सामान्य बात है। इतना सामान पैक करना है तो कुछ ना कुछ छूट सकता है, पर आलोक को ये सब आधारभूत गलती लगती थी। साबुन कैसे भूल सकती हो? अब भूल गई, इतना पैक करना था सब कुछ, लेकिन साबुन कैसे कोई भूल सकता है? उफ़ो, साबुन ही है ना, ले आएंगे यहीं से। पर तब तक आलोक का मूड बिगड़ चुका था, यानी मुंबई पहुंचते ही सौम्या की लाइन में विचलन आ गया था। सौम्या यही सोचती रहती कि जिंदगी में ये गणित और साहित्य का संगम आखिर भगवान जी ने कैसे कर दिया।

ताई, दादर उतराए से तुला? पीछे आती हुई आवाज से सौम्या की सोच को विराम लगा। सौम्या ने हां की मुद्रा में सिर हिलाया और फिर सोचते हुए मुस्कुरा दी। मंजिल तक पहुंचने के लिए लाइन में रहना जरूरी है। अब जो है जैसा है सब ठीक है। आलोक अगर पक्के गणितज्ञ तो मैं पक्की साहित्यिक, और फिर साहित्य वाले तो निश्चित रूप से अधिक समझदार होते हैं। कब कहां कैसे व्यवहार करना है उनसे बेहतर कौन समझ सकता है। और फिर व्यवहारिक जोड़ गुणा भाग भी तो उसे खूब आता है। चला न ताई, लेडीज डिब्बे में फिर से आवाज गूंज गई। दादर स्टेशन आ गया था। लेडीज डिब्बे में भी बहुत भीड़ हो गई थी। सौम्या 8-10 लेडीज के बाद उतरी। ट्रेन से उतरते ही सौम्या अपना दुपट्टा संभालते हुए अपने बाल ठीक करने लगी। आलोक दूर खड़े होकर सौम्या को देख रहे थे। सौम्या आलोक के पास पहुंची। आलोक ने गंभीर स्वर में कहा, ये कौन सा दुपट्टा डाल लिया? आलोक की बात बीच में काटते ही सौम्या बोली, वो मिसमैच किया है। मिसमैच पर अच्छा लग रहा है, अभी मैंने गौर किया। आलोक रूखे से ही बोले। और मैं कैसी लग रही हूं? सौम्या ने धीरे से पूछा। पता नहीं, आलोक का रूखा सा जवाब था पर आंखें मुस्कुरा रही थी। सौम्या ने उन मुस्कुराती आंखों को देख लिया था, उसे हंसी आ गई। हम दोनों, व्हाट अ मिसमैच। पर जो भी है शायद अच्छा ही है। इतनी बड़ी दुनिया में उसका हाथ पकड़कर साथ चलने वाले आलोक ही तो हैं। भले सुर साहित्य से उतना जुड़ाव नहीं, लेकिन उसके जीवन को पूर्णता के साथ सुरम्य बनाने वाले आलोक ही तो हैं। और फिर आलोक से जुड़ने के बाद भी न उसके अपने छूटे न उसके सपने। सौम्या का हृदय भाव से लबालब हो चुका था। वह अपना दुपट्टा संभालते हुए आलोक के साथ स्टेशन की सीढ़ियां चढ़ने लगी।

गीतों भरी कहानी। आज आप सुन रहे थे डॉक्टर जया आनंदी की लिखी गीतों भरी कहानी मिस मैच, वाचन स्वर था जया आनंद का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

0: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़क।
1: नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3,15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में सौर ऊर्जा के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और खेल विकास के लिए खेलो इंडिया योजना को भी विस्तार देने की स्वीकृति दी गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इस अवसर पर उन्होंने लोकभवन में कुलपतियों, शिक्षाविदों और गणमान्य अतिथियों से संवाद करते हुए राज्य की जनता के प्रति आभार प्रकट किया। रांची में भाजपा प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बावरी ने एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और उत्पाद सिपाही जैसी परीक्षाओं में भारी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। हजारीबाग जेल में आज आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए मुर्गी पालन और सिलाई कटिंग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। उपायुक्त हेमंत सत्ती ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार की समर्पण नीति का उद्देश्य इन कैदियों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार संताल परगना और कोल्हान संभाग में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पदक जीतने पर भारतीय एथलीटों को बधाई दी है। उन्होंने पुरुषों की 110 किलोग्राम से अधिक भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने पर लवप्रीत सिंह और महिला चक्का फेंक स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने वाली सीमा कलीरामना की सराहना की। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

छाए गीत के सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। जान आती है तेरे आने से, डूबता जी है तेरे जाने से, आपके आने से एक फजा बनती है, हम सांस भी ले तो खुशबू बनती है, कोई कुछ भी कहे आपके आने से ही सुहानी शाम बनती है।

सिंगार मेरा है उनके लिए, मेरी हर बात में बात है उनके लिए। यकीन है मुझे छुप छुप के जो आता है अभी मेरी गली में, एक रोज मेरे साथ सरे आम चलेगा।

सजना है मुझे यूं ही हंसी ख्वाबों की तरह, तेरी नजरों में बस जाऊं अदाओं की तरह, महके हैं गुलाब यूं जूं तेरी हंसी में, अब तो सजने को तैयार हूं तेरे प्यार की तरह।

रगों में घुला है ये प्यार का मौसम, रगों में घुला है ये प्यार का मौसम, तू न जाना मेरे दिल के पास रहे तू हर दम, तेरी आहटें हों जब साथ बढ़ जाती है उमंग, तू मुझसे दूर ना जा मेरा दिल है बंधा तेरे संग।

हमसे न जाओ दूर, हमसे न छुपाओ नजरें, तुम बिन अधूरी है दिल की तमन्नाएं। हमारी मोहब्बत का सिलसिला चलता रहे, हमारी चाहतों में रंगीन शाम की यादें बसती रहें, बस यही तो है तमन्ना।

आप जहां भी रहते हो हमारी दुआओं में रहते हो, दिल की धड़कन में कभी तो कभी आंखों में समाए रहते हो। दूरी का एहसास ही नहीं होता, हमारी यादों में आप हर पल रहते हो।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी देर में सुनवाएंगे कार्यक्रम तराने नए पुराने।

अभी आप सुन रही थी विविध भारती का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5:30 बजे हैं। आइए आपको हमारी सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण दे दें।

अब से थोड़ी ही देर में यानी कि 5:35 पर हम प्रस्तुत करेंगे हमारी श्रोता बहनों के लिए कार्यक्रम घर आंगन, जिसमें नारी विमर्श के अग्रदूत मुंशी प्रेमचंद पर चर्चा होगी। स्मार्टफोन का बढ़ता प्रचलन एवं पारिवारिक दूरियां, इस विषय पर अन्नपूर्णा कुमारी की वार्ता सुनेंगी हमारी बहनें। शाम 6:02 पर खेती बाड़ी कार्यक्रम में समन्वित मछली पालन, तिल एवं बादाम की खेती में प्रबंधन, इन विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही सुषमा श्रीवास्तव की एक वार्ता भी प्रसारित की जाएगी, विषय होगा प्राकृतिक खेती। 6:30 ग्रामीण सभा कार्यक्रम में गौशाला की साफ सफाई आवश्यक, इस विषय पर होगी चर्चा। आज का विचार में आप जानेंगे बकरी पालन के फायदे के बारे में। साथ ही कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश से ली गई भेंट वार्ता भी प्रसारित की जाएगी, भेंट करता होंगे संतोष कुमार। शाम 7:00 प्रादेशिक समाचार और जिले में आजकल 7:10 पर आकाशवाणी रांची से रिले किए जाएंगे। 7:15 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग। 7:45 पर रोजगार से जुड़ी बातें कार्यक्रम उड़ान के तहत संकलन एवं वाचन होगा मीनाक्षी कर्ण का। 8:15 से हम पेश करेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट से। कव्वालियों का प्रोग्राम महफिल 8:30 से। पौने 9:00 हिंदी में समाचार, 9:00 अंग्रेजी में समाचार और 9:15 पर उर्दू में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होंगे। 9:30 सुनिएगा विविध भारती से आज के फनकार कार्यक्रम। 10:00 से आप सुनेंगे रजनीगंधा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम। 11:00 हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार और 11:10 पर हमारी सभा का समापन होगा।

अभी आप सुन रहे थे हमारी सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर शाम के 5:35 हुए हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम में आप सभी बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को अनुपमा का नमस्कार। बहनों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मुंशी प्रेमचंद, जो महान लेखक, साहित्यकार, उपन्यासकार, कथा सम्राट और हिंदी साहित्य के सितारे के रूप में जाने जाते हैं। आज महान गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्य स्मृति भी है, तो मोहम्मद रफ़ी साहब को याद करते हुए आइए सुने सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में ये गीत।

0: मोहम्मद रफ़ी के गाए इस गीत के बाद आइए बहनों आपको सुनवाते हैं अन्नपूर्णा कुमारी की वार्ता। विषय है स्मार्टफोन का बढ़ता प्रचलन एवं पारिवारिक दूरियां।
1: तो मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार जोहार। आज मैं आपसे एक ऐसे विषय पर अपने विचार साझा करना चाहती हूँ जो आज लगभग हर घर परिवार और हर व्यक्ति के जीवन में जुड़ा हुआ है। विषय है स्मार्टफोन का बदलता प्रयोग और परिवार की बढ़ती दूरियाँ। कहा जाता है कि समय के साथ जीवन बदलता है। पहले बैलगाड़ी थी, फिर साइकिल आई, उसके बाद मोटरसाइकिल और कारें आईं। पहले खत लिखे जाते थे, फिर टेलीफोन आया और आज हमारे हाथ में एक छोटा सा मोबाइल स्मार्टफोन जिसमें पूरी दुनिया समा गई है। जैसे कि कहा जाता है कि एक गागर में एक सागर है। यह तकनीक का चमत्कार है। आज हम घर बैठे बैंक का काम कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, बच्चों की पढ़ाई करवा सकते हैं, टिकट बुक कर सकते हैं और देश दुनिया के हर खबर को जान सकते हैं। सच कहा जाए तो मोबाइल में जीवन को पहले की तुलना में कहीं अधिक सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन हर सुविधा के साथ एक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। जिस साधन का उपयोग हमारी सुविधा के लिए होनी चाहिए थी, कहीं वही साधन हमारे जीवन और हमारे रिश्तों पर हावी तो नहीं हो गया है? यह सवाल आज हम सभी को अपने आप से पूछने की ज़रूरत है। आज यदि हम किसी घर में जाएं, एक अजीब सा दृश्य देखने को मिलता है। परिवार के सभी सदस्य एक ही कमरे में बैठे हैं, लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा। पिता अपने मोबाइल पर समाचार देख रहे हैं, माँ सोशल मीडिया पर किसी की तस्वीर देख रही है, बेटा ऑनलाइन गेम खेल रहा है और बेटी मोबाइल पर वीडियो देख रही है। सब एक दूसरे के पास हैं, लेकिन किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। यह दृश्य आज शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे कस्बों और गांवों में भी आम हो गया है। मुझे अपना बचपन याद आता है। शाम होते ही पूरा परिवार एक साथ बैठता था, दिन भर की बातें होती थी, दादी नानी कहानियाँ सुनाती थी, पिता घर के छोटे बड़े मामलों पर चर्चा करते थे, माँ पूरे परिवार को एक साथ बैठा कर खाना खिलाती थी, त्योहारों की खुशियाँ भी सामूहिक हुआ करती थी। परिवार का अर्थ केवल एक घरों में रहना नहीं था बल्कि एक दूसरे का सुख दुख में सहभागी बनना था। आज समय बदल गया है, परिवार छोटे हो गए हैं और बातचीत भी छोटी होती जा रही है। कई घरों में ऐसा होता है कि सुबह सब अपने अपने काम में निकल जाते हैं और रात को लौटकर भी मोबाइल में व्यस्त हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पूरा दिन बीत जाता है लेकिन परिवार के लोग एक दूसरे से 5 मिनट भी खुलकर बात नहीं कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है? ये स्मार्टफोन धीरे धीरे हमारी आदत नहीं बल्कि हमारी आवश्यकता से भी आगे बढ़कर हमारी निर्भरता बनता जा रहा है। सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले स्मार्टफोन देखते हैं, रात को सोने से पहले भी आखिरी बार स्मार्टफोन ही देखते हैं। यदि कुछ देर मोबाइल हमारे पास ना रहे तो बेचैनी होने लगती है। यह स्थिति चिंताजनक है। स्मार्टफोन का सबसे अधिक प्रभाव हमारे पारिवारिक संवाद पर पड़ा है। किसी भी परिवार की सबसे बड़ी ताकत होती है आपसी बातचीत। जब लोग एक दूसरे से बात करते हैं, उनकी भावनाएं साझा करते हैं, एक दूसरे की समस्याएं सुनते हैं और परिवार और भी मजबूत बनता है। लेकिन जब बातचीत की जगह मोबाइल लेता है तब रिश्तों में धीरे धीरे दूरी आने लगती है। आज बहुत से माता पिता शिकायत करते हैं कि बच्चे उनकी बातें नहीं सुनते। दूसरी ओर बच्चे कहते हैं कि माता पिता के पास उनके लिए समय ही नहीं है।

सच तो यह है कि दोनों ही कहीं ना कहीं स्मार्टफोन की दुनिया में उलझ कर रह गए हैं। एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, एक 10 साल का बच्चा पूरे दिन माता पिता का इंतजार करता है। जब उसके माता पिता घर लौटते हैं तो वह उत्साह से दौड़कर उनके पास आता है। वह स्कूल की बातें बताना चाहता है, लेकिन पिता मोबाइल पर किसी ऑफिस के संदेश में व्यस्त हैं और माँ किसी वीडियो या सोशल मीडिया में। बच्चा कुछ देर इंतज़ार करता है, फिर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन वह फिर कोशिश करता है कि धीरे धीरे वह उनकी उनसे बातें करें, लेकिन वह धीरे धीरे यह समझ जाता है कि उनकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है। तब वह अपना साथी मोबाइल को ही बना लेता है और यहीं से दूरी की शुरुआत होती है। बच्चे कभी अचानक ज़िद्दी नहीं बनते, वे कभी अचानक चुप नहीं हो जाते। उनके व्यवहार में आने वाले परिवर्तन के पीछे कहीं ना कहीं परिवार के साथ या संवाद की कमी ही होती है। आज छोटे छोटे बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन दिखाई देता है। कई बार माता-पिता अपने व्यस्तता के कारण बच्चों को मोबाइल दे देते हैं ताकि वे रोएं नहीं, मोबाइल देखें, उन्हें परेशान ना करें। शुरुआत में यह आसान उपाय लगता है, लेकिन धीरे धीरे यह आदत एक बड़ी समस्या बन जाती है। आज डॉक्टर भी कह रहे हैं कि लंबे समय तक स्मार्टफोन देखने से बच्चों की आँखों में बुरा प्रभाव पड़ता है, उनकी नींद प्रभावित होती है, उनका ध्यान पढ़ाई में कम लगता है, बाहर खेलना कम हो जाता है, कल्पना शक्ति घटने लगती है। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे वास्तविक दुनिया के बजाय आभासी दुनिया में अधिक समय बिताने लगते हैं। कुछ समय पहले एक समाचार पढ़ने को मिला, एक छोटे बच्चे से उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या आज पार्क चलोगे? बच्चे ने जवाब दिया, नहीं, मुझे पार्क नहीं जाना, मुझे मोबाइल पर ही खेलना है। यह उत्तर सुनने में छोटा लगता है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा संदेश छिपा है। जिस उम्र में बच्चों को मिट्टी में खेलना चाहिए, पेड़ों पर चढ़ना चाहिए, दोस्तों से बातें करना चाहिए, उनके साथ दौड़ना चाहिए, उम्र में वे मोबाइल की स्क्रीन पर उंगलियां चला रहे हैं। मोबाइल बच्चों को जानकारी तो दे सकता है, पर बचपन नहीं दे सकता। मोबाइल मनोरंजन तो दे सकता है, लेकिन परिवार का स्नेह नहीं दे सकता। मोबाइल खेल दिखा सकता है, लेकिन बच्चों के साथ खेलने का आनंद नहीं दे सकता। हमें यह समझना होगा कि बच्चों के व्यक्तित्व का निर्माण केवल अच्छी शिक्षा से नहीं होता, बल्कि अच्छे पारिवारिक वातावरण से होता है। जब माता-पिता बच्चों के साथ बैठते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, उनके साथ खेलते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तब बच्चे भावनात्मक रूप से मजबूत बनते हैं। आज एक और चिंता का विषय है, परिवार के लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझने के समय नहीं निकाल पा रहे हैं। पहले जब किसी सदस्य के चेहरे पर उदासी दिखाई देती थी तो घर के लोग तुरंत पूछते थे, क्या बात है? लेकिन आज अक्सर ऐसा होता है कि सामने बैठा व्यक्ति परेशान है और दूसरा व्यक्ति स्मार्टफोन में इतना व्यस्त है कि उसे उसका एहसास भी नहीं होता। यह केवल तकनीक का प्रभाव नहीं, बल्कि संवेदनाओं का धीरे धीरे कम होने का संकेत है। हमें यह स्वीकार करना होगा कि स्मार्टफोन ने सुविधा तो दे दी है, लेकिन उसका संतुलित उपयोग नहीं किया गया, तो वही सुविधा हमारे परिवार की आत्मीयता को धीरे धीरे कम कर सकती है। इसलिए आज आवश्यकता स्मार्टफोन छोड़ने की नहीं है, बल्कि मोबाइल के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का है। तकनीक हमारे जीवन को आसान बनाए, लेकिन हमारे परिवार के बीच दरार न बन जाए, यही सबसे बड़ी चुनौती है। परिवार की सबसे बड़ी ताकत केवल साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना है, तभी परिवार मजबूत बनता है। लेकिन आज एक चिंता का विषय यह है कि हम एक दूसरे के साथ कम और अपने स्मार्टफोन के साथ अधिक समय बिताने लगे हैं। इसका प्रभाव बहुत सारे जगहों में मिलता है देखने को। पति पत्नी के रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है। एक समय था जब पति पत्नी दिन भर की व्यस्तता के बाद शाम में बैठकर अपने अनुभव साझा करते थे। घर की योजनाएं बनती थीं, बच्चों के भविष्य पर चर्चा होती थी और जीवन की छोटी बड़ी खुशियां बांटी जाती थीं। आज कई घरों में स्थिति बदल गई है। भोजन की मेज पर भी दोनों के हाथों में स्मार्टफोन होता है। बातचीत की जगह सोशल मीडिया ने ले ली है। धीरे धीरे संवाद कम होने लगता है,
छोटी छोटी गलतफहमियां जन्म लेने लगती।

कई बार लोग कहते हैं कि हमारे बीच कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन बात करना कम हो गया है। यही दूरी समय के साथ रिश्तों में खामोशी बन जाती है। यह छोटी सी बात पर ध्यान दीजिए, यदि कोई बच्चा अपने माँ बाप को हमेशा मोबाइल में व्यस्त देखता है, तो वह वही सीखता है कि स्मार्टफोन रिश्तों से अधिक महत्वपूर्ण है। बच्चे वही सीखते हैं जो वो देखते हैं, न कि केवल जो उन्हें सिखाया जाता है। बुजुर्गों का बढ़ता अकेलापन। मोबाइल का सबसे अधिक असर हमारे बुजुर्गों पर भी दिखाई देता है। माता पिता पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए संघर्ष करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं और जीवन के हर मोड़ पर उनका साथ देते हैं। लेकिन जब वहीं माता पिता वृद्धावस्था में पहुंचते हैं, तो उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता अपने बच्चों के समय और अपनापन की होती है। दुर्भाग्य से आज उनके घरों में बुजुर्ग अकेले पड़ते जा रहे हैं। बच्चे घर में होते हुए भी उनके पास बैठने का समय नहीं निकाल पाते। कई बुजुर्ग केवल इस आशा में बैठे रहते हैं कि कोई उनके पास आएगा, दो बातें करेगा, उनका हाल पूछेगा, लेकिन उनके सामने से लोग मोबाइल देखते हुए निकल जाते हैं। सोशल मीडिया और दिखावे की दुनिया। मोबाइल में बढ़ते उपयोग के साथ सोशल मीडिया का प्रभाव भी तेजी से बढ़ा है। आज हमारे अपने जीवन से अधिक दूसरों के जीवन को देखने के लिए लोग लगे रहते हैं। कौन कहाँ घूमने गया, किसने क्या खरीदा, किसने कौन सी तस्वीर डाली, इन बातों में कई घंटे निकल जाते हैं। धीरे धीरे तुलना की भावना बढ़ने लगती है। लोग अपनी वास्तविक खुशियों की बजाय दूसरों के जीवन में अपनी तुलना करने लगते हैं। इससे मानसिक तनाव, असंतोष और हीन भावना भी जन्म लेती है। याद रखिए, सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाला हर चेहरा खुश हो, यह आवश्यकता नहीं है। वास्तविक जीवन और मोबाइल की दुनिया में बहुत अंतर होता है। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार मोबाइल का उपयोग हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। देर रात तक मोबाइल देखने से नींद पूरी नहीं होती, सुबह उठने पर थकान महसूस होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो जाती है। आज अनेक लोग बिना किसी विशेष कारण के बेचैनी, चिड़चिड़ापन और तनाव महसूस करते हैं। इसका एक कारण स्मार्टफोन का अधिक उपयोग भी है। कुछ लोग तो हर 2-3 मिनट में अपना मोबाइल देखते रहते हैं। कहीं कोई संदेश आया तो कहीं किसी फोटो को पसंद किया गया, या धीरे धीरे ये आदत बढ़कर निर्भरता बन जाती है। क्या मोबाइल छोड़ देना चाहिए, यही समाधान है? नहीं, मोबाइल आज हमारे जीवन की आवश्यकता है। इससे शिक्षा, जानकारी, रोजगार के अवसर, दूर बैठे लोगों से जुड़ने का माध्यम भी मिलता है। समस्या मोबाइल नहीं, बल्कि उनका असंतुलित उपयोग है। हमें तकनीक का उपयोग करना है, लेकिन उसे हावी अपने जीवन में नहीं होने देना है। कुछ छोटे छोटे प्रयास हमारे परिवार को फिर से पहले जैसा आत्मीय बना सकता है। सबसे पहले दिन में कम से कम एक ऐसा समय निर्धारित करें जब पूरा परिवार स्मार्टफोन के साथ बैठे। भोजन करते समय स्मार्टफोन का उपयोग ना करें, यह समय केवल परिवार के लिए हो। दूसरा, प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा बच्चों के साथ बिताएं। उनसे केवल पढ़ाई की बातें ना करें, केवल उनके मित्रों, उनके सपनों, उनकी छोटी बड़ी खुशियों के बारे में भी पूछिए। तीसरा, सप्ताह में एक बार परिवार दिवस मनाया जा सकता है। उस दिन पूरा परिवार एक साथ बैठकर खेल खेलें, पुस्तक पढ़ें, सैर करें, या बिना किसी विशेष कारण के केवल बातें करें। चौथा, बच्चों के सामने स्वयं उदाहरण बनिए। यदि माता पिता हर समय मोबाइल पर रहेंगे तो बच्चों के संयम की अपेक्षा उनका उचित नहीं होगा। पांचवा, घर के बुजुर्गों के साथ प्रतिदिन कुछ समय अवश्य बिताएं, उनकी बातें सुनिए। उनके अनुभव किसी पुस्तक से कम नहीं है, बहुत मूल्यवान है। यदि परिवार में संवाद समाप्त हो जाए तो सबसे बड़ा घर भी छोटा लगने लगता है, लेकिन यदि परिवार में प्रेम बना रहे तो छोटा सा घर भी स्वर्ग लगता है। एक छोटी सी घटना। एक विद्यालय में बच्चों से पूछा गया कि 1 घंटा मोबाइल और 1 घंटा अपने माता पिता के साथ बिताने में किसे आप चुनोगे, तो अधिकांश बच्चों ने कहा कि मैं अपने माँ बाप को चुनना चाहता हूँ। यह उत्तर हमें सोचने को मजबूर कर देता है। बच्चों को महंगे मोबाइल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए माँ की गोद, पिता का साथ, दादी की कहानियाँ और

0: परिवार का प्यार। प्रिय श्रोताओं, जीवन में पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, खोई हुई वस्तु फिर से खरीदी जा सकती है, लेकिन परिवार के साथ बिताया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। स्मार्टफोन का उपयोग कीजिए, लेकिन जीवन की प्राथमिकताएं मत बदलिए। घर में बातें कीजिए, बच्चों के साथ हंसिए, बुजुर्गों के साथ बैठिए, अपने जीवन साथी को समय दीजिए। त्योहारों केवल तस्वीर लेने के लिए नहीं, बल्कि रिश्तों को जीने के लिए मनाइए। याद रखिए, स्मार्टफोन हमें दुनिया से जोड़ सकता है, लेकिन केवल परिवार ही हमें जीवन से जोड़ता है। और अंत में महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद इस विचार को याद करना चाहूँगी, जिस घर में प्रेम और विश्वास होता है, वही घर सच्चे अर्थों में सुखी होता है। आइए हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि तकनीक का उपयोग करेंगे, लेकिन अपने रिश्तों की कीमत पर नहीं। मोबाइल
1: अभी आप सुन रही थी अन्नपूर्णा कुमारी की वार्ता, विषय था स्मार्टफोन का बढ़ता प्रचलन एवं पारिवारिक दूरियां। बहनों, आज महान लेखक कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती है। आइए आज के दिन हम थोड़ी चर्चा करें नारी विमर्श के अग्रदूत मुंशी प्रेमचंद जी पर। हिंदी साहित्य में मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट कहा जाता है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो वे भारतीय समाज में नारी विमर्श के सबसे पहले और सबसे सशक्त आवाज भी थे। जिस समय समाज में स्त्री को सिर्फ घर की चारदीवारी तक सीमित माना जाता था, उस समय प्रेमचंद ने अपनी कहानियों और उपन्यासों के जरिए नारी की पीड़ा, संघर्ष और शक्ति को पूरी ईमानदारी से सामने रखा। प्रेमचंद का काल 19वीं से 20वीं सदी का शुरुआती दौर था। उस समय बाल विवाह, दहेज प्रथा, विधवा विवाह पर रोक आम थी। स्त्री को शिक्षा और संपत्ति के अधिकार नहीं थे। पति परमेश्वर की सोच हावी थी। इसी रूढ़िवादी समाज में प्रेमचंद ने कलम उठाई। प्रेमचंद ने नारी को एक जैसा नहीं दिखाया, उन्होंने उसे हर रूप में जिया। निर्मला में उन्होंने नारी को एक शोषित और पीड़ित नारी के रूप में दिखाया। सेवा सदन में सुमन एक ऐसी स्त्री है जिसे समाज वेश्या बनने पर मजबूर करता है, पर अंत में वही सेवा सदन खोलकर दूसरी पीड़ित स्त्रियों को सहारा देती है। धनिया प्रेमचंद की सबसे मजबूत पात्र है। गरीबी, जमींदारों का अत्याचार, पति हुरी की कमजोरी सब सहते हुए भी वह परिवार को संभालती है। वह रोती नहीं, लड़ती है। धनिया के शब्द, हम किसी से दबने वाली नहीं है। अमीना एक गरीब विधवा माँ है। ईद पर बेटे हामिद के लिए कुछ न खरीद पाने का दर्द और फिर हामिद का चिमटा लाकर माँ के हाथ चलने से बचाना, ये रिश्ता प्रेमचंद ने अमर कर दिया। आज 2026 में भी दहेज, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव खत्म नहीं हुआ है। प्रेमचंद 100 साल पहले जो सवाल उठा गए थे, वो आज भी हमारे सामने हैं। उन्होंने नारी को अबला नहीं माना, उन्होंने माना कि नारी ही समाज की रीढ़ है। अगर रीढ़ कमजोर होगी तो समाज गिर जाएगा। मुंशी प्रेमचंद नारीवादी नहीं थे, वे मानवतावादी थे, पर उनकी मानवता में नारी सबसे ऊपर थी। उन्होंने स्त्री को दया का पात्र नहीं, संघर्ष की प्रेरणा बताया। इस चर्चा के बाद हमारा ये कार्यक्रम घर आंगन अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी रांची से मुख्य प्रादेशिक समाचार।

तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR की अवधि बढ़ाने का संकेत दिया है। उन्होंने बताया कि श्रावणी मेला के कारण देवघर और संताल परगना में कई अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति होने की वजह से यह निर्णय लिया जा सकता है। सरायकेला खरसावा में आदित्यपुर स्थित ग्लोरिया इंजीनियरिंग कंपनी हादसे के शिकार मृत श्रमिक मुरली पात्रों के परिजनों को मुआवजा देने पर सहमति बन गई है। कंपनी प्रबंधन ने आश्रितों को 10,60,000 रुपए

0: और ग्रुप इंश्योरेंस की पूरी राशि देने का निर्णय लिया गया है। लोहरदगा में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और एक युवा व्यवसायी की हत्या के विरोध में चैंबर ऑफ कॉमर्स ने कल लोहरदगा बंद और चक्का जाम का आह्वान किया है। चैंबर ने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गांडकीदा गांव में अज्ञात तत्वों द्वारा एक दंपति की हत्या कर दी गई है। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस दोषियों की पहचान करने और उन्हें पकड़ने का प्रयास कर रही है। पलामू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए डाल्टनगंज रेलवे कॉलोनी से 3 अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। प्रशिक्षु डीएसपी मृत्युंजय गोप के नेतृत्व में हुई इस छापेमारी में आरोपियों के पास से 2 किलोग्राम 690 ग्राम अवैध अफीम बरामद की गई है। गढ़वा जिले में औसत से कम बारिश होने के कारण कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को धान के बजाय मोटे अनाज, दलहन और तिलहन की वैकल्पिक खेती करने की सलाह दी है। कृषि विज्ञान केंद्र के अनुसार अलनीनो के प्रभाव के चलते जिले में खरीफ सीजन की फसलें प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती बारी।

खेती बाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम किसान भाई बहनों को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। हमारे अधिकांश किसान भाई अभी व्यस्त हैं अपने अपने खेतों में। धान की बुआई जोर शोर से चल रही है और उसके साथ साथ मक्का तिल वगैरह की भी बुआई हो रही है, लेकिन मौसम जो है वो अपने हाथ में नहीं होता है श्रोताओं। मौसम कभी अनुकूल भी हो सकता है और कभी प्रतिकूल भी। किसानों के लिए हमेशा ये जोखिम बना रहता है, इसीलिए किसान भाइयों को हमेशा तैयार रहना चाहिए इस जोखिम से निपटने के लिए। यानी उन्हें अन्य व्यवसाय से जुड़ना चाहिए ताकि उनके जो विपरीत समय हो उससे वे उबर सके और उनका आय का स्रोत बना रहे। देखिए श्रोताओं, अभी बारिश का मौसम है और पोखर तालाब सभी अभी पानी से लगभग भर चुके हैं, तो ऐसे में चाहे तो हमारे किसान भाई मछली पालन शुरू कर सकते हैं। कम से कम साल के 6-7 महीने तक तो वो आसानी से मछली पालन कर सकते हैं, और यदि वे समन्वित मछली पालन करते हैं तो इसके एक नहीं कई फायदे उन्हें मिलेंगे। तो चलिए आज हम बातें करते हैं समन्वित मछली पालन के बारे में। तो श्रोताओं, हम बता दें कि समन्वित या एकीकृत मछली पालन एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें मछली पालन को खेती, पशुपालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बागवानी जैसी अन्य गतिविधियों के साथ जोड़ा जाता है। इससे एक ही खेत या परिसर में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग हो पाता है और जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। समन्वित मछली पालन का उद्देश्य है श्रोताओं कि किसानों की आय के अनेक स्रोत को तैयार करना, उपलब्ध भूमि, पानी और जैविक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, उत्पादन लागत में कमी लाना और साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को और खेती को टिकाऊ बनाना। तो समन्वित मछली पालन के जो मुख्य स्रोत हैं वो है मछली के साथ बत्तख पालन करना। तो हमारे किसान भाई चाहे मछली के साथ साथ बत्तख पालन करते हैं तो उन्हें एक नहीं कई फायदे मिलते हैं, और ऐसा हम सभी जानते हैं कि बत्तख जो है वो तालाब में तैरती हैं और इससे उनको मछलियों के लिए एक बहुत ही प्राकृतिक खाद मिल जाता है, यानी आहार मिल जाता है मछलियों के लिए, जिससे तालाब में प्राकृतिक भोजन में वृद्धि होती है। और ये भी हम जानते हैं श्रोताओं कि जिस तालाब में बत्तखें होती हैं और यदि उसमें मछली पालन की जाती

0: होती है तो दोनों को लाभ मिलता है। मछलियाँ जो हैं उन्हें तो प्राकृतिक आहार मिल जाता है और जब बत्तखें पानी में तैरती हैं तो इससे उन्हें अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है और जब अधिक मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त होता है तो उनके मछलियों के विकास में वृद्धि होती है और बत्तखों को भी आहार के रूप में मछली मिल जाता है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और इससे किसान भाइयों को भी लाभ होता है कि दोनों को बिक्री करके उन्हें अच्छा मुनाफा मिल जाता है। मछली के साथ साथ मुर्गी पालन भी की जाती है तो मुर्गी पालन करने के लिए बहुत ज़्यादा उन्हें लागत नहीं आती क्योंकि मुर्गी के लिए एक छोटा सा सेट बनाना पड़ता है तालाब के किनारे और मुर्गियों का जो अवशिष्ट है उसे तालाब में जो है जैसा कि अभी हमने बताया कि मछलियों के लिए ये उर्वरक का काम करता है और मछलियों के लिए भोजन तैयार करने में भी वो मदद करता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे कि बत्तख पालन लाभदायक है उसी प्रकार से मुर्गी पालन भी करना मुर्गी पालक मछली पालक के लिए उतना ही फायदेमंद है। मछली के साथ साथ सुकर पालन भी किए जाते हैं तो सुकरों के मल का उपयोग भी तालाब में प्राकृतिक खाद के रूप में किया जाता है और जिससे मछलियों की वृद्धि या विकास बोले भली भांति होती है अच्छी प्रकार से होती है और जिससे मछलियों यदि मछलियों का विकास अच्छा होता है तो उसे जल्दी ही बेचकर हमारे किसान भाई उससे अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। मछली के साथ साथ बागवानी तालाब के किनारों पर फलदार या सब्जियों की खेती की जाती है जिससे कि अतिरिक्त आय की प्राप्ति होती है। समन्वित मछली पालन के कई लाभ हैं जिससे कि किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। एक ही स्थान से कई प्रकार के उत्पाद प्राप्त होते हैं। रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम हो जाती है। संसाधनों का पूरा पूरा उपयोग हो पाता है। रोजगार के अवसर बढ़ जाते हैं और पर्यावरण संतुलन बना रहता है। एक सफल समन्वित मछली पालन के लिए कुछ आवश्यक शर्तें भी होती हैं जैसे कि जो किसान भाई तालाब का प्रयोग करते हैं उसका नियमित रूप से सफाई होती रहनी चाहिए और ध्यान देना चाहिए श्रोताओं कि जब तालाब की सफाई करते हैं तो उसमें चूने का प्रयोग जरूर करें जिससे कि पानी में जो भी संक्रमण रहता है वो सब दूर हो जाता है। मछलियों का चुनाव जब भी करते हैं तो अच्छी गुणवत्ता वाली मछलियों का चुनाव करें। पानी की गुणवत्ता समय समय पर जांच करते रहें और मछलियों को संतुलित आहार भी देते रहें। तो मछली पालन हर तरह से फ़ायदेमंद है हमारे किसान भाइयों के लिए और वे इसका लाभ ले सकते हैं। अभी समय है कि वो मछली पालन कर सकते हैं अपने खेतों में भी पोखर तालाब में तो ज़रूर करें किसान भाई और इसका लाभ लें। चलिए इसके बाद श्रोताओं हम आपको सुनवाते हैं एक वार्ता। प्राकृतिक खेती इस पर जानकारी देंगी सुषमा श्रीवास्तव। तो आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त पारंपरिक खेती पद्धति है जिसे कृषि पारिस्थितिकी आधारित विविध कृषि प्रणाली माना जाता है जो फसलों पेड़ों और पशुधन को कार्यात्मक जैव विविधता के साथ एकीकृत करता है। प्राकृतिक खेती ऐसी खेती होती है जिसमें फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ प्रकृति के दौरान निर्मित उर्वरक और अन्य पेड़ पौधों के पत्ते खाद पशुपालन गोबर खाद एवं जैव कीटनाशक उपयोग में लाया जाता है। यह एक प्रकार से विविध प्रकार की कृषि प्रणाली है। इसमें अन्य लाभों के अलावा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का शमन या निम्नीकरण प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत आधार प्रदान करती है। इससे टिकाऊ खेती को बल मिलता है। प्राकृतिक खेती को समझने के लिए हमें कि टिकाऊ खेती को भी समझना होगा। टिकाऊ कृषि पद्धतियों का लक्ष्य खेती के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण को कम करना है, साथ ही फसल और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना भी है। छोटे पैमाने के कृषक समुदायों के भीतर ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए टिकाऊ खेती की कई रणनीतियां हैं। इस दिशा में विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सतत कार्यक्रम मिशन NMSA तैयार किया गया है, जिसमें एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, संसाधन संरक्षण में तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वास्तव में टिकाऊ खेती को अपनाने का मतलब है कि आप बिना पर्यावरण यानी मिट्टी, हवा, पानी को प्रदूषित किए और बिना किसी भी प्राकृतिक संसाधन को समाप्त किए अपने कार्यों से पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बिना बाधित किए किसी विशिष्ट फसल में पर्याप्त उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाई टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाने से पहले यह जरूर जानना चाहेंगे कि टिकाऊ खेती या प्राकृतिक रूप से खेती करने के क्या लाभ हैं, और किसान भाइयों को जानना भी चाहिए। आज जब पूरे विश्व में पर्यावरण असंतुलन की समस्या बनी हुई है, एक चुनौती बनी हुई है, भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में टिकाऊ खेती अत्यंत ही लाभदायक है। पर्यावरण संरक्षण में योगदान। टिकाऊ खेती अगर किसान भाई अपनाते हैं तो उससे पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। पर्यावरण जीवन का संबल है और हमारी अनेक प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी से हमें स्वच्छ वायु, साफ पानी, हरे भरे जंगल, विविध पशु पक्षी और आधारभूत मिट्टी प्राप्त होती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को उसी अवस्था में अपनी आगामी पीढ़ियों को सौंप दें जिस अवस्था में यह हमारे पुरखों से मिली है। टिकाऊ खेती प्राकृतिक आधारित खेती होने के कारण पर्यावरण संरक्षण में हमारी पूरी सहायता करती है। प्रदूषण की रोकथाम। टिकाऊ कृषि के फायदे में एक बहुत बड़ी बात है कि इससे प्रदूषण की रोकथाम होती है। टिकाऊ खेती में प्रयुक्त होने वाली कृषि अवशेष अपनी उपयोगिता से हमें लाभान्वित करके अंतिम रूप से प्राकृतिक परिवेश में घुल मिल जाती है और पर्यावरण को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती। उदाहरण स्वरूप, इसमें प्रयुक्त होने वाली सड़ी गली गोबर की खाद, फसलों के अवशेष मिट्टी में मिलकर उसे किसी प्रकार से विषाक्त नहीं करती। टिकाऊ की कृषि अपनाने से लागत में भी कमी होती है। टिकाऊ खेती की विधियों में कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग कम से कम किया जाता है, इसलिए इससे खेती की लागत में कमी हो जाती है। इसके अंतर्गत कृत्रिम खाद, कृत्रिम कीटनाशियों एवं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता समाप्त हो जाती है, जिससे किसान के लाभ में बढ़ोतरी तो होती ही है, समूची मानवता लाभान्वित होती है। जैव विविधता में बढ़ोतरी। टिकाऊ खेती के अंतर्गत खेतों में अनेक वनस्पतियों एवं जीवधारियों को पलने बढ़ने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिससे कृषि परिवेश की जैव विविधता में बढ़ोतरी हो जाती है। साथ ही साथ पशुधन के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी होता है। टिकाऊ खेती की प्रक्रिया ऐसी है जिसके अंतर्गत खेती एवं पशुपालन को साथ साथ किया जाता है। ऐसे में

पशुधन की संख्या में बढ़ोतरी होती है। यही नहीं, टिकाऊ खेती, मत्स्य पालन, सुकर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, बत्तख पालन आदि को प्रोत्साहित करती है। जैसे गाय पालन से गोबर मिलता है, उसी प्रकार मुर्गी पालन से जो अवशिष्ट निकलता है वह मछलियों का भोजन बनता है। इस प्रकार एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करके लागत में कमी और पशुधन के लिए लाभकारी है। हरियाली में भी वृद्धि होती है टिकाऊ कृषि से। टिकाऊ खेती की प्रकृति के अंतर्गत बागवानी एवं कृषि वानिकी को अपनाने पर अत्यधिक जोर दिया गया है, जिससे परिवेश की कुल हरियाली में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और हो जाती भी है। इससे एक ओर किसान को लंबे समय तक लाभ तो होता ही रहता है, इसीलिए कि पेड़ जब लगते हैं तो उससे मिलने वाले लाभ किसान भाइयों को होते रहते हैं, जबकि पर्यावरण की भी सुहावना एवं संतुलित बना रहता है। किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी टिकाऊ खेती की पद्धति के अंतर्गत एक ओर किसानों की लागत में कमी होती है, तो दूसरी ओर खेती में वृक्षारोपण, पशुपालन आदि के परस्पर उपयोग का एक ऐसा चक्र विकसित हो जाता है जिससे व्यर्थ पदार्थों का निकास शून्य हो जाता है। इससे किसान का आर्थिक लाभ बढ़ जाता है। साथ ही इससे केवल तात्कालिक लाभ ही प्राप्त नहीं होता, वरन लंबे समय तक लाभ मिलता रहता है। टिकाऊ खेती को जब किसान भाई अपनाते हैं तो सामाजिक समानता में भी वृद्धि होती है। टिकाऊ खेती सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से किसान, श्रमिक समुदाय एवं परिवेश के मानवीय संबंधों पर आधारित है। इसके अंतर्गत सभी लाभ के बराबर भागीदार होते हैं, इसलिए इससे सामाजिक समानता व समरसता में वृद्धि होती है। किसान को जहां आर्थिक लाभ मिलता है, वहीं श्रमिक को निरंतर कार्य व मजदूरी की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। साथ ही साथ अक्षय स्रोतों में भी वृद्धि टिकाऊ कृषि के द्वारा होती है। टिकाऊ खेती एक ओर खेती के कृत्रिम संसाधनों से परहेज करती है, जबकि दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। इससे पर्यावरण में अक्षय स्रोतों की वृद्धि होने लगती है। उदाहरण स्वरूप रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद के स्रोतों में वृद्धि होती है। सुख, शांति और सौंदर्य के स्रोतों में भी वृद्धि टिकाऊ खेती के द्वारा होती है। टिकाऊ खेती से जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता एवं परस्पर निर्भरता का जो समग्र जीवन संतुलन निर्मित होता है, वह मानवीय परिवेश में सुख, शांति एवं सौंदर्य के स्रोतों में वृद्धि एवं अनुकूलता के दर्शन सुलभ कराता है। इससे कृषि क्षेत्र एवं परिवेश में जीवन की सार्थकता एवं अनुकूलता के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। इस प्रकार टिकाऊ खेती के अंतर्गत खेत खलिहान एवं फसलों, किसान व श्रमिकों से अत्यंत कोमल व्यवहार करते हैं और उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। टिकाऊ खेती पशुधन के लिए भी उपयोगी है एवं अनुकूल सिद्ध होती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अस्थाई कृषि या टिकाऊ खेती द्वारा खेती जनित सभी प्रकार की समस्याओं का स्वतः ही अंकुश लग जाता है और खेती प्रकृति का एक अवयव और अनुपम उपहार बन जाती है। टिकाऊ खेती के आधार पर विभिन्न फसलों का फसल प्रणाली में समावेश करने के प्रति इकाई लागत को कम किया जा सकता है। इससे विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न जैसे धान्य, दाल, तेल इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मृदा या मिट्टी स्वास्थ्य का संरक्षण होता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्राकृतिक खेती के जल संरक्षण और पारिस्थितिक संरक्षण पहलू, पानी की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन कृषि मूल्य श्रृंखला के विभिन्न चरणों में CO2 उत्सर्जन में कमी में योगदान करते हैं। इन फायदों को देखते हुए किसान

0: किसान भाइयों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे वार्ता प्राकृतिक खेती, वार्ताकार थी सुषमा श्रीवास्तव। चलिए श्रोता, अब हम बातें करेंगे बादाम और तिल के प्रबंधन के बारे में कि किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करके वे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है भूमि की, भूमि का चयन कैसे और तैयारी कैसे करें। तो श्रोताओं, सबसे पहले ध्यान देने योग्य बात है कि जहाँ भी आप भूमि का चुनाव करते हैं तो वहाँ अच्छी जल निकास वाली बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त होता है। तो ध्यान दें कि आप जब भी वहाँ पर इसकी खेती करने जा रहे हैं तो जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि बादाम और तिल में बहुत ज़्यादा सिंचाई की या पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ज़रूरी है कि जल निकास की व्यवस्था समय पर हो जाए। खेती की दो या तीन बार जुताई करें और मिट्टी को भुरभुरी कर लें। खेत में पानी का ठहराव ना हो, क्योंकि इससे पौधे में सड़न हो सकते हैं और इससे रोग भी लग सकते हैं। जब भी चुनाव करें इनके किस्मों का, तो प्रमाणित और रोग मुक्त बीज का ही चुनाव करें, और साथ ही साथ उन्नत जो इसके किस्म होते हैं उसका चयन करें। बीज उपचार के लिए फफूंदनाशी और फफूंदनाशी से बीजों का उपचार कर लें, और राइजोबियम कल्चर विधि भी जरूर अपनाएं, जिससे कि इससे उत्पादन में वृद्धि होगी और रोग वगैरह लगने की जो संभावना है वो भी कम हो जाती है। बीज जनित रोग नहीं होनी चाहिए, जिसमें आप जिस बीज का चुनाव करते हैं तो ध्यान रहे कि उसमें रोग जनित जो भी रोग हो नहीं होनी चाहिए। इसीलिए बीज का उपचार करना आवश्यक होता है, ताकि पौधे की बढ़वार अच्छी हो, उत्पादन अच्छी मिले। बुआई का समय भी जो है श्रोताओं, वो वर्षा शुरू होने के बाद नमी मिलने पर ही बुआई करें। यानी अभी जो है समय, अभी आप थोड़ा और रुक कर बुआई कर सकते हैं, क्योंकि अभी बारिश हो रही है और नमी बनी हुई है खेतों में। तो अभी थोड़ी आप जो है खरीफ फसल में जो अभी आप लगे हुए हैं धान व इसमें मक्का में, तो इसके बाद फिर आप लगेंगे बादाम में और तिल में, इसकी बुआई तब कर सकते हैं। मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों का प्रयोग करें। जब भी आप उर्वरक का प्रयोग करते हैं श्रोताओं, तो ध्यान रहे कि आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लें कि किस मात्रा में कितने समय में आपको उर्वरक डालनी हो। इसके लिए आप समय समय पर मिट्टी परीक्षण अवश्य कराते रहें। गोबर की सड़ी हुई खाद या कंपोस्ट खाद का प्रयोग अधिक से अधिक करें। संतुलित मात्रा में ही नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग करें, यदि आवश्यकता हो तब। सिंचाई का भी प्रबंधन जरूर होनी चाहिए। मान लीजिए कि बारिश नहीं हो रही हो तो ऐसे में सिंचाई करना आवश्यक हो जाता है, तो सिंचाई की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए। फूल आने पर और फल बनने की अवस्था में नमी बनाए रखना चाहिए पौधों में, इसलिए उस वक्त सिंचाई करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अधिक पानी न दें, अधिक पानी देने से जड़ों और फलियों दोनों को नुकसान हो सकता है। समय समय पर खरपतवार पर भी नियंत्रण करना आवश्यक होता है श्रोताओं। बुआई के 20 से 25 दिन के बाद निराई गुड़ाई, पहले जो निराई गुड़ाई है वो अवश्य कर लें, और आवश्यकता पड़ने पर दूसरी तीसरी निराई गुड़ाई भी आप कर सकते हैं। खेतों को खरपतवार मुक्त रखने के लिए जरूरी है, क्योंकि वे पोषक तत्वों से प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे कि उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए ध्यान रहे श्रोताओं कि समय रहते खरपतवारों पर नियंत्रण कर लें। कीट एवं रोगों का प्रबंधन करना भी उतना ही आवश्यक है, क्योंकि कीट या रोग यदि लग जाते हैं तो आपके सारे मेहनत पे पानी फिर जाता है और फिर उत्पादन में भारी कमी आ जाती है। तो आप अपने खेतों का निरीक्षण करते रहें, और पत्ती खाने वाले कीट, तना छेदक या फफूंद जनित रोग यदि दिखाई दे तो आप कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर उसका उचित नियंत्रण समय पर कर लें। फसल की कटाई तभी करें जब फलियां सूख जाएं और जब देख लें कि

दाने जो है वो सूख गए हैं, तभी उसका आप कटाई कर सकते हैं। और भंडारण भी करना हो तो ध्यान रहे कि सुखा कर ही उसका भंडारण करें, तो अधिक समय तक वो सुरक्षित रहता है। तो इस प्रकार हमारे किसान भाई यदि तिल और बादाम में अधिक से अधिक लाभ लेना चाहते हैं तो उन्हें उन्नत किस्मों पर समय पर सिंचाई, खरपतवार पर नियंत्रण करना होगा, कीट रोगों पर भी प्रबंधन करना होगा और साथ ही साथ संतुलित पोषण पर भी ध्यान देना होगा। इन तमाम बातों पर ध्यान देकर यदि हमारे किसान भाई उत्पादन लेते हैं बादाम तिल का, तो उन्हें अधिक मुनाफा मिल सकता है। तो चलिए श्रोताओं, इसके बाद हम आपको सुनवाते हैं एक लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे शारदा सिन्हा को, और शारदा सिन्हा के स्वर में गाए इसी लोकगीत के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त कार्यक्रम खेती बाड़ी से। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे खेतीबाड़ी, और नीचे प्रस्तुत है ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को सुनीता का नमस्कार। स्वागत है श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम में। श्रोताओं, ये बात सच है कि वर्षा ऋतु आती है तो हरियाली लेकर आती है, प्रकृति सज धज जाती है, चारों तरफ हरा भरा दिखाई देने लगता है और पूरा वातावरण कुल मिलाकर सुंदर दिखाई देने लगता है। वर्षा जहाँ एक ओर प्रकृति में सौंदर्य बिखेरती है, वहीं दूसरी ओर समस्याओं को भी जन्म देती है। जल जमाव की समस्या देखा जा सकता है, जहाँ जल जमाव होता है वहाँ गंदगी फैलती है और कई प्रकार की बीमारियों का भी आमंत्रण होता है। तो ज़रूरी है कि लोग सजग रहे इस मौसम में, खास करके पशुपालक, क्योंकि पशुपालन से उन्हें कई प्रकार के लाभ मिलते हैं और उन्हें सहयोग मिलता है उनसे। तो इसलिए ज़रूरी है कि उनका विशेष ध्यान रखें, खासकर इस मौसम में। तो सबसे ज़रूरी है कि जहाँ पशु रहते हैं, गौशाले की सर सफाई पर तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो आज हम बातें करेंगे गौशाला की सफाई और स्वच्छता की, क्योंकि स्वस्थ पशु ही अधिक उत्पादन दे सकते हैं और पशुपालक की आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि गौशाला ऐसी जगह होनी चाहिए श्रोताओं, जहाँ पे पर्याप्त धूप और ताज़ी हवा आती हो। धूप प्राकृतिक रूप से कई हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करती है और नमी को भी कम करती है। प्रतिदिन सुबह और शाम में गोबर तथा जो भी वहाँ पर यदि टाट वगैरह बिछाते हैं तो तुरंत उसे हटा देना चाहिए। ध्यान रहे कि गौशाले में कभी भी गंदे पानी का जमाव नहीं होनी चाहिए। फर्श जब भी बनाएं तो ढलान, एक तरफ से ढलान बनानी चाहिए, ताकि जो भी गंदे पानी हो उसका निकास होता रहे, या उनके जो भी मूत्र है, मलमूत्र है, वो आसानी से नीचे ढलते रहे। और समय समय पर पशुपालकों को वहाँ से गोबर मलमूत्र सफाई करते रहने चाहिए, और ध्यान दें कि वहाँ वो जो स्थान है पशुओं के रहने की, वो सूखी होनी चाहिए। पशुओं के चारा और पानी देने वाले बर्तन भी नित्य प्रतिदिन साफ करने चाहिए। तो गंदे बर्तनों में जीवाणु पनपते हैं और जिससे पशुओं को दस्त, अपच और अन्य रोग भी हो सकते हैं। तो पशुओं को हमेशा जब भी दें तो स्वच्छ और ताज़ा पानी दें, और ध्यान रहे कि पानी वाले बर्तन या जो चारे वाले बर्तन है उसे हमेशा साफ सुथरा करते रहें। सप्ताह में कम से कम एक बार गौशाले की अच्छी प्रकार से धुलाई अवश्य करनी चाहिए। समय समय पर फर्श और दीवारों पर चूना या उपयुक्त कीटाणुनाशक दवा का छिड़काव भी करते रहें। इससे रोग फैलाने वाले जो भी जीवाणु हैं उनकी संख्या जो है धीरे धीरे कम होते रहेंगी और इन पर रोकथाम होगा। मच्छर मक्खी जैसे परजीवियों पर भी नियंत्रण रखना आवश्यक होता है। गौशाला के आसपास झाड़ियाँ, कूड़ा, कचरा, रुका हुआ पानी नहीं होनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर पशु चिकित्सक की सलाह लेकर भी आप उनसे कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। जहाँ पे पशु रहते हैं आसपास में जल जमाव ना हो, और यदि हो तो दवा का छिड़काव जरूर करें, और कोशिश करें कि इन बातों का ध्यान दें, जैसे कूड़ा कचरा नहीं होनी चाहिए, झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। इन समय में काफ़ी मात्रा में कीट पतंगे का घर होता है वो। तो बरसात के मौसम में जो है सबसे ज़्यादा ध्यान देने की बात होती है कि गौशाले में नमी अधिक नहीं होनी चाहिए। जहाँ नमी होगी वहाँ खुरपका, मुँहपका, गला घोंटू और अन्य संक्रामक रोग होने की संभावना बढ़ सकती है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है श्रोताओं कि बरसात के मौसम में जो पशु हैं अधिकतर बीमार पड़ते हैं, और ये सब जो बीमार पड़ने की संभावना होती है वो बरसात के कारण ही होती है, जिसमें कि संक्रमण

0: फैल जाते हैं और खुरपका, मुंहपका, गला घोटू ये सब अधिकांश संक्रमण के कारण ही फैलता है। तो ध्यान रखें कि जहाँ पे पशु रहते हैं वो स्थान पूरी तरह से सूखी होनी चाहिए। यदि एक पशु बीमार पड़ते हैं तो उसे अन्य पशुओं से तुरंत अलग कर देना चाहिए, नहीं तो फिर पूरे पशु बीमार पड़ सकते हैं। और खाने के लिए उन्हें पौष्टिक आहार दें, हरा चारा जरूर शामिल करें, क्योंकि हरा चारा जो है उनके लिए बहुत ही पौष्टिक आहार होता है और इससे दूध देने की क्षमता भी बढ़ती है और साथ ही साथ वे हिस्ट पुष्ट बने रहते हैं। तो कोशिश करें कि उन्हें दिन में एक बार हरा चारा अवश्य दें और यदि आवश्यकता पड़े तो ऊपर से आप कैल्शियम या मिनरल्स भी दे सकते हैं। बहुत सारे जो पशु होते हैं, अधिकतर जो दूध देने वाले पशु होते हैं, उनके दूध देने के साथ उनमें के शरीर में जो कैल्शियम की मात्रा है वो कम हो जाती है। इसीलिए पशुपालक को ध्यान देना चाहिए कि ऐसे दूध देने वाले पशुओं को जो ऊपर से कैल्शियम, अगर आवश्यकता पड़े तो ऊपर से कैल्शियम की मात्रा दें और नहीं तो मिनरल्स जो होता है वो दवा दें, ताकि उनके शरीर में जो भी कमी हो खनिज लवण की उसकी पूर्ति होती रहे। साथ ही साथ किसान भाई या पशुपालक जो भी हैं उन्हें सबसे ज़रूरी बात है कि समय समय पर पशुओं में टीकाकरण करवाते रहना चाहिए। बहुत सारे रोग ऐसे हैं जिसका कोई निदान नहीं है, एकमात्र निदान है टीकाकरण। तो आप अपने पशुओं को समय पर टीकाकरण अवश्य करवाएं और पशुओं को बचाएं, तभी आप पशुओं से ढेर सारा लाभ ले पाएंगे। तो चलिए श्रोताओं, इस जानकारी के बाद अब हम आपको सुनवाते हैं एक भेंट वार्ता। एग्री स्टार्टअप, इस पर जानकारी देंगे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश और इनसे बातचीत करेंगे संतोष कुमार। तो आइए सुनते हैं ये भेंट वार्ता।
1: किसान भाई बहन, बालकों, बुजुर्गों को संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम किसान वाणी में। किसान भाइयों, कृषि के क्षेत्र में उत्तरोत्तर विकास के लिए आज बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा, जिससे हमारे कृषि फले फूले। और आज हम बातें करेंगे एग्री स्टार्टअप की, जिसपे ज्यादा बल दिया जा रहा है ताकि हमारी कृषि जो है उसमें बेहतर उत्पादन हो सके या फिर कृषि से जुड़े और भी जितने क्षेत्र हैं उसमें हम विकास कर सके। एग्री स्टार्टअप क्या है और इसका क्या महत्व है, इससे संबंधित विस्तृत जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे पलामू जिला के कृषि विज्ञान केंद्र चियांकी के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रमेश कुमार से। नमस्कार।
2: नमस्कार।
1: सर्वप्रथम तो ये बताया जाए कि एग्री स्टार्टअप क्या है।
2: एग्री स्टार्टअप बताने से पहले मैं किसानों को ये बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमारा भारतवर्ष, जिसे कि आधी आबादी का आमदनी का स्रोत जो है वो हमारा कृषि है, लेकिन कृषि में जो कार्य हो रहे हैं उसका प्रतिफल जो है उस अनुरूप नहीं मिल रहा है। किसान जो है खेती कर रहे हैं लेकिन परंपरागत तरीके से, जिसके वजह से जो है उत्पादन, उसका जो आपका गुणवत्ता, बीजों का चयन, मतलब कृषि से संबंधित जितने उनका लागत इनपुट जो लग रहा है उसका वो सही रूप से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। वजह इसके बहुत सारे हैं,
1: पूंजी लगा रहे हैं, पूंजी पूरा
2: नहीं मिल पा रहा,
1: वापस नहीं ले
2: पा रहे। तो ऐसे में अगर हम देखें तो हमारा भारतवर्ष तो अभी एग्री स्टार्टअप 2022 और इसके पहले भी बहुत सारे एग्री स्टार्टअप जो है विभिन्न कंपनियां, इसको एक कहिए कि डिजिटलाइजेशन खेती।
1: अच्छा अच्छा।
2: संक्षेप में बोला जाए तो ये समझिए कि जैसे हमारा कंप्यूटर है, वही कंप्यूटर एक माध्यम है, कंप्यूटर डिजिटलाइजेशन के माध्यम से हमको खेती को प्रोत्साहित करना है और लोगों को इसके प्रति सचेत करना है। जैसे कि विकसित देश है, विकसित देश में ये जो हम लोग जो एग्री स्टार्टअप की बात कर रहे हैं वो आज से बहुत वर्ष पहले से वहाँ लागू है, लेकिन हमारे यहाँ के किसान गरीबी कहें और अन्य सारे बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से जो है यहाँ पर अभी प्रचलन में नहीं आया है और लोग अब लेने के लिए आ रहे हैं। और देखा जाए कि जैसे हमारा वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो भारत का जो उत्पादन है, हमारे वैश्विक स्तर के उत्पादन में मात्र 11% ही अपना ये करता है, सपोर्ट करता है।
1: अच्छा।
2: अभी भी हम इसका यही वजह कहेंगे कि हम लोग अभी भी बहुत पिछड़े हों, जबकि इतनी आबादी, हमारी आधी आबादी जो है आमदनी का स्रोत में कृषि से ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जो अपना उत्पादन के क्षेत्र में देखें तो 11% बेसिक स्तर पर हम सपोर्ट कर रहे हैं। और इसको देखेंगे आपका कुपोषण के मामले में भी भारत का जो ग्राफ वो आपका अन्य देशों की तुलना में हमारा देश जो है सबसे आगे कुपोषण। तो इसको निदान पाने के लिए एग्री जो हमारा ये स्टार्टअप जो है एक बहुत बड़ा सहयोगी यंत्र के रूप में माना जाए तो कहना कोई गलत नहीं। अब एग्री स्टार्टअप है क्या? एग्री स्टार्टअप जो है डिजिटलाइजेशन खेती है और इस खेती में मुख्य रूप से हमारे बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट के सेक्टर एक डिजिटलाइजेशन यूनिट बनाकर किसानों को इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं और खुद इसमें इन्वॉल्व

अच्छा, जिससे कि हमारा कम क्षेत्र में रखवा और अच्छा उत्पादन मिले और गुणवत्तापूर्वक उत्पादन मिले। तो इस क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन के रूप में बहुत सारे हमारे स्टार्टअप काम कर रहे हैं, और स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा जो खेती है वो पूरी तरह से एकदम डिजिटलाइज हो। और डिजिटलाइज कहने का मतलब

0: मॉडल को आप अपने स्वेच्छानुसार, अब जिसका जैसा, मतलब कि अब हमारे यहाँ किसान जो हैं तीन कैटेगरी के हैं, छोटे हैं, मध्यम हैं, बड़े किसान हैं, तो जितना खेती का लाभ, जिसे बहुत सारी योजनाएं सरकार की चल रही है, तो योजनाओं का भी लाभ देखेंगे तो किसान जो है वही किसान ले पा रहे हैं जो कि मध्यम वर्ग के हैं और उच्च वर्ग के हैं,
1: निम्न वर्गीय
0: छूट जा रहे हैं। तो उस निम्न वर्गियों को भी प्रोत्साहित कर मध्यम और उच्च वर्ग में लाने की कोशिश करने का ही एक माध्यम जो है हमारा स्टार्टअप। तो स्टार्टअप में ये किया गया है कि स्टार्टअप के माध्यम से कृषि का, जैसे कि पैकेजिंग क्या होगा, पैकेज करने का मतलब हुआ कि आप जो खेती करने जा रहे हैं उसका पैकेज और प्रैक्टिसेस, उसको क्या क्या लाना है और किस समय में कौन सा ऑपरेशन आपको करना है, उसके प्रति लोगों को जागरूक करना है, और आप प्रौद्योगिकी जो नई नई आ रही है उसके प्रति किसानों को बताना है। उसके बाद हमारा अन्य तरह का, जैसे कि बहुत सारा डेवलपमेंट वैरायटीज में हो रहा है, डिफरेंट टाइप के क्रॉप में हो रहा है, तो उसके बड़ी किसानों को भली भांति समझाना है और किसानों को ये प्रेरित करना है कि जो नए तकनीक आ रहे हैं और इसका विस्तार भी अपने एरिया में अपने अनुसार करते जाएं। जैसे कि आने वाले समय में जो कुपोषण का जो मार हमारा देश झेल रहा है, उससे हम आगे निकलें, अपनी आर्थिक सुदृढ़ता के साथ साथ हमारे देश की आर्थिक विकास में भी सहयोग प्रदान करें, यही हमारा आपका एग्री स्टार्टअप का मुख्य उद्देश्य है। अब इसमें मार्केटिंग होती है। आज हुआ क्या है कि आज खेती में हम लोग अपने क्षेत्र में ही देखें तो किसान जो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इंडिविजुअली बेच रहे हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है। तो एग्री जो स्टार्टअप जो है, एक एक प्लेटफॉर्म है, और जैसे किसान का है कृषि मूल्य से संबंधित जितनी तरह की समस्याएं आ रही है, किसानों को उसके बारे में बताकर उसका समाधान एक प्लेटफॉर्म पर, एक स्पॉट पर ही कर देना है। इसी के लिए किसान को क्या करना होगा, एसएचजी के माध्यम से, फिर का एफपीओ है, फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, आप ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगर काम करते हैं तो सरकार भी आपको वहां पर आकर मदद करती है, बैंक भी आपको मदद करते हैं, एनजीओ मदद करती है, डिफरेंट सेक्टर के लोग आते हैं, स्टार्टअप आपको आके मदद करते हैं। लेकिन जहां इंडिविजुअली खेती होती है वहां पर लोगों को जरा दिक्कत होता है। तो ये डिजिटलाइजेशन खेती में आपको विशेष तौर पर यह ध्यान देना होगा कि आप अगर अपने उत्पाद का अच्छा मूल्य चाहते हैं, गुणवत्तापूर्ण बनाना चाहते हैं, तो स्टार्टअप के माध्यम से आप इसका लाभ लेकर आप ज्यादा से ज्यादा अपने उसी रकबे से कमाई करें, में अपनी सहयोग प्रदान करें। और इसके साथ मैं कहूंगा कि अभी आपका ये जो एग्री स्टार्टअप 2022, इसमें भी हमारे यहाँ बहुत सारे एग्री स्टार्टअप काम कर रहे हैं। एग्री स्टार्टअप का जो उद्देश्य जो है अलग अलग अपना लोग चिन्हित कर लिए हैं।
1: अच्छा।
0: चिन्हित करने का मतलब है कि कोई सेक्टर जो है हमारा आपको कृषि का मॉडल प्रौद्योगिकी के बारे में वर्क कर रहा है, कोई होता है कि ग्राउंड जीरो लेवल में, मतलब ग्राउंड लेवल में जाकर किसानों के साथ सहभागिता के साथ वो जो है आपका इनिशियल स्टेट से बीज बोने से लेकर उसका मार्केटिंग तक का खेती का पूरा प्रोसेस में उसके साथ संलग्न है। तीसरा है जैसे कि बहुत ज्यादा ऊंचे हम चले जाए तो हमारा जो एक्सपोर्ट का काम होता है, तो एक्सपोर्ट के में भी हमारा एग्री स्टार्टअप, ऐसे ऐसे एग्री स्टार्टअप है जो कि हमारे काम कर रहे हैं। क्रॉप इन जो हुआ वो हमारा विदेशी स्तर पर, मतलब कि बहुत देशीय स्तर पर जो है कृषि को विकास के लिए कार्य कर रहा है। इसमें जैसे कृषि से उत्पाद का सही मूल्य मिल सके, गुणवत्ता सही हो, और इसका जो है हमारा इसका प्रोड्यूस का अच्छा बिक्री दर मिल सके, कम इनपुट लगे, नया प्रौद्योगिकी का उपयोग किसान करे और ज्यादा से ज्यादा लाभ कम समय में कम रकबा पर ही कर सके।
1: जी, मतलब आयात निर्यात भी इसके साथ,
0: हाँ अलग अलग स्टार्टअप है। एग्री स्टार्टअप में बहुत सारे हैं, जैसे कि देहात के नाम से सुने होंगे, क्रॉपिन के नाम से सुने होंगे, एग्रो स्टार के नाम से सुने होंगे, एग्री स्टार, ये सब जो है हमारे यहाँ कार्यरत है। एवेनो है, ये भी जो है आपका कार्य कर रहा है। एवेनो जो है एकदम ग्राउंड लेवल से काम करता है, किसान के साथ मिलकर वो बीज के रुपाई से लेकर लास्ट मार्केटिंग तक वो किसानों के साथ रहता है और उसका प्रोड्यूस देकर, उससे उसका उत्पादन देकर लाभ कमवा कर उसके बाद वो आगे दूसरे किसानों को बढ़ता है, चाहे समूह की प्रयास हमेशा उनके साथ करते रहते।
1: जी, और कोई ऐसी विशेष बातें जो एग्री स्टार्टअप से छूट रही हैं?
0: मैं किसानों को यही कहना चाहूंगा कि डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में एक नया विकास है और इसमें किसानों को जो है नेटवर्क से जुड़ना पड़ेगा कि हमारे देश में क्या हो रहा है, विदेश स्तर पर क्या हो रहा है। आने वाले नए जनरेशन को एक नया इसमें रास्ता मिलेगा और रास्ता का अगर सही उपयोग करेंगे तो परंपरागत से हम आगे निकलकर नए खेती की ओर जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा अच्छे फसलों का चयन करके अपने क्षेत्र में कम रकबे पर भी अच्छा फसल लेकर, जैसे कि धान, हमारा क्षेत्र जो है ड्रॉट प्रोन एरिया है और उसमें अभी भी हम किसान का देखेंगे कि 80% क्या बोलिए 99% किसान जो है सभी लोग धान पर ही डिपेंडेंट है, काहे कि उनका एक तो स्टेपल फूड है, उसके बिना वो नहीं रह सकते। लेकिन ऐसा भी सोचा जा सकता है कि अगर ये चीज हमारे यहाँ नहीं हो रहा है तो दूसरे अगर फसल का हम चयन करके उसका अगर हम उपयोग करके खेती करते हैं और उसे लाभ कमाकर चावल भी तो खरीद सकते हैं, जलवायु सपोर्ट नहीं कर रहा है तो उसके अनुरूप क्यों नहीं चयन करें। तो इसको चयन करने के लिए आपको स्टार्टअप से जुड़ना होगा, इसके लिए जो डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में हमारे यंग जनरेशन को आना होगा आगे आने वाले समय

0: में इसका सही तरह से लाभ लेकर आगे की खेती की नई प्रणाली को और इसका जो पैकेज है इसको एडॉप्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाकर अपना जो है आर्थिक स्थिति में बदलाव करना होगा और देश के विकास में सहयोग देना होगा।
1: एक प्रश्न हम कार्यक्रम के अंत में कर लें आपसे, ये तो खेतीबाड़ी की बात हो गई
0: जी,
1: और कृषि का मतलब होता है खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन
0: जी जी,
1: तो उसमें इसका क्या?
0: हाँ, ये आपका कहना, देखिए हम पहले भी बोले कि ये जो स्टार्टअप है एग्रीकल्चर का मतलब सभी चीज आ जाता है, वो चाहे मुर्गी पालन हो, दुग्ध उत्पादन हो, मछली पालन हो, खेती हो, सुकर पालन हो, मशरूम उत्पादन हो, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी खेती जो हम लोग कहते हैं वो सभी चीज आ जाते हैं। तो स्टार्टअप एक नहीं है, अभी जो हम 3-4-5 स्टार्टअप का नाम लिए, सब अग्रणी स्टार्टअप के रूप में अभी काम कर रहे हैं और हमारे किसान को सहयोग कर रहे हैं। ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारा स्टार्टअप काम कर रहा है, तो दूध उत्पादन हो, ये सबका स्टार्टअप है। हर एक विंग जो है, एक डिजिटलाइजेशन के सेक्टर में जो हमारे सेक्टर में लोग जो उतरे हुए हैं, अपना अपना एक सब्जेक्ट चुन लिए हैं और उस क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं। वजह और ये है कि किसान अगर उनका सपोर्ट करें तो वो लोग आपको सपोर्ट करने को तैयार हैं और कोशिश करें कि उनसे हम जुड़ें। होता क्या है कि आप जो उत्पादन कर लेते हैं, सही उत्पादन का सही मूल्य नहीं मिल पाता है, तब मूल्य का समस्या जहाँ रहा है, तो स्टार्टअप आपको जब आपको उसको दरकिनार कर दे रहा है तब आपको तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 10 की जगह अगर आपको 15 का रेट दिला रहा है कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वो आपके सहयोग के लिए है और सहयोग को लाभ उठाने से ही आपका आगे विकास हो।
1: आप थे पलामू जिला कृषि विज्ञान केंद्र चिंया की के कृषि वैज्ञानिक उद्यान विभाग डॉक्टर रमेश कुमार। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और एग्री स्टार्टअप से संबंधित विस्तृत जानकारियां हमारे किसान भाइयों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता एग्री स्टार्टअप, इस पर जानकारी दे रहे थे कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर रमेश और इनसे बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और श्रोताओं अब हम बातें करेंगे बकरी पालन की। तो श्रोताओं हम सभी जानते हैं कि हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है जहाँ अधिकांश जनसंख्या खेती और पशुपालन पर निर्भर है। ऐसे में बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम लागत में शुरू किया जा सकता है और लाभ भी कमाया जा सकता है। इसीलिए तो बकरी को गरीबों का एटीएम या चलती फिरती बैंक कहा जाता है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर पशुपालक इसे बेचकर तुरंत नकदी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं का आपूर्ति कर सकते हैं। सबसे बड़ी जो बात है श्रोताओं बकरी पालन में वो ये है कि इसमें कम लागत की ज़रूरत पड़ती है और लाभ भी अधिक मिलती है। तो बकरी पालन के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। किसान अपने सीमित संसाधनों में 2-5 बकरियां से अपने व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर वो इस संख्या को बढ़ा सकते हैं, और जैसे जैसे संख्या बढ़ाते जाएंगे उनके जो मुनाफा है वो भी बढ़ते जाएगा। तो हमारे जो भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो बहुत सारे कम से कम साल के 3-4 महीने में वे बैठे होते हैं, या बहुत सारे किसान सीमांत किसान होते हैं, या फिर घर की महिलाएं भी होती हैं जो इस व्यवसाय से आसानी से जुड़ सकती है और अपने आय के स्रोत को बढ़ा सकती हैं। बकरियां जो हैं आसानी से पत्तियां घास वगैरह खाकर अपना पेट भर लेती हैं, यानी उनको खिलाने के लिए आहार के रूप में भी बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करनी पड़ती, वे चलते घुरते अपना पेट भर लेती हैं और इससे किसानों को कम लागत में ही उनका भरण पोषण हो जाता है। और इनका देखभाल करना भी अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान है, और क्योंकि बकरियां जो हैं वो खुद से चर लेती हैं तो इसे चराने के लिए भी बहुत ज़्यादा समय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और बकरियां जो होती हैं ना श्रोताओं वो काफ़ी मजबूत होती हैं, यानी कि वो उनमें रोग वगैरह लगने की संभावना भी बहुत कम होती है। बकरियों का पालन मुख्य रूप से मांस और दूध के लिए किया जाता है, और ये तो हम सभी जानते हैं कि बकरियों के जो दूध होती है वो काफ़ी महंगी बिकती है, क्योंकि बकरियों के दूध जो है वो काफ़ी गुणों से भरे होते हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पाई जाती है, इसीलिए उसकी जो मांग है बाज़ारों में हमेशा बनी रहती है। इसलिए हमारे जो पशुपालक हैं कि उन्हें उसकी मांगी कीमत मिल जाती है, और दूसरी बात कि वे बकरियों को बेचकर यानी मांस के लिए बकरियों की बिक्री होती है, खासकर

है, बकरियों का जो डिमांड है या उनकी मांग जो है बाज़ारों में ज़्यादा होती है और उन्हें उसकी मुँह मांगी कीमत भी मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमारे किसान भाई मांस के लिए भी और दूध के लिए, दोनों के लिए बकरियों का पालन करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि आप किस उद्देश्य से बकरी पालन कर रहे हैं। यदि वे मांस के लिए करते हैं तो उसका चुनाव उसी के अनुसार करें, और यदि दूध के लिए कर रहे हैं तो फिर उसका चुनाव उसी के अनुसार करें। और इतना ही नहीं श्रोताओं, यदि बकरी पालन करते हैं तो उससे उन्हें जो खाद मिलती है वो भी काफ़ी उपयुक्त होते हैं खेतों के लिए, और इससे खेतों की उर्वरा शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो इससे उनके खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में भी बकरियों का जो है बहुत बड़ा सहयोग होता है, और बहुत ही उत्तम उनका जो खाद होता है बहुत ही उत्तम किस्म का होता है। और इसके अलावा जो जैसा कि अभी हम कहें कि बकरियां जो हैं वो बीमार बहुत कम पड़ती हैं, तो ऐसे में किसान भाइयों को उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो बकरी पालन है हमारे देश में, खासकर हमारे पलामू में, एक बहुत ही सरल और हमारे कह सकते हैं कि बहुत ही कम खर्च में, बहुत ही कम मेहनत में हमारे किसान भाई बकरी पालन करते हैं, और इससे काफ़ी उन्हें मुनाफा भी मिलता है। तो इस प्रकार से बकरी पालन करना निश्चय ही एक बहुत ही फायदेमंद सौदा है। तो श्रोता, आप देखिए समय हो चला है कि हम आपसे ले इजाज़त कार्यक्रम ग्रामीण सभा से, लेकिन जाने से पहले एक नज़र डालेंगे आज के मौसम के मिजाज पे। तो श्रोता, आज डाल्टनगंज शहर का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान रहा 27 डिग्री सेल्सियस। और इसी जानकारी के साथ अब हमें दे इजाज़त कार्यक्रम ग्रामीण सभा से। नमस्कार।

घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।

0: प्रसार भारती, भारत का लोक सेवा प्रसारक।
1: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
2: भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में जिस सौर क्रांति का आगाज किया था, उसका असर अब दिखने लगा है। भारत में एक एक करके 30 लाख से अधिक परिवारों की छत पर सोलर पैनल लग चुके हैं। आप भी इस ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
5: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
6: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
5: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मंजूरी। जेपीएससी भर्ती गड़बड़ी पर दिल्ली से रांची तक सियासी घमासान। भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। जेएमएम ने लगाया राजनीति करने का आरोप। राज्य में बढ़ सकती है एसआईआर की अवधि। 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। राज्य के निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को शीर्ष अदालत से मिली जमानत। हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। और राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी। और अब समाचार विस्तार से।

0: केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 3,15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में सौर ऊर्जा के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और खेल विकास के लिए खेलो इंडिया योजना को भी विस्तार देने की स्वीकृति दी गई है।
1: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
0: झारखंड के भाजपा सांसदों ने आज संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने जेपीएससी पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की जेएमएम सरकार पर लगातार पेपर लीक होने का आरोप लगाया और कांग्रेस के दोहरे रुख की आलोचना की।
2: जब से इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड में बनी है, लगातार जो भी परीक्षाएं हो रही है उसमें अनियमितता हो रही है। जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये हम लोगों की मांग है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे और निश्चित रूप से राहुल गांधी जी जो विपक्ष के नेता है उनसे कहेंगे कि दोहरा चरित्र न अपनाए। झारखंड के बच्चों के लिए जो 5 दिन से युवा बिना खाए पिए वो रोड पे उतरे हुए हैं, वो अपनी मांग मांग रहे हैं, तो आप उनकी भी चर्चा सदन में उठाएं, उनके बारे में भी आप कहें।
0: इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने तत्कालीन अध्यक्ष का इस्तीफा ले लिया है और सीआईडी को जांच सौंप दी है। उन्होंने भाजपा पर इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर गंभीर है और कड़ी कार्रवाई कर रही है।
3: जब भाजपा का कार्यकाल था झारखंड में तो कितनी अनियमितताएं थी एजुकेशन को लेकर, हमारे मुख्यमंत्री जी आने के बाद से उसे धीरे धीरे वो दुरुस्त कर रहे हैं और उसी क्रम में जो उनके बनाए हुए सिस्टम थे, उनके लोग थे, उसी के बीच से इस तरह की अगर गड़बड़ी हुई है तो इसके लिए तुरंत उन्होंने वहाँ जो चेयरमैन है उनका रेजिग्नेशन लिया है, तुरंत सीआईडी जांच बैठा दिया गया है। ये भाजपा की पॉलिटिक्स है कि अपने गिरेबान में पहले झांके और फिर दूसरी जगह के लिए बात करें।
0: राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में अपने 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है। इस अवसर पर उन्होंने लोकभवन में कुलपतियों, शिक्षाविदों और गणमान्य अतिथियों से संवाद करते हुए राज्य की जनता के प्रति आभार प्रकट किया। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड की समृद्ध संस्कृति और परिश्रमी लोगों के बीच कार्य करना उनके सार्वजनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अनुभव रहा है। हजारीबाग केंद्रीय कारा में आज आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए मुर्गी पालन और सिलाई कटिंग प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ हुआ। उपायुक्त हेमंत सत्ती ने इसका उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार की समर्पण नीति का उद्देश्य इन कैदियों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्यधारा से जोड़ना है। आकाशवाणी के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताज़ा समाचार @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
4: जहां जुनून मिलेगा इतिहास से, वहां लिखा जाएगा एक नया अध्याय। बिरसा मुंडा की धरती पर अब रचा जाएगा इतिहास।
5: माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पहली बार झारखंड की राजधानी रांची बनने जा रही है एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 की मेजबान।
4: 26 जुलाई से 16 अगस्त तक मोराबादी स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम बनेगा फुटबॉल का नया रण क्षेत्र। जमशेदपुर FC सहित देश की दिग्गज क्लब टीमें और विदेशी टीमें मैदान में उतरेंगी। लीग मुकाबलों के साथ होगा एक रोमांचक क्वार्टर फाइनल भी।
5: गोल, गौरव और झारखंड की मेजबानी,
4: तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर आइए और बनिए हिस्सा इस ऐतिहासिक सफर का।
5: मैच का आनंद लेने के लिए 22 जुलाई से 16 अगस्त के बीच टिकट काउंटर से अपना फ्री टिकट लेना ना भूले। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
1: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
0: श्रावणी मेला में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्मिक का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 5 अगस्त से शुरू हो रही दावा आपत्ति प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को पारदर्शी सत्यापन के निर्देश दिए हैं। देवघर और संताल परगना में श्रावणी मेला के कारण उन्होंने राज्य में SIR की अवधि बढ़ाने का संकेत दिया है, जिसका प्रस्ताव 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग को भेजा जाएगा।
3: तो एनुमरेशन फेम में पूरा झारखंड इलेक्शन मिशनरी अपने समय का निर्धारित समय के अंतर्गत पूरा कर लिया। वर्तमान में भी सावन का मासन का लेकर देवघर दुमका में थोड़ा सा आपका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए हम लोग समय बढ़ाने के लिए मांग रखेंगे। वो अभी अनामलिस का भी डेटा आ जाती है, फिर उसी हिसाब से एक आंकड़ा हो जाती है कितना समय एक्सटेंशन करना है। इसे उसके बाद कमीशन के साथ में हम लोग प्रस्ताव भेजेंगे। मेरे हिसाब से एक्सटेंशन हो सकता है, कारण एक्सटेंशन भी आवश्यकता भी पड़ेगी।
2: निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने हजारीबाग वन भूमि से जुड़े घोटाला मामले में उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले झारखंड हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। कोडरमा स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 के तहत राज्य का पहला ODF प्लस जिला बनने जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक रंजिता हेम्ब्रम ने कोडरमा में समीक्षा बैठक के बाद बताया कि जिले ने 71% लक्ष्य हासिल कर लिया है और अगस्त महीने तक शेष कार्य पूरे कर इसे मॉडल जिला घोषित किया जाएगा।
4: अभी इनका 71% है, तो इसको हम चाह रहे हैं कि इस महीने 100% ये कर पाए। तो अभी जो हमारा 16th वित्त आयोग के जो राशि जो पंचायती राज के द्वारा दिया जाएगा, हम चाह रहे हैं कि दिसंबर 26 ये फेज 2 का अंतिम समय है, तो हम इसी 4 महीने में जितनी भी छोटी छोटी कमी रह गई है उन सबको पूरा कर रहे हैं।
2: और अब मौसम का हाल। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में राज्य के कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम केंद्र के अनुसार संताल परगना और कोल्हान संभाग में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में आज दिन भर बादल छाए रहे और कुछ क्षेत्रों में हल्की बौछारें पड़ी। गिरिडीह में आज 3 दिवसीय जिला बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। टूर्नामेंट में 250 से अधिक बालक और बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इंडोर बैडमिंटन स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के खेल मंत्री सुदिव्य कुमार ने किया। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह कृतसंकल्पित है।
5: ये टूर्नामेंट का आज शुभारंभ हुआ। जिले के शहर के छोटे बच्चे जो लगातार यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको अपनी प्रतिभा को निखारने का और एक्सपोजर का एक मौका मिलेगा। ये प्रतियोगिता नए खिलाड़ियों को ट्रेन करने का एक बड़ा अच्छा अवसर होगा, आने वाले समय के लिए अच्छे खिलाड़ी तैयार होने का रास्ता मिलेगा।
2: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम किसान योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का लिया निर्णय। प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना और खेलो इंडिया योजना के विस्तार को भी मंजूरी। JPSC भर्ती गड़बड़ी पर दिल्ली से रांची तक सियासी घमासान, भाजपा सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। JMM ने लगाया राजनीति करने का आरोप। राज्य में बढ़ सकती है SIR की अवधि। 5 अगस्त को ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजेंगे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी। राज्य के निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे को शीर्ष अदालत से मिली जमानत, हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती। और राज्य के कई जिलों में अगले 24 घंटों में वज्रपात के साथ भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने नागरिकों को सतर्क

0: रहने की सलाह दी। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: प्रस्तुत है जिले में आजकल।

0: इस अंक में आप सुनेंगे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे जामताड़ा संवाददाता।
1: जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड अंतर्गत डाडर मौजा एवं आसपास के काजू की खेती से जुड़े किसानों के अच्छे दिन आने वाले हैं। उपायुक्त आलोक कुमार ने शनिवार को 95 एकड़ भूमि पर फैले काजू बगान का निरीक्षण किया और वार्षिक पैदावार का आकलन कर काजू प्रसंस्करण इकाई अधिष्ठापित करने की दिशा में पहल करने की बात कही।
2: पहले अगर मान लीजिए एक एकड़ में आप प्लांटेशन हो रहा है तो उसमें किसानों को कितना पैसा मिल रहा है, तो हम लोग और किसानों को इंकरेज कर सकते हैं। साथ साथ हम लोग पैरेलली ये भी स्टार्ट करने जा रहे हैं कि काजू प्रोसेसिंग प्लांट के लिए जो भी प्रपोजल है हम लोग बनवाएंगे और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा भी संज्ञान लिया गया है, तो हम लोग वो प्रपोजल बना के विभाग को भेजेंगे और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम लोग एक पहल यहां पे कर पाए, यहां के लोगों को उससे रोजगार भी मिलेगा।
1: मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के दौरान इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइजेशन एवं बेहतर कार्य करने वाले जामताड़ा के 7 बीएलओ एवं 4 सुपरवाइजरों को एसडीएम अनंत कुमार ने कप एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। एसडीएम ने कहा कि
3: नौ जामताड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में गणना चरण के दौरान जिन बीएलओ के द्वारा 100% डिजिटाइजेशन का कार्य किया गया है और साथ में जो सुपरवाइजर जिनका अच्छा परफॉर्मेंस है, बैलेंस परफॉर्मेंस है, उन सभी को एक मोटिवेशन के रूप में कप और सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन दिया गया है ताकि इनको देख करके और भी बीएलओ मोटिवेट हों।
1: जिला विधिक सेवा प्राधिकार की पहल पर व्यवहार न्यायालय सभागार में जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशासनिक एवं न्यायिक पदाधिकारियों ने बच्चों के अधिकारों, पॉक्सो अधिनियम सहित अन्य कानूनी पहलुओं की विस्तृत जानकारियां उपस्थित पुलिस एवं संबंधित अधिकारियों को दी। इस क्रम में कुटुम्ब न्यायालय के न्यायाधीश राजेश कुमार ने कहा कि
4: जो कानून बनाया गया उसे हम पॉक्सो एक्ट के अंदर देखते हैं, वहीं दूसरा है बच्चों द्वारा अगर कोई अपराध किया गया हो या ऐसे बच्चे जो समाज में उपेक्षित हैं, उन बच्चों को रिहैबिलिटेट करने का, उन बच्चों के साथ समाज, सरकार, हमारा सिस्टम, हमारा प्रशासन, हमारे कोर्ट्स कैसे बिहेव करेंगी उनको रेगुलेट करता है वो है जजे एक्ट। जितने भी तरह के परेशानियां हैं, चाहे बच्चों के द्वारा किए गए अपराध को लेकर हो या बच्चों के विरुद्ध किए गए अपराध को लेकर, इन दोनों को सेंसिटाइज करने के लिए यह कार्यशाला का आयोजन किया गया है।
1: जामताड़ा जिला के आम नागरिकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए सभी प्रखंड कार्यालय परिसरों में चरणबद्ध ड्राइविंग लाइसेंस शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिला परिवहन पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि
5: इसमें जो आवश्यक दस्तावेज है, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, आधार नंबर, आधार और मोबाइल नंबर, सभी दस्तावेजों को लेकर के वो नजदीकी सीएससी या प्रज्ञा केंद्र में आवेदन करेंगे। आवेदन करने के उपरांत को वो ऑनलाइन फी पेमेंट करके स्लॉट बुक करेंगे और स्लॉट बुक करने के बाद सारे दस्तावेजों के साथ यहाँ इस कैंप में टेस्ट के लिए आएंगे। यहाँ पे अग्रेतर कार्रवाई करते हुए उनको लर्निंग लाइसेंस दिया जाएगा।
1: जामताड़ा जिला के सभी मंदिरों एवं देव स्थलों में गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह से ही पूजा आराधना करने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा।
0: अभी आप सुन रहे थे जामताड़ा जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक।

श्रोता हूँ आज सुरों के जादूगर गायकी के बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की पुण्य स्मृति है और आज उन्हीं को याद करते हुए उनको श्रद्धांजलि स्वरूप हम पेश कर रहे हैं कुछ फिल्मी गाने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आइए सुने कुछ और गाने।

भारतीय सिनेमा के सबसे महान पार्श्व गायकों में एक थे मोहम्मद रफ़ी। उनकी आवाज़ की मिठास, भावपूर्ण गायकी और बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें अमर बना दिया। उन्होंने लगभग 7,000 से अधिक गीत गाए, जिसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी, बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु सहित अनेक भाषाएं शामिल थीं। उनकी आवाज़ हर तरह के गीतों में समान रूप से प्रभावशाली थी। भजन, गज़ल, कव्वाली, देशभक्ति, रोमांटिक, शास्त्रीय और हास्य गीत। मोहम्मद रफ़ी ने दिलीप कुमार, देवानंद, शमी कपूर, राजेंद्र कुमार और राजेश खन्ना जैसे अनेक सितारों के लिए अपनी आवाज़ दी। उन्हें 1967 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और उन्होंने कई बार फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। वे अपनी सादगी, विनम्रता और उदार स्वभाव के लिए प्रसिद्ध थे। कई बार उन्होंने नए संगीतकारों के लिए बहुत कम या बिना पारिश्रमिक के भी गीत गाए। आज 31 जुलाई उनकी पुण्य स्मृति है और आज के दिन हम सभी करोड़ों संगीत प्रेमी श्रोता याद कर रहे हैं महान गायक कलाकार मोहम्मद रफ़ी।

आवाज़ तो एक बहाना थी, असल में वो दुआ गाती थी। दर्द में मरहम, खुशी में साथ, हर लम्हे को सुरों से सजाते थी। रफ़ी साहब आप चले गए, पर आपकी आवाज़ आज भी हमारे साथ हैं। जब कोई टूटता है तो क्या हुआ तेरा वादा सुन लेता है, जब कोई प्यार करता है तो चौदहवीं का चांद गुनगुना लेता है। आप शरीर से नहीं सुरों में जिंदा हैं, शत शत नमन सुरों के जादूगर को। खामोश हो गए सुरों के बादशाह, पर गूंज आज भी दिलों में है। रफ़ी नाम ही काफ़ी है जिसकी आवाज़ में खुदा की महफिल है। आज 31 जुलाई है, इसी दिन 1980 में हमने मोहम्मद रफ़ी साहब को खो दिया। वो सिर्फ गायक नहीं थे, वो एक दौर थे। उन्होंने 7000 से ज़्यादा गानों में हर इमोशन को ज़िंदा कर दिया। रफ़ी साहब ने हमें सिखाया कि गाना सिर्फ सुर नहीं होता, वो इबादत होती है। उनकी इंसानियत, उनकी मेहनत और उनकी आवाज़ तीनों अमर हैं। तुम्हें याद न कर पाए ऐसी कोई शाम नहीं होती, तुम्हारे गाने न सुने ऐसा कोई काम नहीं होता। कोटि कोटि नमन सुर सम्राट को।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक रंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड के 103 मेगाहर्ट्ज पर प्रस्तुत है कार्यक्रम उड़ान, जिसमें हम करते हैं रोजगार से जुड़ी बातें। संकलन और वाचन स्वर है मीनाक्षी कर्ण का।
1: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम उड़ान में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम में हम आपसे बातें करते हैं रोजगार से जुड़ी हुई, और आज के इस अंक में हम लेकर आए हैं जैव प्रौद्योगिकी में रोजगार के अवसर। तो श्रोताओं, सबसे पहले तो हम बातें करते हैं कि जैव प्रौद्योगिकी है क्या। तो जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की एक ऐसी अंतः विषयक शाखा है जो आज के युवाओं के बीच में बहुत तेजी के साथ लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि वो युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर प्रदान कर रही है। अंग्रेजी में इसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है, और इस नाम से प्रसिद्ध विज्ञान की नए और आधुनिक सीमाओं का पता लगाने वाले इस विषय का विस्तार औद्योगिक क्षेत्रों जैसे भोजन, कपड़ा, दवा, कृषि, पशुपालन से लेकर जीवन के कई अन्य क्षेत्रों तक फैला हुआ है। जैव प्रौद्योगिकी में जीव विज्ञान के अलावा विविध तरह के विषय शामिल हैं जो इसे अंतःविषयक बनाते हैं।

हैं। यह तकनीकी और इंजीनियरिंग अनुप्रयोगों के साथ साथ जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न नए क्षेत्रों को जन्म दे रहा है, जिसमें रोजगार के अनेकों अवसर हैं। श्रोताओं, जैसा कि नाम से पता चलता है, जैव प्रौद्योगिकी जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक संयोजन विज्ञान है। इसमें मानव जाति के लिए उत्पादों को उपयोगी बनाने के लिए जैविक घटकों का उपयोग किया जाता है। ये वह तकनीक है श्रोताओं, जो किसी विशिष्ट उपयोग के लिए उत्पाद के उत्पादन की जैविक प्रणालियों का उपयोग करती है। अपने अनुप्रयोगों के आधार पर जैव प्रौद्योगिकी बायो इंजीनियरिंग जैसे अन्य क्षेत्रों से भी ज़्यादा अधिक उपयोगी होती है। जैव प्रौद्योगिकी का विस्तार विविध विज्ञानों जैसे इम्यूनोलॉजी, वायरोलॉजी या फिर अन्य विषयों जैसे कि स्वास्थ्य, कृषि, कोशिका जीव विज्ञान, पादप फिजियोलॉजी, बीज प्रौद्योगिकी, इन सब से हुआ है। एक करियर के विकल्प के रूप में आज जैव प्रौद्योगिकी रोजगार से भरपूर क्षेत्र बन चुका है, क्योंकि श्रोताओं, आज हम ऐसे रोमांचक समय में रहते हैं जहां हर दिन बाजार में तरह तरह की खोजें, नए अनुप्रयोग और नए उत्पाद आते रहते हैं। ऐसे कई संगठन भी हैं जो जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और उन लोगों के लिए संसाधन के रूप में काम करते हैं। नए टिकाऊ खाद्य स्रोतों को खोजने के लिए जैव प्रौद्योगिकी विद निरंतर सक्रिय रहते हैं और वे औद्योगिक क्षेत्र, पर्यावरण क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, खाद्य निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल और फार्मास्यूटिकल्स जैसे विभिन्न क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। यदि किसी विद्यार्थी ने 12वीं कक्षा में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिकी और गणित के साथ पढ़ाई की है तो वह स्नातक स्तर पर जैव प्रौद्योगिकी को अपनी विशेषज्ञता के रूप में ले सकता है। जैव प्रौद्योगिकी में ये स्नातक कार्यक्रम BSc, BE और BTEC हो सकता है। BSc कार्यक्रम 3 वर्ष का होता है, जबकि BE और BTEC कार्यक्रम 4 वर्षों के होते हैं। उच्च शिक्षा के इच्छुक विद्यार्थी स्नातक के बाद बायोटेक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी कर सकते हैं और वे जैव प्रौद्योगिकी में MSc, ME, MTEC की डिग्री हासिल कर सकते हैं। अनुसंधान और विकास में रुचि रखने वाले विद्यार्थी जैव प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों में PhD की डिग्री हासिल करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। प्रारंभिक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजिस्ट या बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक डिग्री वाले उम्मीदवार शोध टेक्नीशियन के रूप में काम कर सकते हैं। वे प्रमुख अनुसंधान वैज्ञानिकों को प्रयोग करने और निगरानी करने में मदद करते हैं और डेटा रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। स्नातकोत्तर डिग्री वाले शोध परियोजनाओं और टीम के नेतृत्व के रूप में काम करने की उम्मीद कर सकते हैं। डॉक्टरेट या फिर पोस्ट डॉक्टरेट स्तर पर उम्मीदवार शोध वैज्ञानिक, प्रयोगशाला निदेशक या फिर विश्वविद्यालय में व्याख्याता के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। श्रोताओं, एक प्रशिक्षित बायोटेक्नोलॉजिस्ट जिस क्षेत्र में काम कर सकता है वह बहुत बड़ा है। जैव प्रौद्योगिकी में कई विषय शामिल होते हैं, इसलिए विभिन्न उद्योगों में विशेषज्ञों की बहुत मांग है। स्वास्थ्य, औषधि, फार्मास्यूटिकल, कृषि, पशुपालन, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, पर्यावरण संरक्षण, मृदा जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी, वस्त्र उद्योग, प्रसाधन सामग्री, इन सभी क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। इसके अलावा यदि कोई विद्यार्थी जैव प्रौद्योगिकी की जानकारी के साथ साथ तकनीकी का ज्ञान रखता है या इससे जुड़े किसी भी प्रकार का पाठ्यक्रम करता है
तो उसके लिए

अन्य क्षेत्रों में भी अवसर उपलब्ध होते हैं। इस क्षेत्र में नए स्नातक 8,000 रुपये से 20,000 रुपये के बीच मासिक वेतन की उम्मीद कर सकते हैं। वहीं पे यदि कोई व्यक्ति इसमें उच्च शिक्षण प्राप्त करता है और PhD जैसी कोई डिग्री हासिल करता है तो उसका वेतन 1.5 लाख से 5 लाख रुपये तक या फिर उससे भी अधिक उसकी आमदनी या उसका वेतन निर्धारित किया जा सकता है। ये नौकरी के अवसरों की विस्तृत श्रृंखला और पेशेवर विकास के लिए महत्वपूर्ण गुंजाइश प्रदान कर सकता है। आज के तेजी से आगे बढ़ते तकनीकी परिदृश्य में तरह तरह के कौशल विकसित करने और उन्हें निखारने पर जहां जोर दिया जा रहा है, तो उसी संदर्भ में, उसी सिलसिले में बायोटेक्नोलॉजी में BTech कार्यक्रम कई तरह के लाभ और करियर के अवसर प्रदान करता है। इसमें विशाल जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र का अंतः विषय ज्ञान शामिल है। ये जीव विज्ञान और प्रौद्योगिकी को जोड़ता है और ये दोनों क्षेत्रों में एक मजबूत आधार है और स्नातकों को अधिक करियर तलाशने के लिए एक अभिनव और बहुमुखी तरीका देता है। इस पाठ्यक्रम की बहुत मांग है क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और इसमें रोजगार के अवसर भी बहुत उपलब्ध हैं। जैव प्रौद्योगिकी एक वैश्विक उद्योग है जो पूरे देश और दुनिया भर में विभिन्न तरह के कार्य करने का अवसर प्रदान करता है। ये स्नातकों को न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी विशेषज्ञों के साथ सहयोग करने का अवसर प्रदान करता है। यानी बायोटेक्नोलॉजी अनुसंधान और विकास से भरपूर है जो ऐसे शिक्षार्थी के लिए, ऐसे विद्यार्थी के लिए अच्छा हो सकता है जो अधिक शोध करना चाहते हैं या पसंद करते हैं। प्रौद्योगिकी की मदद से मानव शरीर, जीवों और कई अन्य चीज़ों के बारे में गहरे, रहस्यमय और अनजाने तथ्य को जानना चाहते हैं, तो बायोटेक्नोलॉजी उन्हें इसका अवसर प्रदान करता है और साथ ही साथ नई तकनीकों, उपचारों, दवाओं को विकसित करने के लिए आधुनिक शोध के अवसर भी प्रदान करता है। अगर कोई विद्यार्थी बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक है तो स्नातक स्वास्थ्य सेवा, फार्मास्यूटिकल अनुसंधान, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि उद्योग में रोजगार के अवसर उन्हें उपलब्ध होते हैं। जैव प्रौद्योगिकी नवाचार से भरा हुआ है। बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कुछ नया आविष्कार भी करते हैं। ये प्रौद्योगिकी नवाचार और कृषि, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरणीय स्थिरता, इन जैसे विभिन्न उद्योगों में योगदान देने वाले वैज्ञानिकों में सबसे आगे हैं। इसमें तरह तरह के करियर अवसर हैं। स्नातक पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी विद बना जा सकता है और ये पर्यावरण जैव प्रौद्योगिकी विद जो हैं वो पर्यावरणीय स्थिरता और संरक्षण प्रथाओं से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जैव सूचना विज्ञान विश्लेषक के रूप में कार्य किया जा सकता है। इनका काम जैविक डेटा का विश्लेषण करने, दवाओं और जैविक डेटा की खोज करने के लिए तरह तरह के कंप्यूटेशनल तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट की अपनी अलग भूमिका है। ये नए उपचारों, दवाओं के विकास में, अनुसंधान विकास में, फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी में तरह तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। खाद्य और पेय उद्योग में भी बायोटेक्नोलॉजी से जो स्नातक हैं वो खाद्य सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण और आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों के विकास पर भी काम कर सकते हैं। एक स्नातक इसी क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने के बाद प्रोफेसर या शोधकर्ता भी बन सकता है। इसके अलावा विनियामक मामलों के विशेषज्ञ के रूप में भी विद्यार्थी का

कर सकते हैं, साथ ही जो इसके स्नातक हैं वो विपणक भी बन सकते हैं और जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों और सेवाओं की बिक्री को बढ़ावा दे सकते हैं। करियर के अवसर जो हैं वो विशेषज्ञता, रुचियों, बायोटेक उद्योग की स्थिति के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। असफलता के बाद निरंतर प्रयास सफलता लाते हैं और दुनिया में सबसे आशाजनक कार्यस्थलों को जन्म देते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र जो है वो आज के युवा दिमागों की पसंद है। ये अनुशासन के साथ साथ स्नातकों के लिए उज्जवल भविष्य भी सुनिश्चित करता है, क्योंकि इसका पाठ्यक्रम बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। जैव प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में इस उद्योग में सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है और ये मानव कल्याण में योगदान करने का अवसर भी प्रदान करता है। बायोटेक्नोलॉजी में स्नातक महामारी विज्ञानी, बायोमेडिकल इंजीनियर, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और बायोलॉजिकल तकनीशियन बन सकते हैं, साथ ही मेडिकल साइंटिस्ट बनने के लिए कई पदों पर जा सकते हैं। कोरोना महामारी के बाद इस उद्योग में नौकरियों की बहुत अधिक संभावनाएं बढ़ गई हैं और पेशेवर बायोटेक्नोलॉजिस्ट की ऊंची मांग देखी जा रही है। तो श्रोताओं, आज का जो हमारा अंक था वो जैव प्रौद्योगिकी में रोजगार के अवसर पर आधारित था और आज बस यहीं तक, और इसके बाद अगले अंक तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

मामले की कथित चोरी के मामले को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की बैठक एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संबंधी कानून में संशोधन करने के प्रावधान वाले विधेयक को बिना चर्चा के पारित कर दिया। सदन की बैठक शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के विषय को लेकर आसन के निकट पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों से अपने स्थान पर जाने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कई बार आग्रह किया है कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय है और सदस्य का समय है, आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए, आप सदन को चलने दें। उन्होंने कहा कि आज प्रियंका गांधी का भी प्रश्न होना है और वे प्रश्न पूछने के लिए खड़ी हैं, लेकिन आप लोग सदन की कार्यवाही बाधित कर रहे हैं। श्री बिड़ला का कहना था कि सदन के अंदर तख्तियां और बैनर लेकर आना संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ माननीय सदस्य जिस तरह भेष बदल बदल कर आते हैं, उन्हें मेरी चेतावनी है। कई सदस्यों ने मुझसे मिलकर और मुझे लिखकर कहा है कि संसद भवन और संसद परिसर

की पवित्रता और मर्यादा बनी रहनी चाहिए। आप संसद की पवित्रता और गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। शोर शराबा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। बैठक 12 बजे फिर शुरू हुई तो हंगामे की स्थिति जस की तस थी। हंगामे के बीच ही जन्म और मृत्यु का पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को पारित करने के लिए पेश किया। इस दौरान विपक्षी दलों के सदस्य दिल्ली में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई और राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मामले को लेकर नारेबाजी कर रहे थे। सदन ने बिना चर्चा के ध्वनिमत से विधेयक को पारित कर दिया। विपक्षी सदस्यों ने विधेयक पर अपने संशोधन भी पेश नहीं किए। बीते 20 जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को मंजूरी दी थी और इसे 29 जुलाई को सदन में पेश किया था। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969-2023 में संशोधित की धारा 13(3) में और संशोधन करना है, ताकि विलंब से होने वाले पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक कड़ा बनाया जा सके। मौजूदा प्रावधानों के तहत यदि जन्म या मृत्यु का पंजीकरण 1 वर्ष से अधिक की देरी से कराया जाता है तो इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट DM, उपमंडल मजिस्ट्रेट SDM अथवा किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होती है। विधेयक में देरी की अवधि के आधार पर 2 स्तरीय मंजूरी व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि ये इतना महत्वपूर्ण विधेयक है और हम चाहते हैं कि सब सदस्य इसके भाग लें। उन्होंने कहा कि बार बार अनुरोध के बावजूद विपक्ष के साथियों ने विधेयक पर चर्चा में भाग नहीं लिया और अब उन्हें सदन से बाहर जाकर ये नहीं कहना चाहिए कि विधेयक बिना चर्चा के क्यों पारित किया। श्री रिजिजू ने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जनता आपसे जवाब मांगेगी। आप बाहर जाकर ये आरोप नहीं लगा सकते कि बिना चर्चा के विधेयक पारित कराया गया है, आपने अवसर गंवा दिया है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि सदन में आगे आने वाले विधेयकों पर सहयोग करें और चर्चा में भाग लें। पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने हंगामा कर रहे विपक्ष के साथियों से कहा कि सभी ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में विधेयक पर सहयोग की बात कही थी, लेकिन यहां आप हंगामा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपके सहयोग के बिना विधेयक पारित करना पड़ा, ये सही नहीं है। हंगामा नहीं थमने पर श्री सैकिया ने कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों पर गंभीर आरोपों के मामलों में उनके लगातार 30 दिन तक हिरासत में रहने की स्थिति में पद से हटाने का प्रावधान करने वाले 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति JPC का कार्यकाल शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ा दिया गया। संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन 2025 पर संसद की संयुक्त समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने रिपोर्ट पेश करने के लिए आगामी शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के प्रथम दिन तक का समय देने के लिए सदन में प्रस्ताव रखा। सदन ने ध्वनिमत से प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इससे पहले समिति ने गत 17 जुलाई को अपनी मसौदा रिपोर्ट को अंगीकार करने की प्रक्रिया स्थगित करने का निर्णय लिया था। समिति की अध्यक्ष और भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने बताया कि सदस्यों का मत था कि इस विषय पर और अधिक चर्चा की आवश्यकता है, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति का गठन 12 नवम्बर 2025 को किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष मानसून सत्र के आखिर में विपक्ष के विरोध और हंगामे के बीच सदन में ये विधेयक पेश किए थे। बाद में उनके प्रस्ताव पर सदन ने तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का निर्णय लिया था। आज सदन में लिखित जवाब में सरकार ने सूचित किया कि वह विभिन्न उच्च स्तरीय और अन्य आधिकारिक दौरों के दौरान पाकिस्तान से होने वाले सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर अन्य देशों को लगातार जागरूक कर रही है। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने 31 देशों और 6 बहुपक्षीय समूहों के साथ आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह भी गठित किए हैं, जहां ऐसे मुद्दों पर नियमित रूप से चर्चा की जाती है। मंत्री ने कहा कि कई देशों ने पाकिस्तान से आग्रह किया है कि वह अपनी धरती को

किसी भी तरह से आतंकवाद के लिए इस्तेमाल न होने दे। श्री सिंह ने बताया कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद से बचाव के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदमों को कई देशों ने सराहा है। मंत्री ने ये भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले की निंदा विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर प्रस्तुत दस्तावेजों में भी दर्ज की गई है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका है पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक होने के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज राज्यसभा की बैठक शुरू होने के करीब 20 मिनट बाद ही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल केवल 15 मिनट ही चल पाया और केवल 4 सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े मुद्दे उठाए। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने शून्यकाल शुरू करने को कहा। इसी दौरान नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग और अयोध्या के राम मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराने तथा जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे के बीच विपक्षी सदस्यों ने मांग की कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए। सभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत रहने की अपील करते हुए कहा, आप रोज इसी तरह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। आप हंगामा करते हैं और फिर सदन से बहिर्गमन कर जाते हैं। आप अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन सुनना नहीं चाहते। श्री राधाकृष्णन ने विपक्षी सदस्यों की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वे अब भी आपातकाल मोड में हैं। उन्होंने कहा कि आप आज तक आपातकाल मोड में हैं। आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी बात सुने लेकिन आप किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ये तानाशाही है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्व नहीं देना चाहते। सभापति ने कहा कि आपको दूसरों की बात भी सुननी चाहिए। मैं हर बार नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका देता हूँ लेकिन आप दूसरों की बात नहीं सुनते। सभापति राधाकृष्णन के ने बाद में खड़गे को बोलने की अनुमति दी। कांग्रेस अध्यक्ष और उच्च सदन में विपक्ष के नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने नोटिस दिया है। श्री राधाकृष्णन ने पूछा कि नोटिस किस नियम के तहत दिया गया है। इस पर श्री खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत नियत कामकाज स्थगित कर एक विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया है। सभापति ने स्पष्ट किया कि नियम 267 के तहत कोई भी नोटिस स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे पहले ही नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री खड़गे का नियम 267 के तहत दिया गया नोटिस अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग से संबंधित था। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गृह मंत्री अमित शाह के सदन में आने की मांग की। विपक्षी दल 20 जुलाई को प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल सहित बल प्रयोग को लेकर गृह मंत्री से बयान की मांग कर रहे हैं। विपक्ष ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। हंगामा कर रहे विपक्षी सदस्यों ने सभापति ने कहा कि शून्यकाल का गृह मंत्री से क्या संबंध है। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन पर सड़क छाप राजनीति करने और सदन की गरिमा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। श्री चौहान ने कहा कि विपक्ष ओछी राजनीति कर रहा है और सदन की गरिमा से खिलवाड़ कर रहा है। लोकतंत्र को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। वे केवल हंगामा करना चाहते हैं, चर्चा नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष अराजकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि वे विपक्ष के आचरण की निंदा करते हैं। सभापति ने जब सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध मुद्दों को उठाने के लिए कहा तब भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। उन्होंने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारे लगाए।

भाजपा के चार सदस्यों ने आसन की अनुमति से लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। भाजपा के महेंद्र भट्ट ने उत्तराखंड में जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना प्रक्रिया केवल जनगणना ही नहीं, बल्कि ये उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि 2027 की जनगणना देश की नीतियों, योजनाओं, तमाम संसाधनों का आधार बनाएगी, इसलिए इसका खास महत्व है। श्री भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं, बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे जनभागीदारी के अभियान के रूप में संचालित किया जाए। उन्होंने कहा कि गांवों से पलायन होने के कारण कई गांव खाली हो गए हैं, इसका असर जनसांख्यिकी पर भी पड़ा है। उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड पर पलायन की गहरी मार पड़ी है। उन्होंने कहा कि सीमांत गांवों की सटीक गणना जरूरी है। भाजपा सदस्य ने कहा कि उत्तराखंड केवल राज्य ही नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सीमांत क्षेत्र है। उन्होंने मांग की कि राज्य का सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए अपनी गणना अपना गांव अभियान के तहत जनगणना कराई जानी चाहिए। भाजपा के ही प्रदीप कुमार वर्मा ने रांची के CIP मानसिक चिकित्सालय का मुद्दा उठाया और इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि 1918 में स्थापित केंद्रीय मानसिक चिकित्सालय संस्थान में बड़ी संख्या में दूर दूर से मनोरोगी आते हैं और इनमें खासी संख्या गरीबों की होती है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की अवसंरचना के विस्तार की और उसके नवीनीकरण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया जाना चाहिए। भाजपा के ही मनन कुमार मिश्रा ने अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का मुद्दा उठाया और कहा कि ये वकीलों की पुरानी मांग है। उन्होंने कहा कि अदालतों में दलीलें देने वाले वकीलों की जान को भी खतरा होता है और कई अधिवक्ताओं की हत्या भी हुई है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा को महत्वपूर्ण बताते हुए उनके लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम बनाने की मांग की। भाजपा के रायगा कृष्णा ने संसदीय चुनावों एवं विधानसभा चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हुआ है और विभिन्न मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही लगातार बाधित होती रही है। आज शुक्रवार होने की वजह से उच्च सदन में गैर सरकारी कामकाज नियत था, जिसके तहत 4 निजी संकल्प पेश किए जाने थे। साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को भी चर्चा तथा पारित करने के लिए आज सदन में पेश किया जाना था, लेकिन हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही आज भी बाधित हो गई। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। के समाचार, केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर निर्मम कार्रवाई के लिए पाकिस्तान की निंदा की। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति गंभीर, राहत और बचाव कार्य जोरों पर। और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
2: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो,

0: का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
1: मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को मंजूरी दे दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना में अपतटीय अन्वेषण मूल्य श्रृंखला से जुड़े कार्य शामिल हैं।
0: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 84,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके दो कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीज़मिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट है एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
1: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने को भी मंजूरी दी गई है।
0: पीएम किसान योजना को और आगे एक्सटेंशन दिया गया है और इस प्रोग्राम में देश के किसानों को क्रॉप साइकिल के हिसाब से बेनिफिट दिया जाता है। साल में 3 बार 2,000 रुपए इनकम सपोर्ट दिया जाता है। इसमें पिछले 5 वर्षों में क्यूमुलेटिव डिस्बर्समेंट अभी करीब करीब 3,10,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट किसानों के पास जा चुका है।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे प्रत्येक प्रतिभाशाली युवा को उत्कृष्टता का स्पष्ट मार्ग मिलेगा।
0: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले हैं 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया योजना का विस्तार और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि से देश भर के युवा एथलीटों को बेहतर प्रशिक्षण, आधुनिक सुविधाएं और अपनी प्रतिभा को निखारने के अधिक अवसर मिलेंगे। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई।
2: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज फिर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गई। हालांकि शोर शराबे के बीच लोकसभा ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 को बिना चर्चा के पारित कर दिया। इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक सख्त बनाना और इन घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करना है। विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि विलंबित पंजीकरण की अनुमति देने से पहले नामित प्राधिकारी को संबंधित जन्म या मृत्यु की सूचना की प्रामाणिकता का सत्यापन करना होगा। इस सप्ताह संसद ने दो महत्वपूर्ण विधेयकों लोक परीक्षाएं अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 तथा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को पारित किया। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में संयुक्त राष्ट्र का लगातार समर्थन किया है। लोकसभा में लिखित उत्तर में श्री जयशंकर ने कहा कि ये समर्थन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की 8 बार की सदस्यता में भी दिखता है और वर्ष 2028-29 के लिए अगली उम्मीदवारी की औपचारिक घोषणा भी की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी योजना के अंतर्गत आज तक

0: किसी भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का कोई बकाया नहीं है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने वीबीजी रामजी योजना को अधिसूचित कर लागू करना शुरू कर दिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। अदालत ने इस अपराध को समाज को झकझोर देने वाली बेहद गंभीर घटना बताया। इसी महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। दंगों के दौरान अंकित शर्मा पर भीड़ ने हमला किया था, बाद में उनका शव नाले में मिला था। पश्चिम बंगाल में विशेष कार्य बल के आतंक रोधी प्रभाग ने मोहम्मद हमीम मंडल उर्फ हमीम फिगो को आतंकवादी नेटवर्क से कथित संबंधों के आरोप में बर्धमान से गिरफ्तार किया है। आरोपी को बर्धमान के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने आरोपी को 14 दिन के लिए एसटीएफ की हिरासत में भेज दिया। हमीम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों में शामिल था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथा कथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है।
1: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने भारत के सभी साझेदार देशों और हितधारकों से इस क्षेत्र के लिए सही नामकरण का उपयोग करने का आग्रह किया। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चितकाल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराहा जिलों में कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में लगातार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि निचले जिलों में बचाव और राहत कार्य जोरों पर है।
2: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है क्योंकि महानदी और उसकी सहायक नदियां कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव, सड़कें और हजारों हेक्टर खेती की जमीन डूब गई है और 15 जिले इसकी चपेट में आ गए हैं। हीराकुद बांध के 22 गेटों से अब बाढ़ का पानी छोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नुकसान का जायजा लेने के लिए कल बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर और केंदुझर जिलों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे, जबकि एहतियात के तौर पर भद्रक के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: गुजरात से हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से मूसलाधार वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है।
3: सूरत जिले के अंबिका में आज पूरे राज्य में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा भरूच, नवसारी, डांग, आनंद और खेड़ा जिलों के कई इलाकों में भी आज मूसलाधार बारिश हुई। निचले इलाकों में जलभराव के कारण राज्य राजमार्गों और स्थानीय मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। स्थिति को देखते हुए राहत और बचाव कार्यों को बड़े पैमाने पर तेज कर दिया गया है। आज सुबह से ही 8,300 से अधिक लोगों को सुरक्षित आश्रय में पहुंचाया जा चुका है। इस बीच भारी बारिश की संभावना को देखते हुए एहतियाती तौर पर सूरत बनास

0: कवर्धा और मेहसाणा सहित कई जिलों में कल भी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच मौसम विभाग ने कल गुजरात में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और दक्षिण कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसी तरह का मौसम उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम में भी रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बिजली चमकने के साथ आंधी तूफान और तेज हवाओं की भी संभावना है। दिल्ली में कल तेज वर्षा हो सकती है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीत लिया। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी और अंकुश पंघाल ने फाइनल में जगह बना ली है। प्रीति ने महिलाओं के 54 किलोग्राम सेमीफाइनल मैच में जाम्बिया की कैथरीन मुआपे को हराया। जैस्मिन लंबोरिया ने 57 किलोग्राम और अरुंधति चौधरी ने 70 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में जगह बनाई। वहीं अंकुश पंघाल ने पुरुषों के 80 किलोग्राम सेमीफाइनल में कनाडा के जोशुआ ओफोरी को मात दी। भारत 4 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ पदक तालिका में 10वें स्थान पर है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी। देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और समुद्री क्षेत्र की विशाल संभावनाओं का दोहन करने के लिए राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना समुद्र मंथन को भी स्वीकृति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4 अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद। और राष्ट्रमंडल खेलों में अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra.

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। मरकज ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के निजाम में भी तामीर किए जाएंगे। काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है, जिससे मुल्क की तवानाई की यकीनी फराहमी को इस्तेहकाम हासिल होगा और समुद्र के किनारे के वसीतर इम्कानात को इस्तेमाल किया जा सकेगा। मरकजी काबीना ने अगले 5 बरस के लिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को जारी रखने की भी मंजूरी दी है। आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और 4 दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान आईबी अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भारत ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में पुनः अमन मुजाहिरीन के खिलाफ बहीमाना कार्रवाई के सिलसिले में पाकिस्तान की नुक्ताचीनी की है। उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है, राहत और बचाव की कार्रवाइयां जोरों शोर से जारी हैं। दौलत मुश्तरक खेलों में स्मिता डे ने जूडो में भारत के लिए सोने का तमगा जीता। भारत के मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मिन लिमोरिया, रुंधति चौधरी और अंकुश पांघल अपने अपने मुतल्लिका मुकाबलों के फाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY की मंजूरी दी है, जिसके तहत पानी की सतह पर शमसी फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स की तामीर की जाएगी और इसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के निजाम भी तामीर किए जाएंगे। मरकजी काबीना की मीटिंग के बाद आज नई दिल्ली में मीडिया से खिताब करते हुए इत्तला तो नशरियात के वजीर अश्वनी वैष्णव ने बताया कि इस स्कीम को 5,070 करोड़ रुपए की कुल मालियत के साथ मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि ये स्कीम 5,000 मेगावाट पानी की सतह पर शमसी

0: फोटोवोल्टेक प्रोजेक्ट्स की तामीर का अहाता करती है, जिसके साथ तवानाई की जखीरा अंदोजी के ऐसे निजाम भी तामीर किए जाएंगे जिनकी 2 घंटे की कम अज कम जखीरा अंदोजी की सलाहियत कुल 10,000 मेगावाट पर आवर होगी।
1: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है। वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है आज। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में। टोटल 5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी। 5 साल की स्कीम है, 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा स्कीम में। प्रोजेक्ट्स विल बी सिलेक्टेड थ्रू टैरिफ बेस्ड कॉम्पिटेटिव बिडिंग। 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा।
0: मरकजी काबीना ने समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की एक कौमी स्कीम समुद्र मंथन को भी मंजूरी दी है, जिसके लिए 84,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इस पर माली बरस 2030-31 तक अमलावरी होगी। जनाब वैष्णव ने बताया कि स्कीम समुद्र के किनारे तलाश और दरियाफ्त की पूरी वैल्यू चेन में मदाखलतों के एक जामे सेट का अहाता करती है।
1: समुद्र मंथन भारत में ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन का प्रोग्राम है। 24,000 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम है। इसके 2 कंपोनेंट है बड़े, तो पहला कंपोनेंट है ऑफशोर सीजमिक डेटा एक्विजिशन, 28,000 करोड़ रुपीस का यह प्रोग्राम है। दूसरा कंपोनेंट एक्सेलरेटेड ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्कीम, ये 43,200 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम।
0: मरकजी काबीना ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान स्कीम को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने बताया कि 5 साल की मुद्दत के दौरान इस स्कीम के लिए 3.15 लाख करोड़ रुपए के मजमूई माली अखराजात की मंजूरी दी गई है। जनाब वैष्णव ने बताया कि मंजूरी हुकूमत के इस अज़्म की तौसीख करती है कि किसानों की खुशहाली कौमी खुशहाली की बुनियादें इस्तवार करती है। मरकजी काबीना ने खेलो इंडिया स्कीम को वसत अदा करने की भी मंजूरी दी है, साथ ही उसने खेलों के कौमी फेडरेशनों के लिए तावुन में भी इजाफा किया है, जिसके लिए 2026-27 से 2030-31 तक की मुद्दत के लिए मुश्तरका तौर पर 36,441 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं।
1: कम्प्लीट एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू लिया जाएगा, स्टेडियम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग का प्रोग्राम हो, न्यूट्रिशन प्रोग्राम हो, मेंटोरशिप हो, उन सब के ऊपर एक बहुत केयरफुली क्राफ्टेड प्रोग्राम बनाया गया है। 29,000 करोड़ रुपीस की ये स्कीम है 5 ईयर्स के लिए, और ये सीधा वीविन करेगी ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आगे कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाले है 2030 में भारत में, उन सब के साथ ये वीविन करेगी।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन की काबीना की जानिब से मंजूरी भारत के लिए तवानाई की यकीनी फराहमी को मुस्तहकम करने की जानिब काया पलट कर देने वाली एक जस्त की अलामत है और इससे समुद्र के किनारों की वसीतर इम्कानात को इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने इस बात का जिक्र किया है कि सरमायाकारी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, महारत से भरपूर इंसानी असासे और जदीद तरीन बुनियादी ढांचे के इश्तराक से समुद्र मंथन से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना आबी जखायर के इख्तिरा पर मबनी इस्तेमाल के जरिए मुल्क की साफ तवानाई की सलाहियत को वसत अता करती है। जनाब मोदी ने कहा कि इस स्कीम से सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को फायदा हासिल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में कमी आएगी। वजीर आजम ने इस बात का जिक्र किया कि हुकूमत मुल्क भर में किसानों की खुशहाली के लिए बाख्तियारी देने की जानिब पुरअज़्म है। जनाब मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम को 2031 तक बढ़ाए जाने से अन्नदाताओं को बीजों, कीमियावी खादों और काश्तकारी से मुतालिक अपनी जरूरियात पूरी करने में ही मदद नहीं मिलेगी बल्कि इससे उनकी इक्तिसादी हालत भी बेहतर होगी। वजीर आजम ने मजीद कहा कि खेलो इंडिया स्कीम की वसत और खेलों के कौमी फेडरेशन के लिए तावुन में इजाफे से मुल्क भर के नौजवान खिलाड़ियों को बेहतर तरबियत, जदीद सहूलियात और अपनी सलाहियतों को निखारने के ज्यादा मौके मैसर आएंगे। हुकूमत ने कहा है कि रोजगार और आजीविका मिशन के लिए विकसित भारत गारंटी ग्रामीण VBG रामजी स्कीम के तहत आज की तारीख तक किसी रियासत और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोई रकम वाजिबुल अदा नहीं है। देही तरक्यात के महकमे के वजीर मुमलिकत कमलेश पासवान ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 को पूरे मुल्क के देही इलाकों में इस माह की पहली तारीख से लागू किया गया है।

0: ने बताया कि तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों ने इस स्कीम को नोटिफाई किया और इस पर अमल आवरी शुरू हो गई। वजीर मौसूफ ने बताया कि माली बरस 2026-27 के दौरान इस स्कीम के लिए बजट में 95,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कई मामलों पर अपोजिशन के शोरगुल के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इन मामलों में नीट के सिलसिले में तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई का मामला शामिल है। पहली बार कार्रवाई मुलतवी किए जाने के बाद जब दोपहर 12 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर दिलीप साइकिया ने बातचीत और मंजूरी के लिए पैदाइश और अमवात के इंदराज से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 पर गौर खौस की बात कही। दाखिली उमूर के वजीर मुमलिकत नित्यानंद राय ने अपोजिशन के शोरगुल के दौरान ये बिल पेश किया। ये बिल बगैर किसी बहस के शोरगुल के दौरान ऐवान में मंजूर हो गया। इधर पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने बहस में हिस्सा न लेने के लिए अपोजिशन की नुक्ताचीनी की। पेश एक रिपोर्ट।
1: पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई में आज फिर रखना पड़ा। अपोजिशन ने नीट मौजू पर तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलात पर हंगामा आराई की। अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई जारी रहने पर दोनों ऐवानों की कार्रवाई लंच से पहले ही दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे पहले अपोजिशन की हंगामा आराई की वजह से पार्लियामेंट में वक्फे सवाल नहीं हो सका। ताहम लोकसभा ने पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक तरमीमी बिल 2026 बिना किसी बहस के मंजूर कर लिया। ये नया बिल पैदाइश और अमवात के रजिस्ट्रेशन में ताखीर पर सख्त गुंजाइशों पर मबनी है और पैदाइश और अमवात के बरवक्त अंदराज की हौसला अफजाई करता है। ये बिल इस बात को भी लाजमी करार देता है कि नामजद अथॉरिटी ताखीर से अंदराज की इजाज़त देने से पहले रिपोर्ट की जा रही पैदाइश और अमवात की तस्दीक करें। इधर राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने वक्फे सिफर की शुरुआत की, जहां कई अराकीन ने फौरी अहमियत के हामिल मामले उठाए। ताहम अपोजिशन अराकीन ने अपने मुतालबात पर जोर देते हुए नारेबाजी और मुजाहरे शुरू कर दिए। नई दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तनवीर।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में अटल इनोवेशन मिशन के बुनियादी सतह के इख्तराकारों के ग्रुप से बातचीत की और नुमाइश के दौरान उनकी जानिब से पेश किए गए इख्तराई मॉडल्स का मुशाहिदा किया। सदर जमहूरिया ने मुलाकात के दौरान जोर देकर कहा कि बुनियादी सतह के इख्तराक का समाज की जरूरतों से हम आहंग होना जरूरी है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के साबिक काउंसलर ताहिर हुसैन और चार दीगर को 2020 दिल्ली फसादात के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अफसर अंकित शर्मा के कत्ल की पादाश में उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने सजा की मियाद के मुतालिक दलाइल की समाअत के बाद तमाम पांचों मुलजमीन की सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने इस जुर्म को इंतहाई बहिमाना वाकया करार दिया और कहा कि इससे पूरा मुआशरा हिलकर रह गया था। इस माह की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार दीगर को अंकित शर्मा के कत्ल का मुजरिम करार दिया था, जिन पर फसादात के दौरान एक हुजूम ने हमला किया था। बाद में उनकी लाश एक नाले में पाई गई थी। भारत ने आज कहा कि पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में नामनिहाद इंतखाबात पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ एक तौहीन आमेज अवामी रद्द अमल का इजहार करते हैं। आज दोपहर नई दिल्ली में मीडिया को तफसीलात बताते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पुरअमन शहरियों के खिलाफ जारहाना ताकत का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में 40 से ज्यादा शहरी हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हुए हैं।
2: पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग घायल हुए हैं। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहां के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठन से गैर कानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जाँच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जाँच करनी चाहिए और उसके अत्याचारों के लिए जवाबदेह जाना चाहिए।
0: तर्जुमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के बेगुनाह अवाम के साथ पाकिस्तान की बेएतनाई उस वक्त खुलकर सामने आ गई जब उसके वजीर दिफा ने एहतजाज करने वाले शहरियों को दुश्मन करार दिया। तर्जुमान ने इस बात पर जोर दिया कि मरकज के इंतजाम वाले इलाके जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अटूट हिस्सा है। اڈیشہ میں سیلاب کی صورتحال مزید ابتر ہو گئی ہے کیونکہ بالائی علاقوں میں لگاتار بارش کی وجہ سے مہاندی اور اس کی معاون ندیوں میں طغیانی آ گئی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: اڈیشہ کے 15 ضلع متاثر ہیں، جہاں گاؤں، سڑکوں اور ہزاروں ہیکٹیئر کاشت کی زمینوں کے سیلابی پانی میں ڈوب جانے سے روزمرہ کی زندگی شدید متاثر ہوئی ہے۔ ہیرا کنڈ باندھ کے 22 دروازے کھول دیے گئے ہیں جن سے سیلاب کے پانی کا اخراج ہو رہا ہے۔ ہیرا کنڈ باندھ میں پانی کی سطح 625 فٹ سے زیادہ ہو گئی ہے۔ باندھ میں کثیر مقدار میں پانی کی آمد لگاتار جاری ہے جس سے مزید دروازے کھولے جا سکتے ہیں۔ ان حالات میں مہاندی کے طاس میں شدید سیلاب کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ اڈیشہ کے وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی کل بالاسور، بھدرک، جاجپور اور کوئنجھار ضلعوں کا فضائی دورہ کریں گے اور نقصان کا جائزہ لیں گے۔ بھدرک میں احتیاطی قدم کے طور پر سبھی اسکول بند رہیں گے۔ بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: گجرات میں ریڈ الرٹ کے دوران ریاست کے مختلف حصوں میں صبح سے ہی لگاتار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے جنوبی اور وسطی خطوں میں روزمرہ کی زندگی میں رخنا پڑا ہے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ بارش سے متاثرہ ضلعوں میں راحت اور بچاؤ کارروائیاں جنگی پیمانے پر جاری ہیں۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے احمد آباد، آنند کھیڑا اور سورت سمیت ریاست کے 6 ضلعوں میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اور گلاسکو میں جاری دولت مشترکہ کھیلوں میں بھارت کی اسمتا ڈے نے جوڈو میں بھارت کے لیے سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کھیل میں بھارت نے پہلی بار سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اسمتا نے کینیڈا کی کوئنچ کو خواتین کے 48 کلو گرام زمرے میں 2-1 سے ہرایا۔ بھارتی مکے باز پریتی پوار اور انکش پانگھل اپنے اپنے میچ جیت کر فائنل میں پہنچ گئے ہیں، جس سے بھارت کے لیے کم از کم چاندی کے 2 تمغے یقینی ہو گئے ہیں۔ وہیں انکش پانگھل نے آج ہوئے سیمی فائنل میچ میں کینیڈا کے جوشوا اوفری کو 5-0 سے شکست دی۔ اس طرح پانگھل مردوں کے 80 کلو گرام زمرے کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ بھارت نے دولت مشترکہ کھیلوں میں اب تک 18 تمغے جیتے ہیں، جن میں سونے کے 4، چاندی کے 9 اور کانسے کے 5 تمغے شامل ہیں۔ آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ مرکز نے پردھان منتری سوریہ سروور یوجنا کی منظوری دی ہے، جس کے تحت پانی کی سطح پر شمسی فوٹو وولٹیک پروجیکٹس کی تعمیر کی جائے گی اور اس کے ساتھ توانائی کی ذخیرہ اندوزی کے نظام بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ کابینہ نے سمندر کے کنارے تلاش اور دریافت کی ایک قومی اسکیم سمندر منتھن کو بھی منظوری دی ہے۔ مرکزی کابینہ نے اگلے 5 برس کے لیے پی ایم کسان سمان ندھی اسکیم کو جاری رکھنے کی بھی منظوری دی ہے۔ 2020 دلی فسادات کے دوران آئی بی افسر انکت شرما کے قتل کی پاداش میں عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा और अदाएं कुछ ऐसी कि बिजलियां गिरा दें।

0: विकास का जन्म 31 जुलाई 1947 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम था अब्दुल सलीम अश्करी। वो एक ईरानी थे और सूखे मेवों का कारोबार था उनका। जिंदगी की राहों में आगे चलकर यूं हुआ कि मुमताज की माता और पिता एक दूसरे से अलग हो गए। ये तब की बात है जब मुमताज महज 16 साल की थीं। जाहिर है कि जिंदगी कठिन राहों पर चल पड़ी। पिता ने दूसरी शादी कर ली और माँ फिल्मों में एक्स्ट्रा के रूप में काम करती रहीं। चूंकि घर का खर्च ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए माँ ने सोचा कि क्यों ना बेटियां भी फिल्मों में काम करें और इस तरह से जिंदगी पटरी पर आ जाए। तो मुमताज की माँ ने अपनी दोनों बेटियों यानी मुमताज और मलिका को फिल्मों में संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इसका नतीजा ये हुआ कि 11 साल की छोटी उम्र में मुमताज ने बतौर बाल कलाकार फिल्मों में अपनी पारी शुरू की। पहली फिल्म थी सन 1958 में आई सोने की चिड़िया। इस फिल्म के हीरो थे तलत महमूद और हीरोइन थी नूतन।
1: सच बता।

और इस तरह से छोटे मोटे रोल उन्हें भी मिलते रहे और उनकी बहन को भी मिलते रहे। जब मुमताज थोड़ी बड़ी हुई तो 1960 के आसपास उन्होंने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था स्त्री। इसके बाद आई वल्लाह क्या बात है और 1963 में आई सेहरा। ये वो दौर है जब मुमताज न बच्ची थी और ना बड़ी।

इसके बाद एक दौर ऐसा आया जब मुमताज को बतौर सहायक अभिनेत्री काम मिला। ओपी रलहन एक फिल्म बना रहे थे, गहरा दाग। इस फिल्म में मुमताज ने हीरो की बहन की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म चल निकली, जाहिर है कि मुमताज की एक खास पहचान बन गई। 1963 में आई फिल्म मुझे जीने दो, इसमें भी मुमताज की एक छोटी सी भूमिका थी। एक अभिनेत्री के तौर पर मुमताज अपनी मुकम्मल पहचान कायम करने की जद्दोजहद में लगी थी। दिल में कुछ बड़ा करने के ख्वाब थे, मौके सामने आ नहीं रहे थे, इसलिए जिस तरह की फिल्में आईं, मुमताज उन्हें मंजूर करती चली गईं। सन 1962 के आसपास की बात है। जाने माने पहलवान

अगले 6 साल तक एक के बाद एक स्टंट फिल्में आती चली गईं। दिलचस्प बात यह है कि इन फिल्मों की कुल तादाद बनी 16। जी हाँ, मुमताज और दारा सिंह ने 16 फिल्मों में काम किया है। वीर भीमसेन, हरक्यूलिस, सैमसन, आंधी और तूफान, टार्जन और किंग कॉन्ग, टार्जन कम्स टू दिल्ली, राका, सिकंदर आजम, रुस्तम ए हिंद और डाकू मंगल सिंह जैसी फिल्मों में काम किया मुमताज और दारा सिंह ने।

0: इस दौरान मुमताज ने कुछ और सहायक भूमिकाएं की, जैसे फिल्म राम और श्याम में। ये फिल्म 1967 में आई थी। आदमी और इंसान 1969 में आई। इन दोनों फिल्मों के लिए मुमताज को फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया।
1: जिंदगी

यहां तक आते आते मुमताज की किस्मत पलटने वाली थी। हुआ यूं कि राज खोसला अपनी एक फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश कर रहे थे और उन्हें अचानक नजर आई मुमताज। उन्होंने राजेश खन्ना के साथ इस फिल्म के लिए मुमताज को साइन कर लिया। ये फिल्म थी दो

सन 1969 में दो रास्ते के अलावा एक और फिल्म आई राजेश खन्ना के साथ मुमताज की। ये थी नरेंद्र बेदी की फिल्म बंधन। मुमताज का करियर अब चढ़ाव पर था। उनकी खूबसूरती, उनके अभिनय, उनकी अदाओं की लोग तारीफ करते नहीं थक रहे थे। यानी जिंदगी में जद्दोजहद के दिन अब कम हो रहे थे और कामयाबी उनकी राहों को चूम रही थी। दो रास्ते के बाद मुमताज और राजेश खन्ना की जोड़ी जोरदार तरीके से जम गई। एक के बाद एक इन फिल्मों के गाने अब आपकी नजर। सन 1970 सच्चा झूठ

न केवल ये फिल्में हिट हो रही थीं, बल्कि इनके गाने लोगों की जबान पर सज रहे थे। दिलचस्प ये था कि राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी को लेकर फिल्में लिखी जा रही थीं, निर्देशकों की लाइन लगती थी इन्हें बतौर हीरो हीरोइन साइन करने के लिए। इसी दौरान मुमताज ने एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म की, 1970 में आई खिलौना।

ऐसा नहीं था कि मुमताज के हाथ ये कामयाबी एकदम अचानक आ गई हो। उन्होंने अपने हिस्से का संघर्ष किया था। आपको बताएं कि एक दौर ऐसा था जब बहुत सारे नामी नायकों ने मुमताज के साथ काम करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो ये मानते थे कि ये लड़की तो बी ग्रेड की हीरोइन है। ऐसा ही एक किस्सा आपको बताते हैं। 70 के दशक में शशि कपूर एक कामयाब अभिनेता थे। 1970 में फिल्म बन रही थी सच्चा झूठा, जिसमें बतौर नायक उन्हें साइन किया जा रहा था और बतौर नायिका मुमताज को। पर शशि कपूर ने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया और बाद में ये फिल्म आई राजेश खन्ना के हाथ। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी तो हिट हो ही रही थी, लेकिन आगे चलकर शशि कपूर को अपनी गलती का एहसास हुआ। 1974 में फिल्म चोर मचाए शोर में उन्होंने ये सिफारिश की कि उनकी हीरोइन के तौर पर मुमताज को साइन किया जाए, और यहां शशि कपूर और मुमताज एक साथ नजर आए।

मुमताज की खासियत ये है कि बहुत कामयाब, बहुत नामी और बहुत बड़ी हीरोइन बनने के बावजूद उन्होंने किसी नए हीरो के साथ काम करने से इनकार नहीं किया। ऐसा ही एक किस्सा आपको सुनाते हैं। 5 फुट 7 इंच का एक नौजवान फिल्मों में संघर्ष कर रहा था। उसकी फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थीं। सन 1973 में मुमताज को ये कहा गया कि क्या आप इस अभिनेता के साथ काम करेंगी? मुमताज ने फौरन हाँ कह दिया। ये फिल्म थी बंधे हाथ और अभिनेता थे अमिताभ बच्चन।

उन्होंने बहुत अलग अलग तरह के अभिनेताओं के साथ काम किया, जैसे देव आनंद के साथ उनकी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण फिल्म है हरे रामा हरे कृष्णा, और देव के साथ वो तेरे मेरे सपने में भी नजर आई।

उन्हें बहुत शानदार तरीके से मॉडर्न डांस करना था और वो भी साड़ी पहनकर। पारंपरिक साड़ी से काम नहीं चल रहा था। उस जमाने की जानी मानी फैशन डिजाइनर भानु अथैया ने आइडिया लगाया और उन्होंने उस जमाने में पहली बार स्टिच्ड साड़ी यानी सिली हुई साड़ी तैयार की। इसे पहनकर मुमताज ने इस गाने में नृत्य किया। न केवल मुमताज छा गई बल्कि मुमताज साड़ी भी छा गई। जी हाँ, स्टिच साड़ी आगे चलकर मुमताज साड़ी के नाम से मशहूर हुई। एक कामयाब हीरोइन वो होती है जो अपने फैशन स्टेटमेंट्स जनता तक पहुंचाए। मुमताज ने ये बखूबी किया।

0: क्या आज कल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो।
1: फिरोज खान के साथ मुमताज नजर आई फिल्म मीला में, इसके बाद आई अपराध और फिर आई नागिन।

मुमताज के करियर का विश्लेषण करें तो उन्होंने तकरीबन 100 फिल्में तो की होंगी, जिनमें से 60 फिल्में हिट या सुपरहिट रही। एक फिल्म ऐसी थी जिसमें उन्होंने डबल रोल किया, ये फिल्म थी रूप तेरा मस्ताना।

विकास का करियर शिखर पर था। एक से बढ़कर एक रोल उन्हें ऑफर किए जा रहे थे। राजेश खन्ना के साथ उनकी जोड़ी इतनी हिट थी कि फिल्मों के ढेर लगे हुए थे। साल 1974 में एक दिन अचानक खबर आती है कि मुमताज ने मयूर वाधवानी से शादी कर ली है और फिल्मों को अलविदा कह दिया है। यकीन मानिए, न जाने कितने दिल टूटे, न जाने कितने लोग उदास हो गए। एक हीरोइन का शादी करके घर बसाना उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत तो है, लेकिन जब लोग ये मानते हैं कि आगे फिल्में नहीं आएंगी तो उदास भी हो जाते हैं। लोगों को यूं लगा मानो कारोबारी मयूर वाधवानी ने उनकी प्रिय हीरोइन को उनसे चुरा लिया है, उनसे जुदा कर दिया है।

मुमताज शादी रचा के फिल्मी दुनिया से दूर हो गईं, पर कुछ फिल्में थीं जो उनकी शादी के बाद आईं, जैसे प्रेम कहानी। सन 1977 में उनकी आखिरी फिल्म आई आईना। इसके बाद मुमताज बरसों बरस तक फिल्मी परिदृश्य से गायब रहीं। फिर 13 बरस बाद यानी 1990 में मुमताज नजर आईं पहलाज नेलानी की फिल्म आंधिया में। आपको बता दें कि मुमताज के परिवार में उनकी दो बेटियां हैं। एक बेटी नताशा की शादी फिरोज खान के बेटे फरदीन खान के साथ हुई है। साल 2022 में ये खबर आई कि मुमताज को ब्रेस्ट कैंसर हो गया है। उन्होंने इस बीमारी को पूरे साहस के साथ पछाड़ा। आज मुमताज फिल्मी दुनिया से दूर अपनी जिंदगी बिता रही हैं, लेकिन बीच बीच में वो अपने चाहने वालों से मुखातिब होती हैं, जब वो पत्रकारों को इंटरव्यूज देती हैं या किसी टेलीविजन शो में नजर आती हैं। आज भी दर्शकों का मन उन्हें देखकर झूम उठता है।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री मुमताज पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुति तेजश्री काबली। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती से आज के फनकार का प्रसारण। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब लीजिए पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनी।

समझी। अरमानों के खुले दरीचे आजा जरा सिमट के, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे 85 झटके। हट तेरा।

चाल में ठुमका कमर पे चोटी लटके हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा लगे पचासी झटके हो तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला हाय हाय

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रजनीगंधा, और हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी के गाए कुछ फिल्मी गाने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीत। कार्यक्रम था रजनीगंधा, और इसी के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 MHz पर। रात्रि के 10 बजने को हैं। आपसे बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार

0: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऊर्जा भंडार प्रणालियों के साथ फ्लोटिंग सौर फोटोवोल्टिक परियोजना के विकास के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना को 5,070 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है।
1: प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना में जितने वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया है। 102 गीगावाट यानी 1,00,000 मेगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में।
0: सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की भी मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए 36,441 करोड़ रुपए के संयुक्त परिव्यय के साथ विस्तारित खेलो इंडिया योजना और राष्ट्रीय खेल संघों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समुद्र मंथन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और विशाल समुद्री क्षमता का दोहन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना से जलाशयों और अंतर्देशीय जल निकायों के अभिनव उपयोग से देश की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता का विस्तार होगा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। पहले स्थगन के बाद लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक 2025 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने की समय सीमा संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ाने को मंजूरी दी गई। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आज उम्र कैद की सजा सुनाई। अपर सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने दलीलें सुनने के बाद सभी पांचों आरोपियों को सजा सुनाई। इस महीने की 13 तारीख को अदालत ने हुसैन और चार अन्य को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी पाया था। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित चुनाव पाकिस्तान की नीतियों को सिरे से खारिज किए जाने का प्रमाण है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि पाकिस्तान द्वारा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में निर्दोष नागरिकों के खिलाफ लगातार दमनकारी कार्रवाई की जा रही है। नेपाल में अधिकारियों ने भारत से सटे सप्तरी जिले के कुछ हिस्सों में अनिश्चित काल के लिए कर्फ्यू लगा दिया है। सुनसरी में सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में प्रदर्शन शुरू होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया। सुनसरी, धनुषा और सिराह जिलों के कुछ हिस्सों में पहले से ही कर्फ्यू लागू है। सरलाही जिले के अधिकारियों ने सीमा पार से नेपाल में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए वैध पहचान पत्र रखना अनिवार्य कर दिया है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में आज अस्मिता डे ने जूडो में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। 48 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने पहला स्वर्ण पदक देश के नाम किया। इस बीच भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार, जैस्मीन लंबोरिया, अरुंधति चौधरी, अंकुश पंघाल और जादूमणि सिंह ने फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने अब तक प्रतियोगिता में 5 स्वर्ण, 10 रजत और 4 कांस्य पदक जीत लिए हैं। तन्वी शर्मा और उन्नति हुड्डा ने ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में आज उन्नति ने देविका सिहाग को और तन्वी ने सुपनिडा काटेथोंग को हराया। पुरुष सिंगल्स में किरण जॉर्ज प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Renuka. The Union Cabinet has approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana PMSSY for development of floating solar photovoltaic projects with energy storage systems. Addressing media in New Delhi after the Union Cabinet meeting today, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said that the scheme has been approved with a total outlay of 5,070 crore rupees.
1: सोलर कैपेसिटी पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो वर्ल्ड हाईएस्ट देश में लगी है. वाटर बॉडीज हैं, डैम्स हो, लेक्स हो, कैनाल्स हो, उन सब का उपयोग करके जो सोलर पावर जनरेशन कैपेसिटी क्रिएट करना है उसका अप्रूवल लिया गया. 102 गीगावाट की कैपेसिटी पोटेंशियल है भारत में. टोटल 5000 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर पीवी फोटोवोल्टेक कैपेसिटी भारत में क्रिएट की जाएगी. 5 साल की स्कीम है. 1 करोड़ पर मेगावाट का इसका सपोर्ट दिया जाएगा. 10 मिलियन टन्स ऑफ CO2 एमिशंस को ये प्रिवेंट करेगा.
2: In order to strengthen countries' energy security and unlock vast offshore potential, the Union Cabinet has given its nod to the National Offshore Exploration Scheme, Samudra Manthan, with an approved outlay of 84,084 crore rupees for implementation up to financial year 2030-31. The Union Cabinet has given its approval to the continuation of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan Scheme, from 2026-27 to 2030-31. Mr. Vaishnaw said a total financial outlay of 3.15 lakh crore rupees has been approved for this scheme during the period of 5 years. Both houses of parliament have been adjourned for the day following opposition uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the NEET issue. When the Lok Sabha met after the first adjournment, the presiding officer, Dilip Sekia, took up the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 for consideration and passage. Minister of State for Home, Nityanand Rai, removed the bill amid opposition uproar. The bill was passed in the House amid ruckus. Foreign Secretary Vikram Misri concluded his two-day official visit to Bhutan today. During his visit, Mr. Misri co-chaired the 5th India-Bhutan Development Cooperation talks for the 13th five-year plan of Bhutan. During the 5th plan talks, both sides reviewed the overall progress and implementation of Government of India support of 10,000 crore rupees for Bhutan's 13th five-year plan. A Delhi court today sentenced former Aam Aadmi Party councillor Tahir Hussain and 4 others to life imprisonment for the murder of Intelligence Bureau IB officer Ankit Sharma during the 2020 Delhi riots. Additional Sessions Judge Praveen Singh pronounced the sentence to all 5 accused after hearing arguments on the quantum. In Jammu and Kashmir, one non-local labourer was killed and another injured in a terrorist attack in the Kilam Devsar area of Kulgam district this evening. Speaking to Akashwani News, IGP Kashmir V.K. Birdi said one labourer died while the other is undergoing treatment at a local hospital after